सुप्रभात। एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 सितंबर ईस्वी सन 2026। अभी हमारे शुरू की घड़ी में सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। आज का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो, इसी कामनाओं के साथ आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। सुबह के 6 बजने वाले हैं। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनिएगा हिंदी में समाचार।

0: नवीन सक्सेना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाघी ने कहा है कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषा, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वो दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के मत समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यात्रा का लक्ष्य रसद, खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र अमरीकी नौसेना की नाकाबंदी वाली सीमा से शुरू होकर फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैलेगा। सात्विक साइराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल चीन के खिलाड़ियों को हराया। ये इस प्रतियोगिता में भारत का पहला तथा इस जोड़ी का इस सत्र का दूसरा खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी केंद्र डाल्टनगंज केंद्र है।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें।
1: तमाम किसान भाइयों को प्रतिमा वर्मा का नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में बत्तख पालन की बातें। जी हां किसान भाइयों, बत्तख पालन एक लाभकारी व्यवसाय है। अंडा और मांस उत्पादन क्षेत्र में बत्तख पालन का योगदान महत्वपूर्ण है। हमारे देश में अंडा उत्पादन तालिका में मुर्गियों के पश्चात बत्तख का ही स्थान है। मुर्गी की अपेक्षा बत्तख 40 से 50 अंडे देती है, जिससे उद्योग के लाभांश में वृद्धि होती है। बत्तख लंबी अवधि तक अंडे देती है और जीवन के दूसरे और तीसरे वर्ष में भी लाभदायक उत्पादन देती है। मुर्गी के अंडे की तुलना में बत्तख के अंडे का वजन 15 से 20 ग्राम अधिक होता है और प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है। तालाब, झील और अन्य जल बाहुल्य क्षेत्रों में कवक, शैवाल, एल्गी, जल में उगने वाली घास, घोंघे, मछलियाँ और कीड़े वगैरह बत्तखों के लिए प्राकृतिक आहार है, इसलिए बत्तख के ऊपर किया जाने वाला आहार व्यय कम हो जाता है। मुर्गियों के अंडे सायंकाल तक एकत्रित करने होते हैं, जबकि बत्तख 98% अंडे प्रातः 9 बजे से पूर्व ही दे देती है। इससे मजदूरी की बचत और विपणन में सुविधा होती है। बत्तख एक समझदार पक्षी है, जो आवश्यकतानुसार समय पर बाहर घूम फिरकर अपने निश्चित स्थान पर बिना किसी विशेष प्रयत्न के आ सकते हैं। मुर्गी की तुलना में बत्तख की देखरेख कम करनी पड़ती है और उसमें विशेष कुशलता की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि बत्तख की प्रतिरोधक शक्ति स्वभावतः कुछ अधिक होती है और बत्तख को घर की आवश्यकता नहीं होती। साधारणतया रात्रि के समय बत्तख घर में रखे जाते हैं और दिन के समय अहाते में खुले छोड़ दिए जाते हैं। बत्तख के अंडे का छिलका मोटा होने के कारण इनके स्थानांतरण में टूट फूट का भय भी कम रहता है और कम टूट फूट के कारण ही इनसे होने वाले अंततः लाभ में वृद्धि होती है। बत्तख के अंडे और मांस हमारे देश में बड़े वर्ग द्वारा उपयोग किए जाते हैं। बत्तख में मुर्गियों की अपेक्षा रोगों की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इसलिए इनमें मृत्यु दर और रोग भी मुर्गी की अपेक्षा कम होती है। बत्तख मुर्गी की अपेक्षा अधिक शांत स्वभाव वाली पक्षी है और आसानी से पाली जा सकती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि बत्तख पालन क्षेत्र का विकास हमारे देश में अंडे और मांस की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। किसान भाइयों, बत्तख पालन शुरू करने के लिए शांत जगह बेहतर होती है। अगर यह जगह किसी तालाब के पास हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बत्तखों को तालाब में तैरने के लिए जगह मिल जाती है। अगर बत्तख पालन की जगह पर तालाब नहीं है तो जरूरत के मुताबिक तालाब की खुदाई करा लेना जरूरी होता है। तालाब में बत्तखों के साथ मछली पालन भी किया जा सकता है। अगर तालाब की खुदाई नहीं करवाना चाहते हैं तो टीन शेड के चारों ओर 2.3 फुट गहरी और चौड़ी नाली बनवा लेनी चाहिए, जिसमें तैरकर बत्तखें अपना विकास कर सकती हैं। बत्तख पालन के लिए प्रति बत्तख 1.5 वर्ग फुट जमीन की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह बत्तख पालन से काफी लाभ कमाया जा सकता है। बत्तख के अंडों को बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। बत्तख न केवल लाभ देती है बल्कि यह सफाई बनाए रखने में भी उपयोग देती है। मात्र 5 से 6 बत्तखें ही 1 हेक्टेयर तालाब या आबादी के आसपास के मच्छरों के लार्वों को खा जाती है। इस तरह बत्तखें न केवल लाभदायी होती हैं, बल्कि ये मनुष्य की सेहत के लिए भी कारगर होती है। बत्तख पालन का काम बेरोजगार ग्रामीणों के लिए आय का अच्छा साधन साबित हो सकता है। अगर बत्तख पालन का काम बड़े पैमाने पर किया जाए तो यह बेहद लाभकारी भी साबित होता है। किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में आज बस यहीं तक। दीजिए हमें अनुमति।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

शबरी के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। भक्ति जिसके अभाव में जात पात कुल धर्म धन ऐश्वर्य सभी निरर्थक और निष्फल होते हैं। इस प्रकार जो गति योगियों के लिए भी दुर्लभ होती है वो शबरी को सहज ही प्राप्त हो गई। क्या उसे जनक नंदिनी सीता का कुछ अता पता है? श्री राम के इस प्रश्न के उत्तर में शबरी उन्हें पंपा नामक सरोवर जाने का परामर्श देती हैं, जहां उनकी भेंट होगी धीर बुद्धि वाले वानर राज सुग्रीव से। श्री राम लक्ष्मण पंपा सरोवर की ओर चलते हैं। अतुलनीय शोभा युक्त वन में सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने जोड़े के साथ विचरण कर रहे हैं, ये देखकर उनका मन क्षुब्ध हो जाता है। राम लक्ष्मण को देखकर हिरण भागने लगते हैं तो हिरनिया मानो उन्हें आश्वस्त करती हैं कि तुम्हें भयभीत होने का कारण नहीं, क्योंकि तुम साधारण हिरण के वंशज हो। ये लोग तो सोने का मृग खोजने आए हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। अब आइए सुनते हैं हमारा आज का चिंतन।
1: वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सत्यम ईश्वरो लोके सत्य धर्म सदा श्रिता। लोक में सत्य ही ईश्वर है, धर्म सदा सत्य में ही रहता है। वेद शास्त्र एवं पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम्हें याद नहीं रखना पड़ता

0: तुमने किससे क्या कहा था। झूठ में आकर्षण हो सकता है, पर स्थिरता तो सत्य में ही है। सत्य वचन सुनने और बोलने से बढ़कर आनंदप्रद और कुछ भी नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा है कि सत्य से भिन्न कोई परमेश्वर नहीं। उन्होंने तो अपनी आत्मकथा का नाम ही सत्य के प्रयोग रखा। मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर झूठ बोलता है। बालक अपने शैशव काल में सत्य ही बोलता है, पर हम अपने स्वार्थवश उसे असत्य की राह पकड़ा देते हैं। सत्य का मार्ग तलवार की धार के समान है, उस पर चलते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वह स्कूल में पढ़ते थे, तब स्कूल में छुट्टी के बाद अपराह्न में पीटी यानी फिजिकल ट्रेनिंग होती थी। एक बार वे अपने घर से पीटी के लिए निकले, उनके पास घड़ी नहीं थी और आकाश में बादल छाए हुए थे। समय का सही सही अंदाजा नहीं होने के कारण वे लेट हो गए। जब वे स्कूल पहुंचे, तब तक उनके सभी सहपाठी जा चुके थे। अगले दिन अध्यापक ने उनको अनुपस्थित मानकर दंड दिया। गांधी जी को बहुत दुख हुआ कि वे स्कूल भी आए और झूठे भी कहलाए। इस पर उन्होंने लिखा है, एक सत्यार्थी को सत्य के लिए सावधानी भी रखनी चाहिए। सत्य का मतलब सिर्फ दूसरों का भंडा फोड़ करना नहीं होता, किसी की पोल नहीं खोलनी है। अंधे को अंधा और काने को काना कहना तथ्य हो सकता है, पर सत्य नहीं हो सकता। तथ्य जब अहितकर होता है, तब वह असत्य बन जाता है। लिखना, बोलना और बातों को उसी रूप में कह देना सत्य नहीं है। उसके पीछे सत्य के प्रति अनुराग, भावना, प्रेरणा और चिंतन भी होना चाहिए। हम राजदंड, समाज, नाटक आदि के भय से नहीं, बल्कि कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर चलें। सत्यनिष्ठ साधक दुखों से घिरा रहकर भी घबराता नहीं और ना ही विचलित होता है। गीता में लिखा है, जो असत है उसका कभी जन्म नहीं हो सकता और जो सत्य है उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। सत्य को संसार में सर्वोपरि समझें। कौवे को कुटिल, मलिन और चालाक माना जाता है, पर वह उनसे अच्छा है जो बाहर से साफ दिखाई देते हैं मगर आंतरिक रूप से कलुषित मन वाले होते हैं। कौवा तो अंदर बाहर से समान काला है, कम से कम धोखा तो नहीं देता। बाहर से उजला, सदा भीतर मैला, अंग ता से भी कौवा भला, तन मन एक ही रंग। चाणक्य ने लिखा है, सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है, सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से सूरज तपता है, सारा जगत भी सत्य के कारण ही टिका है। एक राजा भगवान महावीर का परम भक्त था। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसके बाण से एक गर्भवती हिरणी मारी गई। राजा को इसका बेहद पश्चाताप हुआ। वह प्रायश्चित करने के लिए भगवान महावीर के पास गया। महावीर ने कहा, तुम्हारे राज्य में काल सौमरिक नाम का एक कसाई रहता है। वह प्रतिदिन सैकड़ों भैंसों का वध करता है। यदि तुम उस कसाई से एक दिन के लिए यह रक्तपात रुकवा दोगे, तो तुम्हारा नरक में जाना टल जाएगा। राजा ने उसे गिरफ्तार कर मंगवाया और उसे एक सूखे कूप में डलवा दिया। अब भला वह वध कैसे करेगा? फिर तसल्ली के लिए उसे देखने खुद पहुंचा। देखा, वह वहां अंधकूप में भी भैंसों की आकृति बनाकर उनको काट रहा है। इस तरह उसका हिंसा नहीं करना तथ्य है, पर सत्य नहीं। सत्य को सिर्फ आचरण में ही नहीं, भावना में भी प्रकट होना चाहिए।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा आज का चिंतन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।

0: श्रोताओं, आराधना कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी और तृतीय शाखा के स्वर में भक्ति गीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर आरती से ली गई बातचीत। विषय है अस्थमा, कारण और उसका निदान।
1: बढ़ते वायु प्रदूषण के दौर में अस्थमा हमें किस प्रकार प्रभावित कर रही है, बातचीत करेंगे छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय से। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: नमस्कार, जोहार। अस्थमा भी एक फेफड़े या श्वास नली की बीमारी है और कोविड भी अधिकतर लोगों का फेफड़ा या श्वास नली में असर किया था। तो जो लोग पहले से अस्थमा से ग्रसित थे, कोविड के बाद उनके अस्थमा के सिम्टम्स में बढ़ोतरी आई है और अचानक सिम्टम बढ़ जाना या अस्थमा का अटैक आने, दौरा पड़ना में भी बढ़ोतरी आई है। उसके अलावा क्योंकि कोई नई तरह की कीटाणु से इन्फेक्शन के बाद शरीर में एलर्जी का प्रकोप बढ़ जाता है, इसीलिए काफ़ी ऐसे लोग जिनको पहले से उनमें या उनके खानदान में अस्थमा नहीं थे, कोविड के बाद उनमें अस्थमा जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं।
1: ऐसे भी मरीज हैं जिनको कोविड नहीं हुआ हो, वो भी अस्थमा से पीड़ित हैं। तो क्या कारण है वर्तमान समय में अस्थमा होने का और हम अपने आप को बचाव किस प्रकार करें?
2: श्रोताओं को मैं एक सीधी बात समझाना चाहता हूँ कि अस्थमा मूलतः सांस नली में एलर्जी को बोलते हैं। ये धूल धुआं, वायु, बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। कहीं ना कहीं आज के समय में बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन भी अस्थमा के अटैक ऐसे लोगों में करा रहे हैं जिनको पहले खानदानी अस्थमा नहीं थी या जिनको पहले अस्थमा की समस्याएं न थी।
1: क्या लक्षण है कि हमें पता चले कि हम अस्थमा से पीड़ित हो गए हैं और इसका हम उपचार शुरू कर दें?
2: अस्थमा के लक्षण पहचानना बहुत आसान है और जितने श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आज के बाद आप लोग भी अस्थमा के लक्षण को पहचान सकेंगे। शरीर में एलर्जी का कुछ और प्रकोप हो सकता है, जैसे कहीं त्वचा में खुजली या दाना होना, छींक आना, नाक से पानी बहना। उसके अलावा अस्थमा के लक्षण होते हैं अचानक से खांसी शुरू होना, सूखी खांसी जो रुकने का नाम नहीं लेता हो, सांस फूलना, छाती में जकड़न तथा छाती से सीटी की आवाज़ सुनाई देना। अगर आपको किसी भी इंसान में ये लक्षण दिखे तो आपको अस्थमा के बारे में शक करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी जटिल या आसानी से नहीं मिलने वाली जांचों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल यही लक्षण अपने आप में काफ़ी है इसको बीमारी साबित करने के लिए।
1: किसी किसी को किसी खास समय इस तरह का अटैक दिखाई पड़ता है, जब मौसम परिवर्तन होता है तो उस समय इस तरह की परेशानियां दिखती है, और किसी किसी व्यक्ति को किसी खास खाद्य पदार्थ से या किसी खास पौधे से या किसी अन्य तरह की चीज़ों से भी अस्थमा होती है, तो इसका बचाव किस प्रकार किया जाए?
2: हमारे राज्य झारखंड तथा हमारा प्रखंड रांची में कुछ कुछ ऐसे फूल मिलते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं, तो इनके पोलन से ऐसे लोग जो पहले कभी झारखंड या रांची में नहीं रहे हो, वो आने से उनको भी अस्थमा का अटैक हो सकता है। तो जब भी मौसम बदलता है, नमी में बदलाव आती है, तापमान में बदलाव आती है, तो जिन लोगों को पहले से अस्थमा के बारे में पता है, मौसम बदलते समय इनको विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए, जगह परिवर्तन के समय इनको विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए। कुछ कुछ लोगों में तो ऐसा होता है कि दिन के समय के साथ भी लक्षण में रोकथाम होता है कि सुबह सिम्टम ज़्यादा होता है या रात में सिम्टम ज़्यादा होता है, तो उनको उस हिसाब से प्रिकॉशन लेना चाहिए। सावधानी ही बचाव है।
1: डॉक्टर साहब, हम खान पान की बात करें तो खान पान में किन किन चीज़ों का हम सेवन नहीं करें ताकि इस बीमारी से हम बचे रहें?
2: अगर मरीज को पता चलता है कि कोई विशेष खाद्य पदार्थ के सेवन से उनके गले में खुजली हो जाए या ओठों में सूजन आ जाए या तुरंत खांसी चालू हो जाए, मतलब उन खाद्य पदार्थ से उस व्यक्ति को एलर्जी है, तो उनको जान के उस खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा, अंडे का प्रोटीन, दूध, क- कई तरह के मूंगफली बादाम, इनसे कभी कभी इस तरह की एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा मैं एक बहुत डिबेटेबल बात बताना चाहूँगा कि पहले हर फल का एक मौसम होता था, लेकिन आजकल एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बाद हर फल हर मौसम में मिलता है। कहीं ना कहीं ये प्रकृति से छेड़खानी भी अस्थमा या एलर्जी का सिम्टम को बढ़ा रहा है। तो जो फल जिस मौसम में पाया जाता था, ये प्रकृति का नियम है, कृपया उस फल का सेवन उसी मौसम में करिए। अगर आप उस फल के काफ़ी शौकीन हैं और दूसरे मौसम में आपको फल मिल भी रहा है, तो आप कभी कभी थोड़ा सा स्वाद ले सकते हैं, लेकिन निरंतर नहीं। ये सब भी मुसीबत को बढ़ा सकती है।
1: बचाव हम किस प्रकार करें? किसी व्यक्ति को अस्थमा हो जाता है तो उसके मन में ये भ्रांतियाँ फैल जाती है कि हमें अब हमेशा दवाइयाँ या इन्हेलर लेने पड़ेगी, तो कितना हद तक हमें इन्हेलर लेना पड़ेगा और दवाइयाँ कब तक लेनी पड़ेंगी?
2: मैं आकाशवाणी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन्हेलर से डरे नहीं। इन्हेलर केवल एक दवा पहुँचाने का जरिया होता है। जिनको अस्थमा है उनको सांस नली में परेशानी है, तो इन्हेलर केवल दवा को वहां तक तेजी से पहुंचाती है। तो इसमें कोई नशा युक्त पदार्थ नहीं है, इससे आदि होने का खतरा नहीं है। जब तक आपके चिकित्सक आपको सलाह दे तब तक आपको ये इन्हेलर लेना चाहिए। जब आपके चिकित्सक आपको बताए कि अब आप बेहतर हो गए हैं, आपकी इन्हेलर हट सकती या कम हो सकती है, उनकी सलाह मान के आप इनको हटा सकते हैं। लेकिन कृपया इन्हेलर नाम से डरे नहीं, ये बहुत सेफ होते हैं और ये जीवन बचाते हैं। अगर आपको अस्थमा हो तो हमेशा आप कहीं भी जा रहे हो एक इन्हेलर आपके साथ रहना चाहिए, और एक इन्हेलर खत्म होने से पहले एक दूसरा इन्हेलर आपके पास हो जाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आजकल देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे भी अस्थमा की बीमारी से पीड़ित हो जा रहे हैं, क्या कारण है डॉक्टर साहब कि छोटे बच्चे इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं? बेचारे माँ बाप परेशान रहते हैं और बच्चा हमेशा हंसता रहता है, हाफता रहता है, छींकता रहता है।
2: ये हम चिकित्सकों के लिए की भी काफ़ी परेशानी की बात है, क्योंकि जब हम लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे बच्चों में अस्थमा 7-8 साल के बाद होती थी, लेकिन आजकल मैं खुद देख रहा हूँ 2 साल 3 साल 4 साल में अस्थमा होने का। शहरी बच्चों में इसका सबसे बड़ा कारण कुछ भी बोलिए वायु प्रदूषण है। तो सरकार या समाज वायु प्रदूषण के खिलाफ जितने कदम ले सकते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे नन्हे बच्चों के फेफड़े को बचाएगी, नंबर वन। दूसरा, फिर से प्रकृति से दूर होना। पहले जो पानी का सेवन किया जाता था, आज के डेट में उन पानियों का सेवन नहीं होता है। कई तरह का ट्रीटेड वाटर चलती है, तो कृपया इन सब से दूर रह के जो पहले पानियों का सेवन होता था उसको करने से कहीं ना कहीं बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और इन सब बीमारियों से हम लोग बच्चों को बचा सकेंगे।
1: और दूसरी बात कि हमारा खान पान भी काफ़ी बिगड़ गया है, बाहर की चीज़ें फास्ट फूड का सेवन हम बहुत करने लग गए हैं, तो क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को और खासकर ऐसे छोटे छोटे बच्चे के माता पिताओं को?
2: कभी कभी मनोरंजन के लिए बाहर का खाना स्वाद चखना अच्छी बात है, जो 15 दिन में एक बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपने घरों पे भरोसा रखिए, अपने घरों के रसोई पे भरोसा रखिए और कोशिश करिए उस घर का खाना जितना ज़्यादा खाने का, तो आपको इस तरह की कृत्रिम पदार्थों से होने वाली बीमारियों से आपको बचा के रखिएगी।
1: घर का बना हुआ खाना ही खाइए, यदि घर का बना हुआ खाना खाते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा और देश स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय, छाती रोग विशेषज्ञ, आज आपने अस्थमा पर बड़ी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो, कल एक फिर नई
0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आरती गंगोपाध्याय से ली गई पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, विषय था अस्थमा कारण और उसका निदान। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में।

0: भी साथ साथ ही जाते हैं और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन भ्रामक वार्तानां खंडनं कृतम्। यासु इसरो संस्थायाः निजीकरणस्य उत तस्याः भूमिकायाः न्यूनीकरणस्य संभावना व्यक्ता आसीत्। सामाजिक माध्यमेषु प्रसारिते एकस्मिन् संदेशे इसरो संस्थया स्पष्टीकृतं यत् न तु अस्याः निजीकरणं करिष्यते न च अस्याः महत्त्वं न्यूनं भविष्यति। संस्थया उक्तं यत् अंतरिक्षक्षेत्रे निजीक्षेत्रस्य सहभागितायाः मुख्य उद्देश्यम् इसरो संस्थां भारतस्य भावि अंतरिक्ष कार्यक्रमस्य अग्रिमजनाः अनुसंधानेषु अधिक प्रभाविरूपेण ध्यानं केन्द्रीकर्तुं सक्षमं करणम् अस्ति। यदा च उद्योगक्षेत्रं परिपक्व प्रौद्योगिकीनां क्षमतानां च विस्तारं करिष्यति। दिल्ली राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा रेखा गुप्ता इत्यनया नवदिल्ल्याः सत्यनिकेतन क्षेत्रे भवन पतनस्य घटनायाः मजिस्ट्रियल इति दण्डाधिकारी अनुसंधानस्य आदेशः प्रदत्तः, तथा च भवनस्य स्वामिनः विरुद्धं FIR इति प्राथमिकी पञ्जीकर्तुं निर्देशोऽपि प्रदत्तः। मुख्यमन्त्री कार्यालयः अवदत् यत् घटना स्थलस्य समीक्षायाः, घटनायाः प्रारम्भिक मूल्याङ्कनस्य च अनन्तरं अयं निर्णयः स्वीकृतः। CMO कार्यालयः अवदत् यत् ये गभीर घटनायाः कृते उत्तरदायिनः इति ज्ञायते ते पूर्णतया उत्तरदातारः भविष्यन्ति, तथा च विध्याः कठोरतम उपबन्धैः व्यवहृताः भविष्यन्ति। अत्रान्तरे गतरात्रौ अपरस्य मृत शरीरस्य प्राप्ते सति अस्यां घटनायां मृतकानां संख्या 6 यावत् वर्धिता अस्ति। स्थले अन्वेषणस्य उद्धारस्य च कार्यम् अनुवर्तत। यत् दलानि भग्नावशेषान् निष्कासयितुं कस्यापि निबद्धस्य जनस्य अन्वेषणार्थं च कार्यं कुर्वन्ति। NDRF, अग्निशामकसेवा, देहली आरक्षकाः, अन्ये च विभागाः च भग्नावशेषान् निष्कासयितुं स्थले कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य श्रीवेङ्कटेश्वर महाविद्यालयः दुःखद भवनपतनस्य कारणात् अद्य निरुद्धः भविष्यति। महाविद्यालयः अवदत् यत् अस्थायी उपायरूपेण सत्यनिकेतनक्षेत्रे निवसतां छात्राणां मध्ये अनेकेषां वेतन अतिथि निवासस्थानानाम् असुरक्षायाः भावस्य च परिसमाप्तेः अनन्तरं छात्राणां कृते स्वस्य वर्गेषु आवासं कल्पयति। भवनपतनस्य दृष्ट्या आर्यभट्ट महाविद्यालये अपि अद्य अध्यापनं स्थगितमस्ति। बिहार उत्तरप्रदेशयोः विभिन्नेषु भागेषु भीषण जलाप्लावनेन सामान्य जनजीवनं तीव्रतया प्रभावितमभवत्। बिहारे गंगा, गण्डक, कोशी चेति प्रमुखाः नद्यः संकटस्तरम् अतीत्य प्रवहन्ति। पटनायां गंगानद्याः जलस्तरः अनेकेषु घट्टेषु उच्चतम आप्लवं स्तरम् अतिक्रमति, येन अधोवर्ति क्षेत्रेषु उच्चसतर्कता वर्तते। उत्तरप्रदेशे 24 मण्डलानि आप्लावग्रस्तानि सन्ति, यत्र वृष्टिसम्बद्धासु घटनासु 5 जनाः स्वप्राणान् अयच्छन् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तथा जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये

0: दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषाम, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई होगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। NDRF, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और NDRF के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। ये इमारत पेइंग गेस्ट आवास के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कल दोपहर करीब 1:30 बजे इमारत ढहने के समय उसके बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल दुबई पहुंचे। वे संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे दुबई में आयोजित एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। भारत ने AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC Under-20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of the Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides also celebrating this year as the India-France Year of Innovation.
1: बीएपीएस के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहां भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
2: Delhi Chief Minister Rekha Gupta has ordered a ministerial inquiry into the building collapse incident in Satyaniketan area of New Delhi and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. The CMO said those found responsible for the grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. Death toll in the incident has risen to 6 following the recovery of one more body late last night. Search and rescue operations continued at the site as teams worked to clear the debris and look for any trapped person. Teams from the NDRF, Fire Service, Delhi Police and other agencies are working at the site to clear the debris. Union Home Minister Amit Shah spoke to Delhi Chief Minister, Delhi Police Commissioner and Director General of NDRF and assessed the situation on the ground. Mr. Shah said the injured have been provided with all necessary medical assistance. The building was being used as a paying guest accommodation. A senior police officer said repair work was underway in the basement when the structure collapsed at around 1:30 p.m. yesterday. Delhi Mayor Pravesh Wahi has said that all illegal constructions having more than 4 floors will be sealed with immediate effect. He said strict action will also be taken against officials found responsible, including the immediate dismissal. Union Home Minister Amit Shah will present the prestigious President's Police Colour to Goa Police today on the final day of his visit to the state. The ceremony will mark a proud milestone for the state police force. The ceremony will be held at the Dr. Shama Prasad Mukherjee Indoor Stadium at Talegaon. The President's Police Colour or Rashtrapati Ka Nishan is one of the highest honours given to a police force. For Goa Police, the honour recognises years of dedicated service, discipline and commitment to the people of the state. Before the ceremony, Amit Shah will attend a meeting of the Western Zonal Council which will discuss key issues of regional importance. Indian Space Research Organisation ISRO has issued a clarification on reports circulating the media regarding the speculations and misinformation that there is an attempt to privatise ISRO or reduce its role. In a social media post, ISRO said that it will neither be privatised nor will its importance be diminished. It added that participation of the private sector in space is aimed at enabling ISRO to focus even more strongly on the next generation of India's space program, where industry scales up mature technologies and capabilities. Floods have affected normal life in several parts of Bihar, with major rivers including Ganga, Gandak and Koshi flowing above the danger mark. In view of the rising water level of the Ganga, authorities are maintaining heightened vigilance in downstream areas. The river has crossed the highest flood level at several ghats in Patna. In Uttar Pradesh, flood conditions remain critical with 24 districts affected and several rivers in spate. 5 people have died in rain-related incidents. Meanwhile, the Indian Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over Bihar, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal and the northeastern parts of the country during the next 2 days. In badminton, Indian pair of Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty clinched the men's doubles title at the China Masters in Shenzhen. The Indian duo defeated China's Hu Jiting and Run Xiaohong. And that is the end of this news bulletin.
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। FM 103 MHz पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज

डालते हैं एक नजर इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी देर में यानी 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पलाश। कलाकार होंगे अग्नेश कुमार, जानकी देवी और उनके साथी। स्वर सरिता कार्यक्रम में आज आप सुनिएगा जगजीत सिंह की गाई हुई गजलें।

समाचार प्रभात सुबह के 8 बजे और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, जिसे हम रिले करते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुनिए क्या प्रादेशिक समाचार 8:30 पर। समाचारों के बाद लौटेंगे स्टूडियो 8:45 पर और सुनवाएंगे फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गुंजन। नौ बजे आप सुनते हैं खेल विज्ञान स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों पर आधारित हमारा प्रोग्राम जोहार परामो। नौ बजकर 30 पर हम आपको सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन के ठीक 10 बजे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 10:05 से। हम आपको लिए चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम। समय रहेगा 10:10। दोपहर में आप सुनिएगा 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 1:10 पर आप सुनिएगा हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार और समाचारों के बाद पुनः विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। लौटेंगे स्टूडियो शाम 5:30 पर कार्यक्रम विवरण के साथ।

शाम 6 बजे हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा प्रादेशिक मुख्य समाचार। छह बजकर 2 मिनट पर हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी। कृषकों को संबोधित कार्यक्रम आप सुनिएगा ग्रामीण सभा 6:30 से।

शाम 6:55 पर हम शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा ठीक 7 बजे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल 7:10 से। सात बजकर 15 मिनट पर हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।

रात्रि 8 बजे फिल्मी गीतों का प्रोग्राम पेश करेंगे चित्रपट से। शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में रात्रि 8:45 से, जहां से आप सुनिएगा समाचार संध्या, न्यूज 8:09 और उर्दू में खबरें। रात्रि 9:30 पर आप सुनिए

आप विविध भारती के कार्यक्रम लौटेंगे स्टूडियो रात्रि 10 बजे फिल्मी गीतों के प्रोग्राम के साथ इस कार्य रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर। हर रोज की तरह हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि 11:10 पर।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। सुनते हैं लोक गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम पलाश।

কাজ ডমকাছে রে দাদা কেমা রে বাদয়া দাদা কেমা রে বাদয়া।

बाजे बड़ी मजा लगे दादा ढोल हो ए दादा ढोल नगेरा बाजे।

श्रोताओं, पलाश कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अग्नेश कुमार और जानकी देवी से नागपुरी लोकगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, प्रस्तुत है सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं कन्वर मोहिंदर सिंह बेदी की नज्म, आवाज़ है जगजीत सिंह की।

पर श्रद्धा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कन्वर महेंद्र सिंह बेदी की नज्म, आवाज दे रहे थे जगजीत सिंह। तो इसी के साथ ही हमारा आज का सुगम संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर सरिता समाप्त होता है। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा कुछ ही पलों में समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इसे निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 30-3 से हराकर 20 वर्ष बाद एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर

0: के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है। श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस संभावना को भी एक नया आयाम दिया है।
1: भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स की संभावनाओं पर बातें होती है। स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। ये मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है। पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
2: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
0: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मृतकों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। NDRF, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और NDRF के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध इमारतें तत्काल सील की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश कॉलेज आज इस हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। वहीं आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी। जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
8: इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। परिषद का यह मंच आपसी सहयोग को बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
9: मध्य प्रदेश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण है कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्य प्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध हैं।
0: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और एक सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के अंतर्गत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जाँच जारी है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
10: इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
0: भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में दो दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ। महोत्सव में पहाड़ी समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग

0: आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112331481, 0112371717 और 0112331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद सर फिरोजी। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है नक्सलवाद खत्म किया, देश को अब ड्रग्स मुक्त बनाएंगे। ड्रग्स मुक्त युवाओं से 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के इस कथन को सुर्खी बनाया है, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, नक्शे में यही दिखे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। हिंदुस्तान के अनुसार भारत ने बाल विवाह और जबरन विवाह रोकने के लिए 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। दैनिक भास्कर ने अपने आर्थिक पन्ने पर लिखा है महिलाओं के काम पर जाने से घरों में बराबरी बढ़ी। एक शोध के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने का असर सिर्फ परिवार की आय पर नहीं पड़ता, घर में उनकी स्थिति भी बदलती है। 2025 की श्रम सेवा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 39 महिलाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप से 4 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, पंजाब केसरी की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति की घोषणा की। दैनिक भास्कर लिखता है नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 400 करोड़ का बजट। कई अखबारों ने अपने खेल पृष्ठ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पहली चाइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताबी जीत को सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India-France strategic partnership is special because it rests upon strong foundation of long-standing cultural and political connections. Delhi Chief Minister Rekha Gupta orders magisterial inquiry into Satya Niketan building collapse incident. FIR lodged against building owner. ISRO says space sector reforms are aimed at creating larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem, and it should be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Union Home Minister Amit Shah to chair 20th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa today. OPEC plus countries decide to keep oil production target for October unchanged. And in football, India qualify for AFC Under-20 Asian Cup after 20 years following 3-0 victory over Bangladesh in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of the Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate

श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। किसी कारण बस आप प्रादेशिक समाचार का अंक नहीं सुन पा रहे हैं, इसके लिए मैं खेद है। आइए सुनते हैं फिल्मी गीत।

0: आर से। राज्य के कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर राज्य सरकार ने 2 दिवसीय राजकीय शोक को घोषित किया है। इस दौरान सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सरकारी समारोह नहीं होंगे। राजकीय शोक के कारण आज राज्य के सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद रहेंगे। शिक्षा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के कैबिनेट मंत्री और गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार के अंतिम संस्कार के बाद एक भावुक संदेश साझा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे उनके लिए बड़े भाई जैसे थे। उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया है, लेकिन उनका संघर्ष हमेशा जीवित रहेगा।
1: यहाँ इनके परिवार जन के लिए मैं क्या ईश्वर से मांगू, तो मुझे खुद के लिए लगता है कि ऊपर वाला शक्ति दे हमको, हमारे सरकार को, कि उनकी कमी को हम लोग किसी तरीके से समतुल्य लेके आ पाए। और जिस तरीके से इनका लगाव जुड़ाव क्षेत्र में रहा है वो आप सबको पता है। जीवन चक्र में कब क्या किसके साथ हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है।
0: दिवंगत मंत्री सुदेव कुमार के निधन पर भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्रों के दौरान उन्होंने देखा कि सुदेव कुमार शांत और गरिमापूर्ण तरीके से अपनी बात रखते थे। उन्होंने उनके आकस्मिक निधन को राज्य के लिए एक बड़ी और अपूर्णीय क्षति बताया।
2: बहुत शॉकिंग पूरे झारखंड के लिए है। सुदीप कुमार सोनू जी डिफैक्टो नंबर 2 थे कैबिनेट के, 4 प्रमुख विभागों के मंत्री थे, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट था, टूरिज्म था और हायर एजुकेशन था। बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी उनके कंधों पर और वो बौद्धिक मंत्री हम लोग उनको हमेशा कहते थे, क्योंकि उनसे जब मुलाकात होती थी तो अलग अलग विचारधाराओं के होने के बावजूद बहुत सार्थक चर्चाएं होती थी।
0: इससे पहले राज्य के दिवंगत नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार का कल गिरिडीह के हरसिंहरायडीह घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र श्रेयस ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस भावुक क्षण पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में आयोजित गृह मंत्रालय की बैठक में साल 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों का रोड मैप जारी किया है। गृह मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ी कार्रवाई, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को काफी मजबूत किया है।
3: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: झारखंड के डीजीपी नियुक्ति मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। अदालत द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को सूचित किया है कि सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले तदाशा मिश्रा को डीजीपी नियुक्त करना सर्वोच्च अदालत के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ आज इस मामले पर राज्य सरकार के नए नियमों और एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट पर सुनवाई करेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में वीकेंड पर पूरा पार्किंग शुल्क वसूलने के मामले को नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने साफ किया है कि शनिवार, रविवार और छुट्टियों के दिन 50% छूट का नियम हर हाल में लागू होगा। नगर आयुक्त ने सभी वाहन पड़ावों की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि मनमानी करने वाले ठेकेदारों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उनके टेंडर भी रद्द किए जा सकते हैं।
4: हमने भी अपनी टीम को बोल रखा है, बाजार शाखा से भी ये निर्देशित किया जा चुका है कि जहाँ भी लगता है रैंडम जांच करें, उस एजेंसी पर ही दंडात्मक कार्रवाई डायरेक्ट करने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ करें। हमारा आग्रह है कि कृपया जैसे भी हो इसके वीडियो फोटो वगैरह आप लोग व्हाट्सएप करिए, जिससे कि कार्रवाई करने के समय फिर हमें जितना कम से कम समय लगे और डायरेक्टली उस पर कार्रवाई किया जाए।
0: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने पलामू से एक और आरोपी कुंदन कुमार को गिरफ्तार किया है। जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े मामलों में जांच तेज करते हुए सीआईडी अब तक कुल 32 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 200 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। सरायकेला, खरसावां और दुमका जिलों में चेक डैमों में डूबने से बड़ा हादसा हुआ है। सरायकेला के असंगी चेक डैम में नहाने उतरे दो युवक तेज बहाव में लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। वहीं दुमका के धोबई नदी चेक डैम में रेल बनाने के चक्कर में दो स्कूली छात्रों की डूबकर मौत हो गई। प्रशासन ने युवाओं से गहरे पानी में न जाने की सख्त अपील की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी, जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: मौसम विभाग ने राज्य में 7 से 12 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में आज कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं 9 सितंबर को लोहरदगा, गुमला और हजारीबाग समेत उत्तर पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जापान के नगोया शहर में होने वाले 20वें एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय साइकिलिंग टीम में झारखंड की सरिता कुमारी का चयन हुआ है। वह इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है।

जागरण के अनुसार पत्नी की बात मान लेते तो शायद बच जाते सुदिव्य। प्रभात खबर के शब्द हैं, आंखें नहीं हैं पर शेखर और धीरज ने नापी हिमालय की ऊंचाइयां। हिंदुस्तान ने झारखंड हाई कोर्ट के हवाले से लिखा है, शादीशुदा बेटी को भी अनुकंपा पर नौकरी का हक। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली में 5 मंजिला पीजी इमारत ढहने और हिंदुस्तान टाइम्स ने बिहार में गंगा की सहायक नदियों में बाढ़ की खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर आज राज्य के सभी सरकारी स्कूल कॉलेज और दफ्तर बंद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साझा किए भावुक संदेश। झारखंड के डीजीपी नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। शीर्ष अदालत राज्य सरकार के नए नियमों और नियमों के उल्लंघन पर करेगी विचार। रांची में वीकेंड और छुट्टियों पर पूरा पार्किंग शुल्क वसूलने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। नगर आयुक्त ने दिए जांच के आदेश। मौसम विभाग ने राज्य में आज से 12 सितंबर तक के लिए जारी किया येलो अलर्ट। वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। और जापान में आयोजित होने वाले 20वें एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय साइकिलिंग टीम की घोषणा। झारखंड की सरिता कुमारी का हुआ चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गुंजन।

किस्मत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ों में। गीत के बोल थे एस एस बिहारी के और संगीतकार ओपी नैयर। सुनते हैं इसी प्रोग्राम का अगला गीत।

पारस मैंने फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और कमल बारोट की आवाज़ों में। गीतकार थे असद भोपाली और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गुंजन और मैं हूँ संजय सिन्हा।

आशा भोसले का गाया हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी मेरा साया, गीतकार थे नजम मेहदी अली खान और संगीतकार थे मदन मोहन। श्रोताओं

0: नागिन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार थे राजेंद्र किशन और संगीतकार हेमंत कुमार। तो श्रोताओं, इसी गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गुंजन समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिंड डाल्टनगंज केंद्र से, सुबह के 9 बजने वाले हैं, प्रस्तुत है खेल विज्ञान और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों पर आधारित हमारा प्रोग्राम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

जोहार पलामू कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजय सिन्हा। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और जोहार। सबसे पहले आज का विचार, साधना कोई ऐसा कृत्रिम व्यापार नहीं जिसे कुछ समय तक किया जाए और फिर उसके पूर्ण होने पर घोषणा कर दी जाए। साधना तो साधक के अंतकरण में प्रभावित होने वाली वह अखंड अंतरधारा है जो जागृत में स्मरण, कर्म में समर्पण, वाणी में मधुरता और हृदय में भवगत्राश्रम बनकर निरंतर बहती रहती है। साधना वही है जो क्रिया से संस्कार, संस्कार से स्वभाव और स्वभाव से स्वाभाविकता बन जाए। भोजन हो अथवा भजन, व्यवहार हो अथवा एकांत, सुख हो अथवा दुख, जब प्रत्येक अवस्था भगवत स्मृति की भूमि बन जाए तभी साधना जीवन का प्राण बनती है। भगवत प्राप्ति के पथ पर सबसे सूक्ष्म बाधाओं में एक है कामना के साथ किया गया भजन। जब ईश्वर स्मरण भी किसी सांसारिक उपलब्धि का साधन बन जाता है तब भक्ति भाव की निर्मल धारा में स्वार्थ का रंग घुल जाता है। साकाम भजन में साधक भगवान को नहीं वस्तुतः अपनी इच्छा की पूर्ति को खोजता है।

इच्छा पूर्ण हो तो गई तो मन भोग की ओर दौड़ता है और इच्छा पूर्ण रह गई तो वही मन निराशा क्षोभ अथवा क्रोध से भर उठता है। इस प्रकार कामना की पूर्ति में बंधन बनती है और हम उसकी आपूर्ति भी। इसलिए भक्ति का प्राण निष्कामता के साथ करने चाहिए। निष्काम भजन में साधक भगवान से कुछ मांगने नहीं जाता, वह अपने को ही भगवान के चरणों में रख जाता है। वहाँ प्रार्थना वस्तु के लिए नहीं, भवकत निधि के लिए होती है। जहाँ प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं, प्रेम में स्वयं को मिटाने के लिए होता है। जब साधक की अंतिम कामना भी केवल यही रह जाती है कि प्रभु आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा बने, तभी भक्ति अपने निर्मल स्वरूप में प्रकट होती है। साधक की चरम परिणति कामना का क्षय, अहंकार का विसर्जन, प्रेम का उदय और जीवन का पूर्ण मार्गदर्पण में रूपांतर। जब साधक को प्रत्येक सहज भागवत प्रसन्नता के साथ उनके चरणों को समर्पित होती चली जाती है।

नमस्कार, मैं हुसैन जैसीना और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार पर आमो। एक नज़र डालते हैं स्थानीय खबरों पर। हेमंत सरकार के कदावर कैबिनेट मंत्री तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य सुतभ्य कुमार सोनू का रविवार आज सुबह गिरिडीह में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 56 वर्षीय सुतभ्य कुमार सोनू हेमंत सरकार में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, नगर विकास विभाग तथा पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग के मंत्री थे। वो अपने पीछे पत्नी, दो बेटियां और एक बेटे समेत भरा पूरा परिवार छोड़ जाए गए हैं। रविवार को गिरिडीह में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके 12 वर्षीय बेटे हर्ष कुमार ने मुखाग्नि दी। मंत्री के निधन की खबर सुनकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गिरिडीह पहुंचे और अंतिम संस्कार में पूरे कार्यक्रम में भी उपस्थित रहे। वह पार्थिव शरीर को कंधा देते समय रो पड़े। इधर मंत्री सुतभ्य कुमार के निधन पर राज्य सरकार ने 2 दिनों 6 एवं 7 सितंबर को राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और राज्य में कोई राजकीय समारोह नहीं आयोजित की जाएगी। 7 सितंबर को राज्य सरकार के सभी कार्यालय तथा सरकारी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। अधिकुटकू सरना समाज पलामू ने रविवार को केंद्रीय सरना स्थल पोखराह कला में मासिक बैठक की। इसमें नशा मुक्त करम पर्व मनाने का संकल्प लिया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष प्राकृतिक महापर्व करम पर्व 22 सितंबर मंगलवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मिथिलेश उराव एवं संचालन जिला सचिव शंकर उराव ने किया। बैठक में करम पर्व का कार्यक्रम तय किया गया। इसके तहत 15 सितंबर मंगलवार को प्रातः 6 बजे जावा जव रखा जाएगा। 22 सितंबर मंगलवार को संध्या 8 बजे करम गाड़ना करम पूजा की सेवा होगी। 23 सितंबर को जावा खोसी यह विसर्जन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष मिथिलेश उराव ने कहा कि करम पर्व प्रकृति, भाई बहन के प्रेम का प्रमुख आदिवासी पर्व है। पर्व को ऐतिहासिक बनाने के लिए जिले के 211 गाँव में सरना अखाड़ा में पाहन महतो प्रधान व कोटवार की अगुवाई में पूजा की जाएगी। जिला सचिव शंकर उराव, जिला उपाध्यक्ष सुनील उराव, महिला समिति की जिलाध्यक्ष सरिता उराव सहित अन्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार पलामू और बातें करेंगे अब खेल की। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए पलामू के 28 खिलाड़ी को चयन किया गया है। हुसैनाबाद अनुमंडल मैदान में रविवार को पलामू जिला कबड्डी संघ के तत्वाधान में 20वीं जूनियर बालक एवं बालिका झारखंड राज्य कबड्डी प्रतियोगिता के लिए चयन ट्रायल आयोजित किया गया। प्रदर्शन के आधार पर 14 बालिका और 14 बालक खिलाड़ियों का चयन किया गया है। बालिका वर्ग में चयनित खिलाड़ी हैं अंजलि कुमारी, कृष्णा कुमारी, अंशिका कुमारी, अनामिका कुमारी, जूली कुमारी, संजना कुमारी, पम्मी कुमारी, जया कुमारी, रुचि कुमारी, छोटी कुमारी और रूबी कुमारी। बालक वर्ग में जो खिलाड़ी चयनित हुए हैं उनके नाम हैं आदित्य कुमार सिंह, शुभम कुमार, सूरज सिंह, अंकित यादव, मोहित कुमार, निकास कुमार, अंकित कुमार, दीपक कुमार, सोनल कुमार, रोशन कुमार, संजीव कुमार, उत्सव दुबे, सुजीत कुमार और अमित कुमार। भारतीय महिला टीम ने रविवार को AAHA जूनियर एशिया कप के लिए एलिट फोर मुकाबले में मलेशिया को 11-1 से करारी शिक्षक देकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। भारत अब पुल चरण के अपने तीसरे मुकाबले में 8 सितंबर को जापान का सामना करेगी। टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर जीत के साथ अभियान शुरू करने वाली भारतीय टीम की ओर से मलेशिया के विरुद्ध 7 अलग अलग खिलाड़ियों ने गोल कर दिए। भारत ने 4 गोल मैदानी खेल से 5 पेनाल्टी कॉर्नर और 2 पेनाल्टी स्ट्रोक के जरिए किए। पूजा साहू ने पहले ही मिनट में पेनाल्टी स्ट्रोक को गोल में बदल कर भारत का खाता खोला। चौथे मिनट में पूर्णिमा यादव ने गोल कर बढ़त दोगुनी कर दी। गत चैंपियन भारत ने अपना दबदबा कायम रखते हुए 8वें मिनट में विनिमा धन ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदला, जबकि 14वें मिनट में कृष्णा शर्मा ने एक और गोल कर दिया। पूर्णिमा ने दूसरे क्वार्टर में 17वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल कर अपना दूसरा गोल किया। इसके बाद हाफ टाइम से पहले 2 और गोल कर दिए गए। सुखबीर कौर ने 21वें मिनट और गीता यादव ने 28वें मिनट में गोल किए, जिसे भारत मध्यांतर तक 7-0 से आगे था। मलेशिया के 38वें मिनट में नूर मोहम्मद के गोल से खाता खोला। मैच के 42वें मिनट में एक पेनाल्टी कॉर्नर मिलने के बाद पूजा ने अपना दूसरा गोल पूरा किया। इसके एक ही मिनट बाद सानिका चंद्रकांत माने ने गोल कर भारत की बढ़त 9-1 से कर दी। गीता ने 53वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदला। सानिका ने 98वें मिनट में अपना पूरा गोल कर भारत को 11-1 से जीत दिला दी।

नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार पड़ा हूँ। बातें करेंगे कुछ स्वास्थ्य संबंधी वजन घटाने वाली दवाओं का संबंध है पुरुषों में। पुरुष में होने वाले गंजेपन के अधिक जोखिम से हो सकता है। जिन पुरुषों में पहले से ही इन स्थिति के लिए वंशानुगत झुकाव होता है उनमें उनका जोखिम 7% और बढ़ जाता है। NYU लेगन हेल्थ के रिसर्च का यह अध्ययन सामने आया है। डर्मेटोलॉजी में हाल ही में ऑनलाइन प्रकाशित हुआ था। इस अध्ययन में पाया गया कि विश्वविद्यालय में शोध किया गया था, शोधकर्ताओं ने भी भाग लिया। शोधकर्ताओं ने पाया कि हजेपिग, बेयोगी और जेप बाउंड जैसी वजन घटाने वाली दवाओं से बाल झड़ने का जोखिम बढ़ता है। इसमें वंशानुगत कारण जोड़ने पर यह और बढ़ जाता है। पियर रिड्यूड स्टडी पहला ऐसा अध्ययन किया है जिसमें GLP-1 एक्टिविटी और एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया के बढ़ते जोखिम के बीच जेनेटिक कन्वेक्शन की पहचान की गई है। शोधकर्ताओं ने GLP-1R जीन का अध्ययन किया जो स्वाभाविक रूप से शरीर के GLC-1 रिसेप्टर प्रोटीन के स्तर को प्रभावित करता है और इसकी गतिविधि की तुलना में पुरुषों में एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया से संबंधित अनुवांशिक मार्करों के साथ की जा गई। उन्होंने पाया कि GLP-1R जीन जो स्वाभाविक रूप से GLP-1 रिसेप्टर प्रोटीन को उच्च स्तर से जुड़े हुए होता है, इसका पुरुषों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए वजन घटाने वाली दवाओं का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप जल्दी गंजे हो जाएंगे। वंशानुगत अगर ये बीमारी है

श्रोताओं, पलटते हैं पन्नों को और जानते हैं क्या कहता है आज का इतिहास, इतिहास के पन्ने में क्या बताती है। तो आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर का इतिहास हम जानेंगे। आज के दिन भारतीय एवं विश्व इतिहास में 7 सितंबर की जो प्रमुख घटनाएं हैं, 1701 में जर्मनी, इंग्लैंड और नीदरलैंड ने फ्रांस विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1902 में आज के दिन ऑस्ट्रेलिया में भयानक सूखा अकाल पड़ने के बाद देश भर के लोगों ने वर्षा के लिए एक साथ ईश्वर से प्रार्थना की थी। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी आज के दिन। 1923 में वियना में इंटरपोल की स्थापना की गई। 1931 में आज के दिन लंदन में गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सत्र शुरू हुआ। 1943 की बातें करें तो टेक्सास के ह्यूस्टन में एक होटल में आग लगने से 45 लोगों की मौतें हो गई थी। हंगरी की बातें करें तो सभी मठों को बंद कर दिया गया था आज के दिन 1950 में। 1965 में चीन ने घोषणा की कि वह भारतीय सीमा पर तैनात अपने सैनिकों को सुदृढ़ करेगा। 1965 में भारतीय सीमा पर चीन द्वारा सेना की तैनाती की घोषणा की गई थी। 1998 में अंतर संसदीय यूनियन IPU का 100वां सम्मेलन मॉस्को में प्रारंभ हुआ था। 1999 में एथेंस में 5.9 तीव्रता के भूकंप से 143 लोगों की मौत हो गई थी और 500 से अधिक लोग घायल हो गए थे। दो हज़ार 2005 में मिस्र में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। 2006 में बेरेंट्स सागर में रूस की एक परमाणु पनडुब्बी में आग लगने से चालक दल के 2 सदस्यों की मौत हो गई थी। 2008 की बातें करें तो भारत अमेरिका परमाणु करार के तहत NSG के 45 सदस्यों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से परमाणु व्यापार की छूट दी। बंगाल के राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी, राज्य के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य एवं तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी के बीच सिंगूर में टाटा मोटर्स के मामले में सहमति बनी। कनाडा ने जोसेफ कोरेन को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया था। हम उन्हें याद कर ले जिनका आज जन्म हुआ था। 1934 में आज के दिन सुनील गंगोपाध्याय सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध बंगला साहित्यकार थे, इनका जन्म हुआ था। इला रमेश भट्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम सहकारिता महिलाओं और लघु वित्त आंदोलनों में सम्मानित नेता, इनका जन्म हुआ था। सुरेंद्र वर्मा हिंदी के अग्रणी साहित्यकारों में से एक थे, इनका जन्म 1941 को हुआ था। ममूटी मलयालम फिल्म अभिनेता, इनका जन्म 1948 में हुआ था। आलोक मेहता भारतीय

पत्रकार, टीवी प्रसारक और लेखक थे। इनका जन्म 1952 में आज के दिन हुआ था। अनिल चौधरी प्रसिद्ध लेखक, नाट्य निर्माता तथा निर्देशक। भावना सोमिया 1950 में इनका जन्म हुआ था। भारतीय लेखक, फिल्म इतिहासकार, पत्रकार। गोपीनाथ कविराज संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक। इनका जन्म 1887 को आज के दिन हुआ था। बी आर इशारा प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक। इनका जन्म 1934 में आज के दिन हुआ था। हम उन्हें नमन कर लें जो आज के दिन हम सबको छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहा था। 2013 में रमेश भंडारी त्रिपुरा, गोवा और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल थे। इनका निधन 2013 में आज के दिन हुआ था। 1998 में के एम चांडी स्वतंत्र सेनानी तथा गुजरात और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल थे। इनका निधन आज के दिन 1998 को हुआ था। 1997 में आज के दिन मोबुतू सेसेको जेरे के राष्ट्रपति थे। इनका भी निधन आज के दिन हुआ था। तो इस जानकारी के बाद हम आइए सुनते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फिल्मी गीत।

0: श्रोताओं, इसी कार्य के साथ ही हमारा आज का जोहार पलामू कार्यक्रम समाप्त होता है। अपने दोस्त संजय सिन्हा को आगे दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जोहार पलामू।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पनामू एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। सफलता की राह में मुश्किलें तो आएंगी, पर जो इंसान हिम्मत नहीं हारता वही एक दिन अपनी मेहनत से परिस्थितियां बदल देता है। श्रोताओं, इसे हमें भेजा था सुंदरनगर हिसार हरियाणा से मोनिका खरलवा, पंकज, शिवम, नैन्सी, सुरेश खरलवा जी ने। आप सभी को उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है, देश हमारा, शान हमारी, तिरंगा है हमारी पहचान। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने। उन्होंने लिखा है, नमस्कार, जब भी अगस्त का महीना आता है हमारा मन आजाद हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अनेकानेक स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में अनायास ही नतमस्तक हो जाने को लालायित हो जाता है। आपने 10 अगस्त से 14 अगस्त वाले सप्ताह में सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरीखे महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन वृत्तांत उमंग कार्यक्रम में शामिल करके मन को उत्साहित और जोश से भर दिया। समय अनुकूल कार्यक्रम पेश करना उमंग की पुरानी परंपरा है, हम इसके कायल हैं। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद और आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया, करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की, तो आइए जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? इसका उत्तर है साथियों, सम्राट अशोक मौर्य वंश के सम्राट थे। हमारा अगला प्रश्न था, शहीद बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहां हुआ था? इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। शहीद बालक बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा राज्य के ढेंकानाल जिले के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है? इसका उत्तर आप सबने अलग अलग ढंग से दिया था, लेकिन मूल उत्तर है, जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की सामाजिक परंपरा से हमें संदेश मिलता है कि हमें अपनी उपयोग की हुई पुरानी वस्तुओं के प्रति भी सम्मान और धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न था, जापान के क्यू शिराता की रेलवे स्टेशन को कब बंद कर दिया, जहां से काना हराड़ा नाम की स्कूली बच्ची ट्रेन लेती थी? इसका उत्तर है साथियों, जापान की स्कूली छात्रा काना हराड़ा रोज क्यू शिराता के स्टेशन से स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी। ये स्टेशन मार्च सन 1918 को तब बंद कर दिया गया जब उस बालिका के स्कूल का अध्ययन पूरा हो गया। और हमारा अंतिम प्रश्न था, सेब की खेती करने वाले श्री सत्यानंद स्टोक्स किस देश के, किस राज्य के निवासी थे? सत्यानंद स्टोक्स संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया शहर के निवासी थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, और प्रस्तुत है उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
0: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के विशेष संस्करण श्रोता संवाद में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका मित्र अजीत। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति माह हम आपके लिए लेकर आते हैं श्रोता संवाद, जिसमें हम करते हैं चर्चा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और एनसीईआरटी की संयुक्त पहलों के बारे में। हमें पता है कि आपकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो चलिए अब आपकी उत्सुकता शांत कर देते हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा शिक्षा में जेंडर समावेशन। तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर श्वेता तंवर। तो आपके बारे बता दूं कि आप एनसीईआरटी के जेंडर अध्ययन विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो सबसे पहले करते हैं चर्चा की शुरुआत इस प्रश्न के साथ कि जेंडर समावेशन से आपका क्या अर्थ है। दूसरे शब्दों में पूछूंगा, जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या होता है?
3: जी, इससे पहले कि हम जेंडर का अर्थ समझें, हमें लिंग और जेंडर के बीच का मूलभूत अंतर को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। जहां लिंग जैविक विभिन्नताओं से संबंधित है, वहीं जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। जेंडर जैसे कि पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व से जुड़ी विशेषताएं और व्यवहारों को संदर्भित करता है। जैसे किसी विशेष समाज में लड़कों लड़कियों, पुरुषों और महिलाओं के दृष्टिकोण, भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों तथा व्यवहार को आकार देता है। जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि समाज में सभी जो लिंग हैं, जैसे कि स्त्री पुरुष या फिर और भी जेंडर आइडेंटिटीज हैं,
0: बालक बालिका हो सकते
3: हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और उसके अलावा हमारे ट्रांसजेंडर्स भी हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करती है।
0: तो आज का जो हमारा विषय था वो था जेंडर समावेशन, वो भी शिक्षा में। इसकी व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगी?
3: जी, पहले तो हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की
0: जी।
3: और उसके बाद फिर हम आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर समावेशन का अर्थ है जितने भी हमारे समाज में स्त्री पुरुष या फिर अलग तरह की जेंडर आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर
0: जी,
3: उन सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए तथा सम्मान मिलना चाहिए
0: जी।
3: और उनको जितने भी हमारे क्षेत्र हैं उन सभी में उनका पार्टिसिपेशन हर तरह से बराबर हो,
0: यानी उनकी भागीदारी या उनकी प्रतिभागिता बनी रहे।
3: हाँ,
0: आप ये कहना चाहते
3: जी,
0: हैं जी। तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है और मुझे आशा है कि हमारे श्रोता भी इस

0: प्रश्न के उत्तर के द्वारा बहुत संतुष्ट होंगे। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी की क्या भूमिका है?
1: जी अजीत जी, ये प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्व रखता है आज के स्थिति में। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि 6 साल पहले आई थी, आज अपना 6ठा वर्ष पूरा कर चुकी है
0: जी।
1: और इसी के चलते एनसीईआरटी भी इसके सालगिरह को मना रहा है
0: जी।
1: जैसा कि हम देख सकते हैं, और जेंडर इक्वालिटी और समावेशन के जो शिक्षा के मूल आधार हैं
0: जी,
1: उनको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्तंभों में रखा गया है
0: जी।
1: ताकि हर वर्ग के छात्रों को समान अवसर मिल सके। और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है, वो स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी हमारे जो बालिकाएं हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं, उन सब में बिना भेदभाव के सुरक्षित तरीके से तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके।
0: तो डॉक्टर श्वेता, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, इसके विषय में कुछ और आप कहना चाहेंगी? यानी मेरा कहना है कि क्या इस पर कुछ और विस्तार आप देना चाहेंगी?
1: जी अजीत जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, बट उससे पहले जरूरी ये है कि जेंडर इक्वालिटी की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी
0: जी।
1: तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी ये जो नीति है 2020 में आई, इन्होंने एक टर्म दिया सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जिसको भी हम ये भी कह सकते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो
0: या तो वंचित वर्ग भी कह सकते हैं,
1: वंचित लोग जो हैं
0: जी।
1: तो इसमें उन्होंने जेंडर आइडेंटिटीज को रखा, जैसे कि महिलाएं और ट्रांसजेंडर। दूसरा उन्होंने रखा सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसमें कि एससी एसटी ओबीसी और हमारे माइनॉरिटीज भी आते हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन भी हो सकते हैं, कुछ जो हमारे वर्ग ऐसे भी हैं जो भारत के दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो उन तक भी संसाधनों की हमेशा जो है पहुंच नहीं हो सकी है पूरी तरह से। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन सभी को इंक्लूड करती है अपने उसमें,
0: उन सबको
1: शामिल करती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: तो इसमें कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो जितनी भी हमारी बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, उन सभी को इन वर्गों में देखा जा सकता है। हमारी जो लड़कियां हैं वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के सेक्शन से भी आती हैं, कहीं ना कहीं वो जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज हैं उनमें भी दूर से आती हैं, या दिव्यांग जनों में भी हमारी बहुत सारी लड़कियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी डीजीज की बात जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। अब प्रॉब्लम क्या थी या कंसर्न्स क्या थे, वो ये कि इन सभी के जो स्कूल छोड़ने की दर है हमारी जो लड़कियां हैं,
0: या
1: ड्रॉप आउट रेट जिसको हम बोलते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई।
0: किनमें? लड़कों की संख्या में या लड़कियों के?
1: लड़कों के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो लड़कियों के जो ड्रॉप आउट रेट्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है
0: जी।
1: उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन कारणों पर चर्चा की गई है, उनको इसमें शामिल किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और किस तरह से इन कंसर्न्स को, इन गैप्स को हम भर सके, इन पर काम कर सके, उसके बारे में कुछ प्रावधान और रणनीतियां दी गई हैं।
0: तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, अब हम ये जानना चाहेंगे विशेष करके श्रोताओं की ओर से, मेरा प्रश्न ये होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए प्रावधान क्या क्या है?
1: जी, सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रावधान जो है वो है सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट, जिसे कि हम ये कह सकते हैं
0: सुरक्षित वातावरण,
1: सुरक्षित बुनियादी जो ढांचा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
0: जी,
1: वो सबको मिले।
0: तो आपने बात की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी बुनियादी ढांचे की, तो बुनियादी ढांचे से क्या तात्पर्य है आपका?
1: जी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे स्कूल परिसर या फिर कॉलेजों के परिसर में कई बार क्या होता है, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं होते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनका जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ पाया गया है,
0: महिलाओं का या बच्चियों का भी कह सकते हैं,
1: बच्चियों का, लड़कियों का।
0: हाँ।
1: और इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सुरक्षित छात्रावास, हॉस्टल फैसिलिटीज जिसको हम देखते हैं, कई बार ऐसी लड़कियां जो सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से आती हैं
0: जी,
1: उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने घर के आसपास इसको पढ़ें या फिर अपने घर में या स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में जा सकें,
0: आवास की सुविधाएं नहीं होती।
1: आवास की सुविधाएं जो हैं वो नहीं होती हैं। तो इसी तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन्होंने छात्रावास की फैसिलिटीज को अवेलेबल कराया है।
0: यानी उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि ये बच्चे जब पढ़ने आए तो उनके लिए आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध हों,
1: उपलब्ध हों।
0: आप ये कहना चाहती
1: जी
0: हैं?
1: जी तो छात्रावास के अलावा अगर हम देखें तो स्वच्छता की सुविधाएं,

0: जैसे कि बेसिक हाइजीन और सैनिटेशन की हम बात करते हैं, एक साफ सुथरा माहौल की हम बात करते हैं, तो उसका निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये भी उठाया जा रहा है कि जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको हम KGBVs भी कहते हैं, तो उसमें उन लड़कियों को स्कूली शिक्षा पूरी करने में सहायता दी जाती है जो कि सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं, ताकि वो 12वीं तक अपनी शिक्षा को पूरा कर सके और उनको वो सारी सुविधाएं मिल सके। और नीति में ये भी कहा गया है कि जितने भी हमारे KGBVs हैं उनको पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा
1: जी।
0: और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी छात्रवृत्तियां भी हैं जिसे में स्कॉलरशिप हो गई, सो दैट हर लड़की को, हर ट्रांसजेंडर जो हमारा बच्चा है, विद्यार्थी है, उसको समान रूप से शिक्षा दी जाए। छात्रवृत्ति के साथ साथ मुफ्त साइकिल, स्कूटी या फिर वित्तीय प्रोत्साहन भी देने का प्रावधान है
1: जी।
0: और इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कि भेदभाव रहित पाठ्यक्रम, ये एक ऐसी बातें जो है इसमें की गई है कि पाठ्य पुस्तक या फिर शिक्षा पद्धति उसमें सभी में जेंडर स्टीरियोटाइप्स और बायस को हटाना चाहिए। तो जो नीति है वो पाठ्य पुस्तक और शिक्षा पद्धतियों में भेदभाव रहित पाठ्यक्रम की बात करती है।
1: डॉक्टर श्वेता, हमने पाठ्यक्रम की बात तो सुनी, भेदभाव रहित पाठ्यक्रम ये क्या होता है, इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे
0: जी। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही गहराई वाला प्रश्न है, क्योंकि देखा जाए तो पाठ्यक्रम हम सभी ने सुना है
1: जी।
0: लेकिन आज के जो हमारी स्थिति है, हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की
1: जी।
0: और खाली जेंडर समानता ही नहीं, हम बात करते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आने वाले सभी उन लोगों की, जैसे कि हमारे ट्राइबल, जैसे कि हमारे SC/ST
1: आदिवासी लोग, जनजातीय लोग
0: है ना। तो इन सभी का जो है समान रूप से रिप्रेजेंटेशन हो, हमारी टेक्स्ट बुक में इनके जीवन को शामिल किया जा सके, इनकी जो स्थिति है उसको दर्शाया जा सके।
1: तो जो मुझे समझ में आया वो कुछ ऐसा आया कि जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इश्यूज की जब हम बात करते हैं तो इसका सिर्फ स्त्री और पुरुष या बच्चे और बच्चियां नहीं होता है
0: जी,
1: इसका शायद ये है।
0: नहीं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जेंडर का असली मतलब क्या है। जो हम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज में आपने देखा होगा हम स्त्री की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं, बट अभी ये एक पहला कदम जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लिया है वो ये है कि उन्होंने इस जेंडर आइडेंटिटी के कैटेगरी में ट्रांसजेंडर्स को भी रखा है
1: जी।
0: स्त्री और पुरुष ट्रांसजेंडर्स भी उनके साथ साथ समाज का हिस्सा बन सके
1: जी।
0: जिस तरह से पहले हमारे पाठ्यक्रम में या फिर हमारे सामाजिक ढांचे में स्त्री का काम अलग होता था, पुरुषों का काम अलग होता था, और किताबों में या पाठ्यक्रम में उनको उसी तरह से दर्शाया जाता था, तो इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन स्टीरियोटाइप्स को, उन बायसेस को तोड़ने की कोशिश करती है।
1: हाँ, कुछ उदाहरण जैसे कि समाज में मिलते हैं कि जैसे अगर लड़का है तो क्योंकि वो शारीरिक श्रम अधिक कर रहा है
0: जी,
1: तो ये माना जाता था कि लड़की का काम है नहीं ज्यादा, तो हाँ, उसको आहार की जो सुविधा है ज्यादा मिले, इसको कम मिले, इस तरह की बातें होती थी पहले।
0: या हाँ, तो एक स्कूली जो उदाहरण है वो मैं आपको देना चाहूंगी। आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो लड़कियां हैं उनको रंगोली बनाने के लिए बहुत बार प्रोत्साहित किया जाता है या फिर वो उसी में भागीदारी उनकी होती है
1: जी।
0: लेकिन लड़कों की भागीदारी देखी जाए तो कोई भी भारी सामान या भारी वस्तु उठानी होती है तो ज्यादातर जो शिक्षक होते हैं वो लड़कों को ही उस चीज में बुलाते हैं
1: जी।
0: तो कहीं ना कहीं ये जितने भी हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, ये तो सिर्फ एक उदाहरण जो मैंने आपको दिया है, बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर आपको लड़कों और लड़कियों में एक भेदभाव नजर आता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अपने पाठ्यक्रम के द्वारा, अपनी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा इन स्टीरियोटाइप्स को हटाकर समानता की भावना को विकसित करने की दिशा देती है।
1: ये आपने बड़ी उपयोगी बात बताई और इसके द्वारा मुझे लगता है हमारे श्रोता भी बहुत लाभान्वित होंगे
0: जी।
1: तो अब आते हैं NCERT पर। हम ये विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि NCERT के जेंडर विभाग का, जिस विभाग से आप हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये विद्यालयी शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाने में किस प्रकार से योगदान दे रहा है आपका विभाग।
0: जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, जेंडर अध्ययन विभाग जो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका जो नाम था वो था विमेन स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन स्टडीज
1: जी।
0: बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट के बाद इसका नाम जो है डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज रखा गया
1: जी।
0: इसके पीछे ये कारण रहा कि विमेन स्टडीज जो है उनको हम खाली विमेन तक सीमित

0: ना रखें। जो जेंडर का अर्थ था वो सिर्फ विमेन तक सीमित रहता था, महिलाओं तक सीमित था, लेकिन उसके बाद इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ लड़कियों को हमें आगे बढ़ना,
1: जबकि जेंडर से अर्थ आपका दोनों का होता है।
0: जेंडर से अर्थ, बिल्कुल सही कहा आपने, जेंडर से अर्थ हमारा सभी, जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारे लड़के हैं और हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, उन सभी को समान रूप से आगे बढ़ाना, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो और सभी को समानता से आगे बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग है वो स्कूली शिक्षा में जेंडर इक्वालिटी, जेंडर समानता और संवेदनशीलता लाने के लिए एक समर्पित विभाग है। और पहले इसे, जैसे मैंने आपको बताया था, एक महिला अध्ययन विभाग कहा जाता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसके दायरे को और बढ़ाया गया है। इसमें बालिकाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों और जितने भी हमारे जो सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर समूह है उनको भी शामिल किया गया है।
1: तो इसमें आप लोग क्या क्या करते हैं, आप लोगों की गतिविधियाँ क्या हैं?
0: जी, सबसे पहला हमारा है कि हम नीतिगत क्रियान्वयन की हम बात करते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसके तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें कि दो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, पहला है फाउंडेशनल स्टेज के लिए और दूसरा है स्कूल एजुकेशन के लिए। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसमें जेंडर समानता के जो लक्ष्य हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करना,
1: जी।
0: ये सबसे पहला हमारा जो मुख्य भूमिका है वो ये है। दूसरा है जितनी भी रूढ़िवादिता है उनका हम जो है उन्मूलन कर सके।
1: रूढ़िवादिता, जैसे कुछ उदाहरण आप देना चाहेंगे?
0: जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की थी, हमारे समाज में बहुत सारे इस तरह के जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि महिलाओं और पुरुषों को अलग तरह से देखते हैं, महिलाओं का रोल अलग दिखाते हैं और पुरुषों का रोल अलग दिखाते हैं,
1: जी।
0: तो उसी तरह की जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको स्कूली शिक्षा के माहौल में, पाठ्यक्रम में तथा जो शिक्षण पद्धति है उनमें इन तरह की जो भेदभाव है उसको पूरी तरह से समाप्त करना,
1: जी।
0: उसके अलावा जो हमारा हमारा जो विभाग है वो ये भी काम करता है कि जो समाज के सबसे पिछड़े ग्रामीण इलाकों से आने वाले या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियां या जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनकी शिक्षा के अधिकारों की हम बात करते हैं।
1: तो ये जानकारी आपने बड़े विस्तार से हमें दी, अब हम ये जानना चाहते हैं ये कार्य आप किस प्रकार से करते हैं?
0: जी, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह के काम करते हैं जिससे कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। सबसे पहला जो है हमारा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक, उनका विश्लेषण करते हैं कि किस तरह से जो है सभी नई या पुरानी किताबें, उनकी समीक्षा हम करते हैं ताकि उनमें से किसी भी प्रकार की जेंडर स्टीरियोटाइप्स या जेंडर बायसेस को या फिर भेदभाव को हटाया जा सके और एक सकारात्मक प्रतिनिधित्व को हम उसमें शामिल कर सकें, जैसे कि किताबों के चित्र हो या फिर कहानियां हो जिसमें महिलाएं व ट्रांसजेंडर जो है हमारे उनको वैज्ञानिकों के रूप में, नेताओं के रूप में, खिलाड़ियों के रूप में और विभिन्न पेशेवर भूमिकाओं में दिखाना सुनिश्चित हो सके।
1: हाँ, पायलट्स के रूप में इत्यादि,
0: हाँ,
1: जी,
0: जी,
1: जी, जी।
0: तो आज हमारे श्रोता भी जानते होंगे इस चीज को, जिस तरह से चंद्रयान में हमारी बहुत सारी जो महिला वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस चीज में लीड ली,
1: उनकी प्रतिभागिता बहुत बड़ी रही,
0: बहुत ज्यादा
1: सारे राष्ट्र में इसकी चर्चा है, जी।
0: तो उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया और पूरे राष्ट्र में महिलाओं की एक अलग भूमिका को,
1: एक अलग छवि बनी,
0: अलग छवि जो है उनकी बनी। तो इसी तरह से एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की भी हम बात करते हैं, जिसको कि भाषा के रूप में, अगर हम शिक्षण सामग्री में जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेयरमैन एक ऐसा शब्द है जहाँ पर एक ऐसी इमेज बनती है कि एक चेयरमैन एक पुरुष है,
1: हाँ, ऐसा लगता है कि वो एक पुरुष है,
0: एक पुरुष है, तो उसकी बजाय हम बात कर सकते हैं चेयरपर्सन,
1: चेयरपर्सन
0: विच इज अ न्यूट्रल वर्ड। तो उसके लिए हम इस तरह की और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम जेंडर न्यूट्रल उसमें देखते हैं।
1: ऐसे और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं हम जानना चाहेंगे, ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है।
0: जी, बहुत जरूरी है ये देखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिसमैन या पोस्टमैन, ज्यादातर हमने अपनी डेली लाइफ में, अपने जो रोज की जिंदगी में इसी तरह के शब्द सुने हैं। तो पुलिसमैन की जगह पुलिस पर्सन हो सकता है, ऐसे ही पोस्टमैन की जगह पोस्ट पर्सन भी हो सकता है,
1: बिल्कुल हो सकता है, जी।
0: तो अब जैसे कि एक्टर है, एक्टर वर्ड अपने आप में न्यूट्रल वर्ड है,
1: न्यूट्रल वर्ड,
0: बट एक्ट्रेस जो है दैट शोज दैट इट्स अ फीमेल। तो इसी तरह से पुरुषों के लिए एक अलग शब्द भी होता है या फिर महिलाओं के लिए एक अलग शब्द भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जो कि सिर्फ पुरुष को दिखाया जाता है इन शब्दों में।
1: तो अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में और आपसे हम ये

0: जानना चाहेंगे डॉक्टर श्वेता कि शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए ऐसी कौन सी व्यवहारिक सलाह आप देना चाहते हैं या प्रैक्टिकल एडवाइस आप कौन सी देना चाहते हैं जिससे विद्यालय और घर दोनों स्थानों पर जेंडर संवेदनशील वातावरण बनाया जा सके।
1: जी ये भी मैं कहना चाहूंगी कि हम सारा जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक शिक्षक को ना देते हुए इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो अभिभावक हैं और हमारे छात्र जो हैं खुद, वो तीनों ही चीजें मिलकर जो है प्रयास करने चाहिए, जिसमें कि हमारे शिक्षक, अभिभावक और छात्र, इसके लिए हमें पुरानी जो रूढ़िवादी सोच है उसको छोड़कर आपसी सम्मान की संस्कृति को सबसे पहले अपनाना होगा। तो उनके लिए कुछ व्यवहारिक और सुझाव जो है वो मैं देना चाहूंगी
0: जी।
1: इसके भीतर सबसे पहले अगर हमने देखा होगा कि हमारी जो क्लासरूम की सेटिंग्स हैं, जो हमारा बैठने का जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है। आज भी जब हम कहीं दूर दराज इलाकों में जाते हैं तो लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है, जबकि इस चीज को तोड़ते हुए हमें कक्षा में लड़कों और लड़कियों को एक साथ बिठाना चाहिए
0: जी।
1: और एक मिश्रित रूप में, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सके और टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में एक साथ भाग ले सके
0: और दोनों के बीच में एक समानता का भाव हो कि हम एक साथ बैठ सकते हैं
1: जी
0: जी।
1: और इसी तरह जैसे हमने अभी बहुत सारे उदाहरण की बात की थी, तो जो हमारा कामों का बंटवारा है, जिस तरह के काम हम रूढ़िवादी तरीके से बंटवारा करते हैं, ऐसा ना करें कि भारी सामान उठाने के लिए या फिर खेल के लिए हम लड़कों को प्रोत्साहन करें
0: और खाना बनाने के लिए
1: लड़कियों को करें या सजावट का काम करने के लिए हम लड़कियों को आगे बढ़वाएं। तो सभी जिम्मेदारियों को बारी बारी से बदला जाए
0: जी।
1: और इसके अलावा जो हमारी जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है उसको हम बहुत ज्यादा प्रमोट करें
0: जी।
1: और उन सभी को प्रोत्साहित करें कि लड़के या लड़कियों जो है उनको हम एक न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल कर सके, जैसे कि जेंडर न्यूट्रल भाषा
0: यानी कि जो तटस्थ भाषा है।
1: जी हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर कई बार हमने जो अपने कक्षा में देखा है, कुछ शिक्षक ऐसे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर वो कहते हैं बच्चों या बच्चे, तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये प्रोजेक्ट होता है कि लड़कियों को उस चीज में शामिल नहीं किया गया है। तो इसके बजाय हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि विद्यार्थी या क्लास या फिर आप सभी लोग, इस तरह के सामूहिक शब्दों का प्रयोग करें, ना कि सिर्फ लड़के या लड़कियां।
0: हाँ, क्योंकि यदि बच्चों कहा जाए तो लगता है कि लड़कों को बोला जा रहा है।
1: जी हाँ, तो इसी तरह से हम विद्यार्थियों कह सकते हैं।
0: हाँ, विद्यार्थियों कह सकते हैं।
1: न्यूट्रल शब्द भी।
0: शिक्षार्थियों कह सकते हैं।
1: शिक्षार्थियों भी कह सकते
0: जी
1: हैं।
0: जी हाँ।
1: जी, कई बार क्या होता है ऐसे अनकॉन्शियस बायस होते हैं जिसको भी अनजाने में हम अपने बिहेवियर में ले आते हैं
0: जी।
1: तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। जहाँ लड़कियों की तारीफ सिर्फ शांत और साफ सुथरी होने के लिए करी जाती है, वहीं पर लड़कों की तारीफ बहादुर और बुद्धिमान होने के लिए की जाती है
0: जी।
1: तो बुद्धिमता और मेहनत की तारीफ बिना जेंडर देखे की जानी चाहिए
0: जी।
1: और इसी के अलावा सकारात्मक जो भी रोल मॉडल्स हैं हमारे, उनके उदाहरण हमें देने चाहिए, जैसे कि महिला वैज्ञानिक या फिर पुरुष नर्स। कई बार आपने देखा होगा कि नर्स का जो जैसे ही हम सुनते हैं इस प्रोफेशन
0: नर्स की
1: के
0: जो
1: बारे में, हाँ, वो जो छवि है उसमें हमें हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं, या एयर होस्टेस की जो छवि है उसमें भी हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं स्टीरियोटाइप्स को हम जो है चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
0: हाँ, एयर होस्ट शब्द बहुत कम सुनाई पड़ता है
1: जी। एयर होस्ट आपको नहीं सुनाई देता। उसके अलावा एक दूसरा शब्द होता है स्टीवर्ड, शायद मुझे नहीं पता कि वो ठीक है,
0: दोनों यूज होते हैं।
1: हाँ, तो हम उसकी जगह एक ऐसे रोल मॉडल्स को, सकारात्मक जो उदाहरण दे सकें लड़कियों को, महिलाओं को, उस तरह के उदाहरण को हमें शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे सभी बच्चे हर क्षेत्र में अपने उस अस्तित्व को स्वीकार कर सके
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, वो ये है कि यदि कोई शिक्षक या विद्यालय जेंडर संवेदनशील शिक्षण सामग्री या प्रशिक्षण या मार्गदर्शन आपके विभाग से प्राप्त करना चाहे तो आप उन्हें किस प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे?
1: जी, तो एनसीईआरटी के बहुत सारे डिजिटल पोर्टल्स हैं जिसमें कि प्रकाशन और समर्पित विभागों के माध्यम से भी इसे पूरी तरह से मुफ्त व ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि सबसे पहला आपने अगर सुना होगा तो दीक्षा पोर्टल भी है और उसका एक मोबाइल ऐप भी है, वो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। दूसरा हमारा ई पाठशाला पोर्टल है, उस पर भी जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं, सभी तरह की जो सामग्री है उसको आप जाकर देख सकते हैं। तीसरा हमारा जो

0: लिए एक विशेष कोष बनाया गया है जिसको हम जेंडर इंक्लूजन फंड भी बोलते हैं। इस नीति में विशेष रूप से लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को शामिल करने का प्रावधान है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्वेता जी।
0: धन्यवाद अजीत जी।
1: हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोताओं को आज की बातचीत से, हमारी चर्चा से सच में बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो श्रोताओं, हमारी आशा है कि आज की बातचीत आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद रही, और यदि आपको अच्छी लगी तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमें लिख भेजिए। एक बार फिर से आप सबको हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें आज के कार्यक्रमों के लिए आपसे प्रतिक्रिया की आशा रहेगी। हमारा टोल फ्री नंबर है 8800-440-5559, और साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमें संदेश भेज सकते हैं। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, सुबह के 10 बजने वाले हैं, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंटरफेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
3: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
2: श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने बताया कि हादसे में घायल हुए 11 मरीजों को चिकित्सा के लिए लाया गया है। इन 11 मरीजों में से 5 को मृत अवस्था में ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जबकि एक अन्य घायल की बाद में मृत्यु हो गई। 3 घायलों का इलाज जारी है। एक घायल की सर्जरी की गई, जबकि एक अन्य को निगरानी में रखने के बाद छुट्टी दे दी गई। इस बीच आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि आरटीआ और बिनौती ज्वारिज मार्ग से आने वाले मार्गों पर भी यातायात प्रभावित होगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि यदि संभव हो तो इन मार्गों से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप शामिल हैं। श्री शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं, जबकि गोवा के मुख्यमंत्री इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री बेटेल आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। ओपेक समूह प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया के उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है, जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा, न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: restrictions of traffic personnel. It has also asked the people to not stop, park or crowd near the incident site and keep the way clear for ambulances and rescue vehicles. Union Home Minister Amit Shah will chair the 28th meeting of Western Zonal Council at Panaji in Goa today. The meeting is being organized by the Interstate Council Secretariat of the Ministry of Home Affairs and hosted by the Goa government. The Western Zonal Council comprises Goa, Gujarat and Maharashtra along with the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Luxembourg, Xavier Bettel, has arrived in New Delhi for his official visit. The Ministry of External Affairs said that Mr. Bettel is scheduled to have a meeting with External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar in the national capital today. In a social media post, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said that the visit provides an opportunity to further strengthen the multifaceted relations between India and Luxembourg. Iran's top security official has announced that a new restricted zone will be declared outside the Strait of Hormuz in the coming days and that any vessel entering the area without coordination with them will be placed on an Iranian sanctions list. Major General Mohsen Rezai, Secretary of the Supreme National Security Council, said that the zone will begin from the U.S. Navy's blockade line and extend into parts of the Persian Gulf. In badminton, Indian pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinched the men's doubles at the China Masters in Shenzhen. The Indian duo defeated China's He Ji-ting and Ren Jiangyu 11-21, 21-13, 21-17 in the summit clash yesterday to secure India's first ever title at the China Masters. And that is the end of this news bulletin.
1: बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए और ये लगा कि ये अलग ताप के नाटक हैं, इनके तेवर बहुत अलग हैं और आपने उसमें अपना बहुत कुछ झोंक दिया था और ये उम्मीद की जा रही थी कि इस डायरेक्टर के तत्व जल्दी चुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो क्या चीज थी जो लगातार आपको आगे प्रेरित करती रही और दूसरा दलित थिएटर मूवमेंट को आप लगातार जिंदा रखे रहे?
2: दलित थिएटर मूवमेंट की बात तो थी, जैसे मैंने कहा कि दो नाटक में तो मैं उसका हीरो था
1: जी,
2: नायक की भूमिका में था। उसके बाद दिल्ली जाने के बाद एक्चुअल उस मूवमेंट से मेरा संबंध थोड़ा सा विरल हो गया, कम हो गया, लेकिन मैं जो नाटक करता रहा
1: यस,
2: उसमें वो तत्व जो है, मतलब मैंने जिस काम के लिए मैं नाटक में आया था मैं आज तक उसको भूला नहीं हूं। मैं नाटक में क्यों हूं ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, मुझे कौन सा नाटक करना है ये भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, मुझे कौन सा नाटक नहीं करना है कितना भी पैसा दे दो वो भी मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। तो इसलिए मेरे नाटकों के जो विषय है, चाहे वो जुलवा है या जाने मन है, मुझे लगता है जिन लोगों की अभिव्यक्ति को, जिन लोगों की जिंदगी को, जिन लोगों के दबेपन को आवाज नहीं मिली है, मुझे लगता है उनको मैं अपने नाटक का विषय बनाता हूं।
1: हमेशा हाशिए पर जो लोग हैं,
2: हाँ, हाशिए पे जो लोग हैं, जो गांव के बाहर है, गांव के अंदर के भी नाटक किए मैंने, पर जो ज्यादातर जो विषय चुने मैंने वो गांव के बाहर है, उनको गांव में एंट्री नहीं है। अब देखिए झुलवा जोकते जोकती नहीं पर है, एक झुंझ वार्याशी एब्सोल्युटली डायरेक्ट ये मेन स्ट्रीम कंटेंट था कि किस तरीके का भ्रष्टाचार पूरे सत्ता कारण में हो रहा है और उसमें इनोसेंट टैलेंट का बलि कैसे चढ़ाया जाता है और वो भी जो जर्नलिस्ट है। उसके बाद मैंने नाटक किया दूसरा सामना जो सतीश आलेकर जी ने लिखा, जो हमारी ये शुगर सहकार मूवमेंट है उसके अंदर किस तरीके से फिर वही दलित का बलि कैसे चढ़ाया जाता है। पहला सामना तो जो था वो फिल्म थी, उसका सिक्वेल था जो लिखा गया कि जो दलित का बेटा है जो आईएएस है और आज वो अपर कास्ट का है क्योंकि उसको अडॉप्ट किया गया और उसको मालूम नहीं, और एक दिन अचानक उसको मालूम हो जाता है कि वो जिस जाति से और जिस संस्कार को बिलोंग करता है उसका है ही नहीं, जो भी आईएएस होने के बावजूद भी वो तो है दलित। उसके बाद जो टूटना है उसका, वो टूटना विक्रम गोखले वो रोल करते थे और दूसरा विनय आप्टे करते थे और तीसरा इला भाटे का पहला नाटक था
1: जी।
2: तो ये उस नाटक में भी वही बात अलग किस्म से थी, नाती गोती था, एक मिडिल क्लास फैमिली में एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा होने के बाद उस फैमिली की वाताहत कैसे होती है उस फैमिली की, जिसको हम मराठी में वाट कैसे लग जाती हैं, और उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है, इस तरीके का विषय था
1: जी।
2: जाने मन का बिल्कुल किन्नरों के जीवन पे विषय था उसका, लड़ी नजरिया पे डेमोक्रेसी की कैसी हम लोगों ने 12 बजा दिए हैं उस कॉन्सेप्ट के, और हम अपनी तरीके की डेमोक्रेसी कैसे लाद रहे हैं, ये विषय था। तो जितने भी विषय हैं टी फुलराणी तक, रणांगण एक ऐसा विषय था कि ये भारतीय आदमी जीतता क्यों नहीं है, क्या ऐसे उसमें खून में, संस्कार में, उसके जीवन में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा वो विष घोला है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कोऑपरेट ही नहीं करता, ये बेदिली है, ये धोखा देना है, ये भारतीय स्वभाव में कैसे, और उसके बाद ज्यादा तो मराठी में कैसे हैं, पानीपत का थर्ड वॉर हम हारे क्या जीते, इसको लेकर वो सारा का सारा असेसमेंट था भारतीय मन का, भारतीय स्वभाव का, बिल्कुल बहुत तटस्थता से किया हुआ, और जो नाटक बहुत अंतर्मुख करता था
1: जी,
2: और जिसके 750-750 शो, मतलब दैट वाज सपोज टू बी फर्स्ट 70 mm प्ले ऑन मराठी स्टेज,
1: बिल्कुल,
2: जिसमें भानु अथैया गांधी फिल्म के लिए जिनको ऑस्कर मिला था, उन्होंने जीवन में पहली बार नाटक के लिए कॉस्ट्यूम किए,
1: वाह,
2: मंगेश पाड़गांवकर जी ने गाने लिखे,
1: क्या बात है,
2: ये ऐसे ऐसे दिग्गज, पहले कुसुमाग्रज गाने लिखने वाले थे पर उनकी तबीयत ठीक नहीं रही, फिर उसके बाद फिर हमने मंगेश पाड़गांवकर जी से गाने लिखवाए, अनंत अम्मेम्बल ने उसमें म्यूजिक किया, ये सारा का सारा मुझे लगता है कि वो भी एक अलग किस्म का विषय था। तो लेट्स, पीढ़ी दर पीढ़ी हम ये कह रहे कि हमारे पास जीतने का जज्बा क्यों नहीं है, जीतने के बाद भी हमारे आसपास क्या है कि दिल्ली मराठों ने जीतने के बाद भी उस समय मराठों को दिल्ली के गद्दे पे नहीं बिठाया, हमारे नेता ने क्या थी उसके पीछे की सोच, क्योंकि उससे पहले ही हमारे कारोबारियों ने दिल्ली पंजाब के राजाओं को भेज दी थी
1: जी।
2: तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर कुरघोड़ी करने का स्वभाव है, एक तरीके से धोखा देने का स्वभाव है, कभी भी कोई भी आदमी एक दूसरे से बेदिली करने का स्वभाव जो है, इसको उस नाटक में क्या कहते हसीये पे रखा था, और वो एक नाटक लोगों को लगा था पानीपत थर्ड यू आर जैसे हार गए वैसे ये नाटक भी बहुत जोर से गिरेगा, उसकी आवाज सुनने के लिए सारे कान बेताब थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस नाटक ने जो खौफ है मराठी मानस में, कुछ भी हुआ तो पानीपत हुआ बोलते हम उसका, डिजास्टरस एक्सपीरियंस इज पानीपत, तो उस पानीपत शब्द से हमने उस नाटक ने लोगों को बाहर निकालने का काम किया। पानीपत वॉज नॉट डिजास्टर बट इट वॉज द बिगेस्ट वॉरफेयर प्लेड बाय मराठाज हेल्प ऑफ अदर पीपल इन इंडिया, और जिसमें मुसलमान भी थे
1: जी।
2: तो ये भूमि पे प्यार करने वाले लोगों का जो एक गठ्ठा था वो मरते दम तक एक दूसरे के लिए लड़ते रहे मरते रहे, उसकी कहानी थी ये रणांगण।
1: क्या बात है। और फिर ती फुलराणी आया,
2: उसके बाद ती फुलराणी आया, उसके बाद ये मध्यम व्यायोग किया, जब एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स का पहला प्रोडक्शन कौन सा किया जाए, तो हमने कहा चलो परंपरा से शुरू किया जाए, कालिदास भास ये पहला नाटककार माना जाता है, तो हमने उनके मध्यम व्यायोग से शुरू किया। उसमें भी मुझे हिडम्बा है वो मुझे दिखाई दी, मैं क्योंकि केरल में रहा था, द्रविड़ में मातृसत्ता कुटुंब पद्धति है और आर्य में पितृसत्ताक है, तो उनकी जो प्रेम की कहानी है भीम की और हिडम्बा की और उनका बेटा जो घटोत्कच है, मुझे लगा कि जो औरत हमारे स्वार्थ से परे हैं, स्वार्थ के अड़े आती हैं, जो भी है, हम किसी को डेरोगेटिव टर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको हम हिडम्बा बोल देते हैं। अरे यार उसके हिडम्बा के क्या चक्कर में आता है, मतलब देखने में वो खूबसूरत भी हो तो जो हमारे स्वार्थ के अड़े आता है उसका कैरेक्टर असेसिनेट करने का हमारा पुराना स्वभाव है
1: जी जी जी।
2: उस स्वभाव को पकड़कर वो नाटक बनाया हुआ है। और फिर आर्य और अनार्य के बीच की जो राजनीति है वो जेंडर बेस्ड भी है, वो क्लास बेस्ड भी है, वो हर तरीके की राजनीति है। और वो जब सवाल पूछती है भीम को, और बेटा सवाल पूछता है कि आप कहाँ गए थे, बच्चा पैदा होने से लेकर बच्चा बड़ा होने तक, वॉरियर होने तक वो वापस आके देखा नहीं उन्होंने, उसके बारे में जो सवाल पूछती है बोलती है कि अगर होती मैं आर्य स्त्री तो क्या होता आपका यही उत्तर।
1: वाह,
2: तब तो राजदरबार बैठते, तब तो तहकीकात होती, चर्चाएं होती, न्याय मंडली बैठती, न्याय होता। चूंकि मैं आर्य नहीं हूं इसलिए आपको लगा कि यू कैन इग्नोर मी।
1: ओहो हो,
2: तो इस तरीके के

0: ये लगता है बहुत बुनियादी जो सवाल है हमारे ही समाज के विसंगति के, वो कहीं ना कहीं मेरे नाटक उठाते हैं, और वो केवल कोई सेंसेशन क्रिएट करने के लिए नहीं उठाते हैं, मुझे लगता है वो अंतर्मुख करने के लिए उठाते हैं। क्योंकि नाटक का मूल जो स्वभाव है वो किसके लिए नाटक करना है
1: जी?
0: नाटक केवल लोगों को हा हा हू करके जाओ घर में,
1: केवल मनोरंजन,
0: केवल मनोरंजन के लिए नाटक नहीं, मनोरंजन तो रुलाना भी है। नौ रसों में से कोई ना कोई एक रस ऑडियंस के मन में पैदा करना नाटक का मूल रस है, मूल स्वभाव है, मूल चिंतन है, मूल भाव है। हम ये कहते हैं कि नाटक इसीलिए करते हैं ताकि हम समाज को उसका आईना दिखाए,
1: बिल्कुल,
0: उसमें विसंगतियां क्या है, संगतियां क्या है, अच्छा क्या है, अच्छा क्या नहीं है, वो आईना दिखा के हम समाज में एक अच्छा समाज कैसे हो, कल्याणकारी समाज कैसे हो, ये करने के लिए, एक आशावादी दृष्टिकोण देने के लिए नाटक होता है। वो हमेशा ऐसा नहीं है कि व्यवस्था के खिलाफ कोई विद्रोह बार बार दिखाने के लिए नहीं है
1: जी,
0: पर वो विसंगतियां हैं, जो विरोधाभास है, वो सारा तो दिखाना नाटक का काम है ना। सिनेमा नहीं करेगा, नाटक नहीं करेगा, साहित्य नहीं करेगा, पेंटिंग नहीं करेगी तो कौन करेगा?
1: बिल्कुल, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है,
2: मेहनत

0: समाज को समृद्ध भी करना है, संवेदनशील भी करना है और आगे अच्छा समाज बनाने के लिए सोच के लेवल पर अग्रेसर भी बनाना है, इसके लिए ये मुझे लगता है कला दालन है।
1: बिल्कुल,
0: ये संस्कृति का दालन यही है कि वो आपको एनरिच करता है
1: जी,
0: एक आपके दायरे का विस्तार करता है, सोच का विस्तार करता है, आपकी दिमाग में जो दीवारें आपने बनाई है उसको ढाने का काम करता है, क्योंकि आखिरी इंसान और आप दोनों एक ही है, क्योंकि आप एक भूमि के हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप एक हैं क्योंकि नैसर्गिक अधिकार आपको दोनों को एक ही दिया है और जिसका नाम है शांति से जीना। मुझे लगता है वो नाटक का मूल पर्पज है। अब वो पर्पज हम किस एंगल से दिखाए वो आपका तरीका है। अगर हम बीरबल की एंगल से दिखाएं तो बीरबल वही करता था जो अकबर को विसंगतियों का, विरोधाभास का वो आईना ही तो दिखाता था, वो भी नाटक ना करे।

0: तो कौन करेगा, वो भी सिनेमा न करेगा तो कौन करेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी व्यवस्था में नाटक का रोल यही होता है, व्यवस्था को अपना मन खुला होकर। इसीलिए एक कहावत है ना कि एक ऐसा कहते हैं कि अगर किसी भी समाज को आपको समझना है, मान लीजिए आप यूरोप गए या किसी भी समाज में कोई भी देश में चले गए, आपको उस समाज को फास्ट समझना है तो आप जाके उसके 5-6 नाटक देख लीजिए।
1: क्या बात है,
0: उस समाज का आकलन उस 5-6-7-8 नाटकों में से जो आपको जितने जल्दी मिलेगा उतना एक साल भर रहने से नहीं मिलेगा। क्योंकि वो आईना दिखाता है। अगर ये सच्चाई है तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये निराशावाद है, ये तुलनात्मक फैसिलिटी का कम आंकना है एक दूसरे को, ये जो दीवारें खड़ी करना है इंसान इंसान में, वो चाहे धर्म की है, जाति की है, परंपरा की है, वर्ण की है, वर्ग की है, कुल की है, परिवार की है, इससे क्या बनने वाला है
1: जी?
0: इससे कुछ नहीं बनने वाला। अगर हमें एक स्ट्रेंथफुल देश बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हमें सारे समाज की सारी क्षमताओं को साथ लेकर इस देश का जब विकास करेंगे तो हमें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप हमें विश्व गुरु बनाइए
1: जी। एनसीपीए में एक रिकॉर्ड आपने कायम किया था, एक ही दिन में 3 अलग अलग भाषाओं के नाटक हुए।
0: ये मध्यम व्यायोग नाटक जो था, इसको मैंने हमारे एकेडमी के विद्यार्थियों के लिए एज अ डेमो ऑफ क्लासिकल इंडियन थिएटर किया था। उसके बाद एक 10-12 शो के बाद वो खत्म हो गया और मैं भूल गया उस नाटक को। ये 2004 में किया था, 5 साल में वो बैच निकल गई, उसके बाद भूल गए। कुछ सालों बाद जैसे मैंने कहा कि भास ने जो लिखे हुए नाटक में जो अधूरे छोड़े हुए थ्रेड्स है उसका कहीं ना कहीं मुझे हंट आउट करने लगे। बेटा भी पूछ रहा है और माता भी पूछ रही हिडम्बा भीम जी को, वो सारे सवाल बाद में दिखाई देने लगे। और मैंने कहा कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग नाटक हो सकता है, इसका नया संस्करण तैयार करना पड़ेगा, ये रंगावृति नई तैयार करनी पड़ेगी, जहां भास रुके हैं उसके आगे भी तो हम नाटक को ले जा सकते हैं। इसको लेके हमने वो नाटक करने की बात सोची, पहले मराठी में करते हैं, फिर करते करते पता चला हम हिंदी में क्यों ना करें इसको।
1: क्या बात है,
0: तो हमने हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके उसकी शुरुआत की। फिर ऐसा लगा कि यार ये हिंदी मराठी तो ठीक है, लेकिन जो कुछ मराठी या हिंदी भाषी लोग हैं जिसको जब तक आप अंग्रेजी में कुछ नहीं करते तब तक वो आपको समझना नहीं चाहते, अपनी संस्कृति को समझना नहीं चाहते, उनके लिए हम अंग्रेजी क्यों ना करें।
1: अब तीन भाषाएं हो गई
0: तो तीन भाषाओं में हमको लगा कि एक ही टीम के साथ करें, नहीं तो बड़ी सर्कस हो जाती। तो इसीलिए सारे मराठी स्पीकिंग एक्टर्स है मूलतः, उसी को हिंदी भी सिखाई, उसमें से बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी आती थी, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आती थी, तो वो अंग्रेजी भी हमारी इंडियन इंग्लिश है। तो ये सारे तीनों भाषाओं में 3 जुलाई 2011 को एनसीपीए के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में इस नाटक को लेके हमने सोचा कि इसका शुभारंभ करेंगे
1: जी।
0: और तीनों नाटक एक ही दिन में ओपन करेंगे, एक ही टीम, एक ही डेट, एक ही थिएटर।
1: वाह।
0: तो हमने दोपहर 2 बजे मराठी में नाटक ओपन किया, वही नाटक प्रिया बावरी, उसके 3 अलग अलग नाम जानबूझ के रखे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता कि मराठी कौन सा है, हिंदी कौन सा है। दोपहर 4:30 बजे हमने वही से नाटक किया मोहे पिया हिंदी में, और शाम को 7 बजे वही नाटक किया हमने ओ माय लव इस नाम से, वही नाटक तीनों भाषाओं में, सेम फॉर्म, सेम कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग इज सेम, भाषा अलग है, गाने अलग है, सब अलग है।
1: गजब।
0: और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया और आज तक वो विश्व रिकॉर्ड ऐसे ही है, अभी तक किसी ने तोड़ने की कोशिश नहीं की उसको, तो हम ही शायद तोड़ने की कोशिश करेंगे कि इसको और एक भाषा में, गुजराती में करके 4 भाषाओं में एक ही दिन में कर लेंगे। तो इसको लेकर ऐसा काम हो गया और वो नाटक ने पूरे देश में गजब ढा दिया
1: जी।
0: मराठी में हमने 150-200 शो किए, हिंदी में अभी भी वो चल रहा है मोहे पिया, अभी 300 शो होने को आए हैं अलग से हिंदी में
1: जी।
0: वो कभी हम सेलिब्रेट करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। अंग्रेजी के भी हमने 70-75 शो किए, तो हम ये 15 दिन की नोटिस पे हम किसी भी भाषा में ये नाटक कर सकते हैं।
1: क्या कमाल है।
0: हाँ, तो अभी बहुत सारे भारत भवन में भी, दिल्ली में भी संगीत नाटक अकादमी है या और कोई है, वो चाह रहे कि ये इस तरीके का एक प्रयोग हम दिल्ली में भी करें या और शहरों में भी करें। इस तरीके के आमंत्रण न्योते आ रहे हैं,

0: अब हम उसके ऊपर भी सोच रहे हैं।
1: एक और कमाल है आपका, एनएसडी के दोनों अवार्ड्स आपको मिले।
0: जैसे एक संगीत, क्योंकि हमारे देश में एक ही अवार्ड था जो संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिलने के बाद एक आपका रुतबा माना जाता था कि आपके योगदान को माना जाता था। मैं ये अनुपम खेर जी चेयरमैन थे, तब उन्होंने मुझे सोसाइटी का मेंबर बनाया। उसी समय हमने ये कहा कि भाई पूरे देश को, संगीत नाटक अकादमी तो पूरे देश को लेकर काम करती है, अब उसमें ज्यादातर अलग अलग भाषाओं में एनएसडी के लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत है, पर अवार्ड देते समय ये तो ध्यान में रखा जाएगा कि भाई हर साल एनएसडी एल्यूमिनाई को तो वहां अवार्ड नहीं दिया जाएगा ना।
1: जी,
0: दूसरे भी भाषाओं के लोग है, और भी लोग है जिन्होंने भारतीय थिएटर को जिंदा रखा है, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतना ही स्वाभिमान पूर्वक है। तो हमें ये काम करना चाहिए, हमें दो अवार्ड स्टार्ट करने चाहिए, नहीं तो बूढ़ा होने तक जब तक उसको दो आदमी उठा के पकड़ के ले जाते तब उसके बाद अवार्ड दे के उसका इंस्पिरेशन क्या है।
1: जी,
0: तो हमने एक सुझाव दिया था कि भाई ऐसे दो अवार्ड, एक 50 साल के ऊपर जो रंगकर्मी ने आउटस्टैंडिंग काम किया है एनएसडी के एल्यूमिनाई ने, उसको एक अवार्ड दिया जाए, और 50 के नीचे जो भी नया हो 20-25 साल से लेके उस रेंज में एक अवार्ड दिया जाए, ताकि एनएसडी जब एल्यूमिनाई को अवार्ड देगी तो वो भी राष्ट्रीय पुरस्कार है।
1: जी,
0: तो हम एनएसडी के एल्यूमिनाई को ही इंस्पायर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर करते रहे, काम करते रहे। तो फिर वो सोसाइटी ने मंजूर कर लिया, और एक युवा जो आवास पुरस्कार था उसको मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार के हैसियत से उसका नाम दिया, और जो दूसरा था जो सीनियर को मिल रहा है वो बीवी कारण स्मृति पुरस्कार।
1: जी,
0: और हम भूल गए वो सोसाइटी में, फिर उन्होंने कोई कमेटी वगैरह बिठा दी, और पहला ही जो पुरस्कार डिक्लेयर किया कि जो सीनियर कैटेगरी में पुरस्कार जो दिया गया बीवी कारण पुरस्कार, वो रतन थियाम जी को दिया गया,
1: आपके और गुरु।
0: हाँ, हमारे गुरु मतलब।
1: जी,
0: और दूसरा जो पुरस्कार युवा रंगकर्मी का पुरस्कार, तो वो अमन केंद्रे को दिया गया।
1: क्या बात है,
0: तब तक के लिए योगदान के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहा, और जब मैं एनएसडी छोड़ने के बाद, मतलब मेरा टर्म खत्म होने के बाद, 2-3 साल वो अवार्ड दे नहीं पाए थे कई कारणों की वजह से, उसके बाद 2-4 साल नहीं दे पाए थे, तो फिर हमारे बाद के डायरेक्टर ने वो सारे पुरस्कार की घोषणाएं की समिति गठित करके, तो उसमें से जो दूसरा पुरस्कार जो मिलता है
1: सीनियर वाला
0: वो मैं पहला एल्यूमिनाई हूं कि दोनों भी पुरस्कार, पहला तो स्मृति मिला ही था मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार, और ये बीवी कारण स्मृति पुरस्कार भी मुझे दिया गया। एंड ये भी एक रिकॉर्ड हो गया कि भाई ये दोनों पुरस्कार पाने वाला पहला एल्यूमिनाई ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वामन केंद्र है।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: लेकिन एक रिकॉर्ड और भी तो है कि वहीं पढ़ के वहीं के डायरेक्टर भी बने
1: जी,
0: और एक तूफानी कार्यकाल आपने किया जिसमें बहुत वाइब्रेंट काम वहां।
1: यस, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पहले भी कई सारे, मतलब जब विवेकानंद भी वहीं पढ़े थे वो डायरेक्टर हुए थे, ही वॉज फर्स्ट एग्जाम्पल
0: जी।
1: उसके बाद बीएम शाह तो एनएसडी में नहीं पढ़े थे, लेकिन रतन थियाम हो गए, पर उन्होंने अपना डायरेक्टर का कार्यकाल पूरा नहीं किया, पर हुए वो भी। मोहन महर्षि हुए, पर उनके कार्यकाल छोटे छोटे रहे, मोहन महर्षि 2 साल के लिए रहे। उसके बाद कीर्ति जैन रही, उसके बाद अंकुर जी रहे
0: जी।
1: तो ये सारे जो थे वो वहीं पढ़े और वहीं डायरेक्टर हो गए। पर महाराष्ट्र का ये पहला रंगकर्मी था जिसको सम्मान पूर्वक वहां पर विद्यार्थी के हैसियत से नहीं, पर बाहर के कंट्रीब्यूशन के हैसियत से आमंत्रित किया गया एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो वहां पढ़ा था और उसके बाद डायरेक्टर बना, कि महाराष्ट्र के इतिहास में ये तो दर्ज हो ही जाएगा, पर वहां के इतिहास में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया उसमें से थोड़ा बहुत नाम तो ले ही लेंगे लोग, ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए भी वो कार्यकाल वाइब्रेंट रहा ऐसा लोग अब कह रहे हैं। तब तो क्या होता है कि कोई भी कार्यकाल का महत्व योगदान रजिस्टर होने के लिए बीच में काल जाना चाहिए होता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। तो अब लोग कह रहे हैं कि दैट वाज वन ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वो इतना ही था कि मैं बहुत ईमानदारी से काम करने गया था, जितना संभव है 24 घंटे से 36 घंटा कैसे हो सकता है ये कोशिश करके। मुझे लगता है कि वहां की खूबसूरती, मतलब कैंपस की खूबसूरती, कैंपस का आर्टिस्टिक होना, एकेडमिक जो हमारी गतिविधियां हैं उसको पुख्ता करना, जितनी विद्यार्थियों की समस्याएं हैं उसको पहले सुनना, क्योंकि अल्टीमेटली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बाकी चीजों के लिए नहीं, पहले विद्यार्थियों के लिए बनी हुई है
0: जी,
1: वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें क्या क्या मैं था तब उस समय में कौन सा माहौल था, फिर क्या खामियां थी, क्योंकि मैं यहां मुंबई विश्वविद्यालय में 10 साल एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स खड़ा कर चुका था, तो यहां क्या प्लस पॉइंट्स है, वो सारे उसमें ढालते ढालते ढालते ढालते एक बहुत स्ट्रांग एकेडमिक स्ट्रेंथ वाले विद्यार्थी पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को एक्टिंग में काम मिले, जो एक्टर्स है डायरेक्शन में, डायरेक्टर को स्पेशलाइजेशन 3 कर दिए, 2 ही थे, एक एक्टिंग था और डिजाइन एंड स्टेज टेक्निक्स था, तो इसमें से डायरेक्शन हटाता था वो डिजाइनर को ही डायरेक्ट करने के लिए बोल देते थे। तो मैंने कहा ये उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है ना, डायरेक्टर एक सेपरेट टेम्परामेंट है, वो अलग स्वभाव है, डिजाइनर एक अलग स्वभाव है, एक्टर एक अलग स्वभाव है। तो सिलेक्शन से ही फिर हमने वो सारा माहौल बदलने की कोशिश की और तीनों स्पेशलाइजेशन वापस शुरुआत करके, तो एक ही साथ एक बैच के साथ दो दो नाटक करने से एक्टर को काम मिलना शुरू हो गया, और जो एक्टर भी और डायरेक्टर भी, तो दोनों को भी ये कॉन्फिडेंस मिलना, और डिजाइनर कॉमन होते थे, उनको तो दो दो प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिलता था, फिर उनको अपना डिप्लोमा प्रोडक्शन तो करना ही करना है। तो इस तरीके से मुझे लगा कि एकेडमिक माहौल बहुत स्ट्रांग बन गया, फैकल्टी जितनी संभवतः देश की और दुनिया की लाने की कोशिश की गई, तो ये सारा है। उसके साथ साथ उसका विस्तार किया, जो लोग कहते थे कि वो नेशनल नहीं बचा है, उसका थोड़ा सा स्वभाव दिल्ली के आसपास का बना है, तो हमने कहा ऐसा नहीं है, हम उसको डिसेंट्रलाइज कर लेते हैं, मतलब एकेडमिक एक्टिविटी तो रहेगी लेकिन उसका विस्तार हो। मतलब मेरे दिमाग में यह था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा केवल एल्यूमिनाई को यह ना लगे कि यह हमारी संस्था है, पर जो भी थिएटर कर रहा है, वो चाहे एमेटर थिएटर कर रहा है, चाहे प्रोफेशनल कर रहा है, चाहे पैरेलल

0: कर रहा है, चाहे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चाहे मूवमेंट की हैसियत से थिएटर कर रहा है, चाहे चिल्ड्रन थिएटर कर रहा है, कोई भी किस्म का थिएटर कर रहा है, फार्मर का कर रहा है, कामगारों का कर रहा है, वो हर किसी को कोने में खड़े हुए किसी खेत में थिएटर करने वाले आदमी को ये लगना चाहिए कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेरी है,
1: वाह,
0: और मैं वहां जा सकता हूं, या वो मुझ तक पहुंच सकती है और मुझे लाभ दिला सकती है, वो ट्रेनिंग के लेवल पर हो, फेस्टिवल के लेवल पर हो। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शंस इन फेस्टिवल्स यहां से हो, क्वालिटी इज द ओनली क्राइटेरिया।
1: यस,
0: मैं हमेशा ये कहता था, भारत रंग महोत्सव हो या कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे जश्न बचपन हो, बाल संग हो, कोई भी हो, या हमारे आदि क्या कहते हैं, ये क्लासिकल थिएटर का फेस्टिवल हमने शुरू किया, नॉर्थ ईस्ट में अलग फेस्टिवल शुरू किए, इस सब में एक ही था, क्वालिटी इज इन सेंटर। मैं ये कहता था भारंगम में कि अगर कल को मेरे पिताजी का नाटक आता है और यहां कंसीडर करने के लायक नहीं है तो उस डीवीडी को फेंक दो और तोड़ दो। कोई पर्सनैलिटी नहीं, कोई मेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं, कोई किसी का नहीं है, जो थिएटर क्वालिटी का काम करता है वो हम सबका है।
1: क्या बात है।
0: और उसको ही सेंटर में रख के कोशिश यही की गई कि 5 साल उस एनएसडी का जो क्वालिटेटिव माहौल है उसको भी एनहांस करने की कोशिश की गई। बहुत विनम्रता के साथ ये सब कह रहा हूं। दूसरा, मुझे लगा कि जो विस्तार होना चाहिए था उसका, जैसे बंगलोर में हमारा एक सेंटर था पर वो रिसोर्स सेंटर बन के रह गया, तो हमने कहा ये तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो उसको कन्वर्ट किया 1 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम में और वहां बच्चों को स्कॉलरशिप देके अब वहां 20 बच्चे हर साल पढ़ते हैं। जो एक सेंटर नया क्लासिकल थिएटर में, जो हमारी धारणा थी कि एक संस्कृत शैली का थिएटर जो करना चाहता है, सीखना चाहता है, कहीं और से थिएटर सीख के आया और उसको स्पेशलाइजेशन करना है, उसके लिए मौका ढूंढना चाहिए, रखना चाहिए, इसलिए वाराणसी में 1 साल का कोर्स शुरू किया, सेंटर शुरू किया, और वो क्लासिकल इंडियन ड्रामा सीखने के लिए।
1: जी,
0: जो सिक्किम का सेंटर था वो 1 साल का था, हमने कहा इसको 2 साल करिए, फिर उसको 2 साल करने का सारा जो कुछ था उसको करने की कोशिश की। एक त्रिपुरा में था, वो केवल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए था, तो हमने कहा नहीं है, वो केवल टीचर्स ट्रेनिंग जो थिएटर एजुकेशन में निर्माण करना इतना ही उसका काम नहीं है, आर्टिस्ट निर्माण करना भी उसका काम होना चाहिए, थिएटर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, प्रैक्टिशनर भी निर्माण करे और हम टीचर भी निर्माण करे, इसी के लिए वो सेंटर, और दोनों सेंटर नॉर्थ ईस्ट कन्फाइंड हो कि वहां के लोगों के लिए बनाए, तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उस 7 और 8 स्टेट को होना चाहिए। तो इस तरीके से मुंबई सेंटर का जो लेआउट था वो पूरा सैंक्शन करके रखा था। जम्मू कश्मीर में भी अभी अभी सेंटर खुल गया मेरे आने के बाद, तो ये सारी बहुत अच्छी चीजें वहां करने का मौका मिला। फिर थिएटर ओलंपिक्स, एक सबसे बड़ी जो मतलब भारत रंग महोत्सव को तो हमने ये तो किया ही किया, पर एक दिन मुझे अचानक पता चला कि थिएटर ओलंपिक्स नाम की कोई एक चीज होती है। तो जब मैंने उसका इतिहास ढूंढने की कोशिश की तो जो पहले ओलंपिक होता था जो स्पोर्ट्स का है, उसमें स्पोर्ट्स भी होता था, उसमें थिएटर भी होता था, म्यूजिक भी होता था, डांस भी होता था, विजुअल आर्ट्स भी होती थी, ये सब मिलके ओलंपिक होता था।
1: ओके,
0: पर आगे चलकर स्पोर्ट्स वाले ने उस प्लेटफॉर्म को हाईजैक किया और ये सब पीछे छूट गए। फिर थिएटर के कुछ लोग इकट्ठा आ गए और उन्होंने कहा कि यार हम इसका हिस्सा थे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे हाथ से गया। तो कुछ विद्वानों ने, थिएटर के रंगकर्मियों ने यह तय किया कि हम अपना थिएटर ओलंपिक्स क्यों ना शुरू करें, और फिर वो शुरू किया। पहला वो ग्रीस में हुआ और ये मुझे पता चला, फिर बाद में तुर्की में हो गया, फिर कहीं जापान में हो गया, चाइना में हो गया, कनाडा में, यहाँ वहां हो गया, और 8वां होना है ये मुझे पता चला। तो मैंने अपने सोसाइटी से कहा कि भाई ये ओलंपिक अगर हमें मिलता है तो हमको लेना चाहिए। फिर हमारी मिनिस्ट्री है जो केंद्र सरकार की, उनको कहा तो उनकी परमिशन ले ली और 8वां थिएटर ओलंपिक्स भारत में हो, इसके लिए हमने कमिटी से रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा हमें आके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, तो हमने बुलाया उनको, आइए, न्योता दिया, वो आए, सब देख लिया, दिल्ली देखा, मुंबई देखा, ये 2-4 जगह देखा, और उन्होंने कहा नहीं है, ओलंपिक होने लायक तो यहाँ है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और एनएसडी कैन हैंडल इट, क्योंकि इंटरनेशनल फेस्टिवल तो हैंडल करती ही है। तो फिर उन्होंने वो हमको मौका दिया और सौभाग्य की बात है कि 51 दिन का तो 8वां थिएटर ओलंपिक्स हो गया। जो 17

0: राज्यों में हुआ, जम्मू कश्मीर से लेके त्रिवेंद्रम तक और इधर मणिपुर और गुवाहाटी से लेके आसाम से लेके इधर अहमदाबाद तक, मुंबई, बंगलोर, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, ये सारे उसके सेंटर थे। 17 सेंटर में 51 दिन में हमने 450 नाटक, 32 देशों का पार्टिसिपेशन, ये मेजर नाटक जो मेन थिएटर में किए, उसी को यूथ से जोड़ने के लिए हमने 300 कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के 300 नाटक सेलेक्ट करके, मतलब उसमें भी 1100 नाटक आए थे, एक कमेटी ने 300 नाटक सेलेक्ट किए, वो 300 शो और फोक, ट्राइबल और स्ट्रीट प्लेयर्स जो है हमारे संस्कृति के आधार स्तंभ, वो कव्वाली से लेके सारा कुछ, तो उनके 600-650 शो।
1: तो ये तो कितने,
0: ये लगभग 1500 शो, 1500 शो हमने उसमें 51 दिन में किए, और जिसमें 25-26 हजार आर्टिस्ट इन्वॉल्व हो गए देश के और दुनिया के।
1: ये तो बहुत भव्य,
0: बहुत बहुत हो गया। ये ऐसा माना गया कि ये भारत के इतिहास का नहीं, रंग जगत के इतिहास का नहीं, नाटक जगत के इतिहास का नहीं है, दुनिया के इतिहास का, नाटक जगत के इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट किसी ने किया हो तो भारत देश ने किया, और वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने किया।
1: वाह वाह,
0: ये मुझे लगता है उसका इंपैक्ट हुआ। और एक बहुत अच्छी बात है, जितने नाटक वाले थे, हमने 125 डायरेक्टर को इनवाइट किया, जिन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया जिस किसी भी भाषा में, उनको हमने हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक इनवाइट किया कि भाई आप अपना बेस्ट प्रोडक्शन लेके इसमें शामिल हो जाइए। अब 125 तो नहीं हो पाए, लेकिन 105 इनवाइटेड डायरेक्टर ने उसमें नाटक किए।
1: वाह,
0: कॉम्पिटेटिव फेस्टिवल में हमने कहा था कि उसमें 1200 नाटक आ गए, उसमें से 250 नाटक चुन लिए गए, और विदेशी नाटक 32 देशों के नाटक आ गए। तो ऐसा मिलाकर ये दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा इवेंट हो चुका है, और इतना बड़ा क्वालिटेटिव थिएटर फेस्टिवल मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ। उसके बाद तो एक्टिविटी चलती रहती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए, और सौभाग्य से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए, और उसका मैं डायरेक्टर था, ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: सिनेमा के आकर्षण से आप कैसे बचे रहे अपने पूरे जीवन काल में?
1: नहीं, मुझे मालूम था कि मुझे पहले अपनी स्पेस नाटक में पैदा करना जरूरी है, क्योंकि मेरी जगह है। मैं कहीं भी जाऊं, भूला भटका हो जाऊं, पर गिरने के बाद मुझे अपनी एक जगह चाहिए, वो पुख्ता जगह तैयार होना जरूरी था। पर वो क्या हो गया कि मैं एकेडमिक से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया पहले।

0: सी
1: जी जी
0: एनएसडी हो गया, रिसर्च हो गया, आके एनसीपीएम में 10 साल, फिर वही एसोसिएट हो गया, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी में 10 साल हो गया। जब भी मैंने थिएटर से फिल्म की तरफ जाने की कोशिश की, रंग देवता ने किसी न किसी बहाने मुझे वापस खींच लिया।
1: वहां नहीं जाना है,
0: वहां जाने नहीं दिया। मतलब ऐसी कोई परेशानियां या उस तरीके की अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी की कि आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं और ज्यादा कंट्रीब्यूट करो। मतलब मैं जाने मन नाटक किया और रणांगण किया, दो बहुत मेजर प्लेस थे मेरे हिसाब से, एक ही साल के आसपास किए मैंने। और ये तय किया था कि आप 5 साल में नाटक नहीं करूंगा, तब भी ये नाटक चलते रहेंगे और नाम गूंजता रहेगा। तो अब मैं फिल्म करूंगा। तो कोई एक प्रोड्यूसर उस समय मुझसे बहुत बड़ा मेगा इवेंट करना चाह रहे थे फिल्म में, और मेगा कंटेंट पे वो बजट लेके बैठे हुए थे। तो उसी दरमियान डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर, जो वाइस चांसलर थे मुंबई विश्वविद्यालय के, बाद में प्लानिंग कमीशन के मेंबर हो गए, फिर राज्यसभा के मेंबर हो गए, तो उन्होंने एक कमेटी स्थापन की। उस कमेटी में मुझे भी लिया गया और बोले कि 35 साल से मैंने देखा हिस्ट्री मुंबई विश्वविद्यालय में, नाटक का विभाग हो इसके लिए इतनी कमेटियां हो गई, इतना हो गया, पर आज तक वो हो नहीं पाया। उसमें जब्बार पटेल थे, रामू केंकरे थे, मैं था, उसके बाद रघुवीर तड़ाशीलकर थे, जयंत पवार, ऐसे 7-8 लोग थे। उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई कमेटी बिमिटी, आपकी कमेटी है अंतिम है, अब आपको 4 महीने के अंदर मुझे ये विभाग शुरू करना।
1: अरे गजब,
0: आप जो जो चाहिए बताइए मुझे क्या चाहिए। तो पहले उन्होंने कहा एक सिलेबस दे दो, तो हमने कहीं यहां वहां से कटिंग पेस्टिंग करके एक सिलेबस दे दिया उनको, जो उन्होंने एकेडमी काउंसिल में पारित कर लिया, मैनेजमेंट काउंसिल में पारित कर लिया कि हमको ये डिपार्टमेंट खोलना है। 4 महीने में उन्होंने डिपार्टमेंट खोल दिया।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: वो 4 महीना मेरे पीछे पड़े रहे कि तुमको इसका हेड होना है। तो मैंने मना कि मुझे तो जाना है, मैं तो सिनेमा करने वाला हूं,
1: कोई मेगा प्रोजेक्ट है।
0: हाँ, मेगा प्रोजेक्ट है। और फिर उन्होंने जब्बार पटेल जी को, दामू केंकरे जी को, ये सारे हमारे दोस्तों को बोला कि नहीं इसको राजी करो। तो फिर वो होते होते फिर सुशील कुमार शिंदे जी तक बात पहुंच गई। और एक दिन उनका भी फोन आ गया कि वैसे भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर अच्छा नहीं है मुंबई में, तो इसीलिए अगर वो सही आदमी के हाथ में नहीं जाएगा तो फिर ये आप लोग रोते रहोगे। तो वो जो कह रहे हैं मुणगेकर, उसकी बात मानो, और मैं आपको महाराष्ट्र की जनता की ओर से बोल रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि 1-2-3 साल दे दो, 2 दिन 3-3 घंटा 4 घंटा दे दो, बाकी अपना काम करते रहो। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है सर, एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है तो आप, मैं आपको बता देता हूं, 10 साल रात दिन काम करेंगे तभी खड़ा होगा। बोले जो भी है कर लो और इसको फाउंडेशन करके फिर बाद में छोड़ के जाओ। तो अब इतने सारे रंगकर्मी भी हैं, राजनेता भी हैं और मित्र भी हैं, ये सारे मेरे नाटक देखने वाले भी थे, तो सभी की ओर से, चारों ओर से वो लगा कि नहीं आपको करना, आपको करना चाहिए। फिर हमने कहा कि चलो यार इसको 2 साल के बाद प्रोजेक्ट को करते हैं, वह 3 साल के बाद फिल्म को, तो वो स्वीकारना पड़ा। और एक बार वो स्वीकारने के बाद 2003 में मैंने उसको स्वीकारा, 13 कब आया मुझे समझ में नहीं आया।
1: जो 2-3 साल सोचा,
0: 2-3 साल सोचा था। और रात दिन मैं सुबह 7:45 बजे पहुंचता था, रात को 12 बजे घर पहुंचता था।
1: अरे बाप रे।
0: पर चूंकि वो उतनी इन्वॉल्वमेंट से किया, इसलिए एक नेशनल लेवल का 10 साल में एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, और जहां पर लोग पढ़ने के लिए ज्यादा पसंद करते थे बजाय के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाए। तो जो सारा का सारा फ्लो था वो वहां से मुंबई की तरफ मुड़ गया, क्योंकि अल्टीमेटली मुंबई में जाना है सबको, मतलब ज्यादातर लोगों को, अपवाद तो बहुत है। तो फिर 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी मिल रही है।
1: जी जी।
0: तो ये भी जिसको एकेडमिक्स में जाना है उसके लिए ये भी और एक शॉर्टकट हो गया। और वो सारे लोगों को हम बुलाते थे जो बाहर जाके, जिनके साथ इनको काम करना है, चाहे वो फिरोज अब्बास खान है, चाहे दिनेश ठाकुर है, चाहे रमेश तलवार है, एमएस सत्यू साहब है, जब्बार पटेल है, डॉक्टर लागू है, नीलू फुले जी है, विजया मेहता जी है, जितने भी मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और परेश रावल जी है, नसीरुद्दीन शाह है, मैं ऐसा कोई छोड़ा ही नहीं हमने जिनको बुलाया नहीं। तो एक तरीके का वो अड्डा बनते बनते वो एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, वो भी एक अपने आप में एक यूनिक, यूनिवर्सिटी के पूरे प्रेशर में, सेटअप में वो खड़ा करना भी अपने आप में एक चैलेंज था, बट आई एंजॉयड दैट आल्सो। और एक बहुत अच्छे एक से एक बेहतर प्रोडक्शन भी हो गए। ये मध्यम व्यायोग तो उसी के लिए किया था, फिर ईडीपस किया दो मंजिला सेट लगा के। मेरे बाद और भी डायरेक्टर्स ने भी काम किया, विजय केंकरे।

0: ने किया, चंद्रकांत कुलकर्णी ने आके काम किया, पुरुषोत्तम बेर्डे ने किया, रंजीत कपूर ने आके काम किया, अंकुर जी ने आके काम किया, इतने सारे। और ये पहला विभाग है पूरे देश में यूनिवर्सिटी के मर्यादा में कि पहले साल हमने अपना नेशनल फेस्टिवल शुरू किया।
1: वाह वाह वाह,
0: राष्ट्रीय वसंत नाट्य महोत्सव
1: जी।
0: इसमें ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है कि जिसको हमने इनवाइट नहीं किया, पूरे हर एक। रतन थियाम मणिपुर से दो बार आ गए, बंसी कौल आ गए, उसके बाद रैना साहब आ गए, उसके बाद रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आ गए, मतलब कोई भी, साउथ का बी जयश्री आ गई, अहमदाबाद से फलाना आ गया, सौम्या जोशी आ गए, इतने सारे पुराने भी डायरेक्टर्स और नए भी डायरेक्टर्स, सबको वहां लाया। ऐसे प्रोडक्शन हम चुन चुन के लाते थे कि जो अदरवाइज मुंबई में देखने सुनने को मिलेंगे नहीं, तो वो लंबी लाइन में खड़े होकर लोग अंदर जाते थे और वो माहौल भी देखा हमने। और सारा का सारा विद्यार्थी ऑर्गेनाइज करते थे, हम सिर्फ उसके पीछे खड़े रहते थे।
1: वाह वाह,
0: कि अंत में अगले जनरेशन के रिस्पॉन्सिबल लोग बनाने का काम वो यज्ञ जैसा हो रहा था। तो वो भी एक अपने आप में मुझे लगता है कि मिसाल है, जो माहौल दिल्ली में मैं ले गया वो यहीं बनाया हुआ था
1: जी।
0: क्या करने से बच्चे के जीवन में परिवर्तन होता है, वो सारा का सारा वहां तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें एड ऑन क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कम पड़ा था, क्या ज्यादा था। तो मुझे लगता है कि वो सारा जो एकेडमिक्स है उससे मेरी कहीं दोस्ती नहीं टूटी, जो प्रैक्टिसेस है उसमें मेरी कोई दोस्ती नहीं टूटी, तीसरा है मेरा रिसर्च का स्वभाव अभी तक वैसा ही है, चौथा है दुनिया भर का जो हो रहा है उसका कॉग्निजेंस रखना कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी एक अपने आप में दिलचस्प बातें थी। मुंबई में जो जो भी आता था, जो किसी भी देश से आए, वो एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में आए बिना जा नहीं सकता था
1: जी, जी।
0: ऐसा कुछ हमने, चाहे ब्रिटिश काउंसिल हो, चाहे अमेरिकन सेंटर हो, चाहे जर्मन सेंटर हो, रशियन सेंटर हो, छोटे से छोटे देश का कोई भी रंगकर्मी आता था वो मुझे पता चलता था, क्योंकि वो नेटवर्क था, दोस्ती थी इन लोगों से, जो दिल्ली में भी बहुत काम आया मुझे बाद में आगे चल के। तो इसकी वजह से ये भी खड़ा हो गया। और अभी तक मैं जब तक था, मुझे लगता है 8 बार राष्ट्रीय वसंत नाट्य महोत्सव हुआ, 8 या 9 बार
1: जी।
0: तो उसमें भी हमारे बच्चों को दुनिया भर का बेहतर नाटक देखने को मिलता था। कोई नॉर्वे से आ रहा है, एक कोई आदिवासी ग्रुप थिएटर लेके, उसका परफॉर्मेंस हम वहां करते थे।
1: बाबा,
0: मतलब ऐसा नहीं है कहीं से भी कोई भी आए और हमको पता चले कि हम उसको हाथ जोड़ के पकड़ के लाते थे और जितना भी संभव है हमारी अपनी इसमें सुविधा देना उतना करते थे, क्योंकि एक क्लोज थिएटर कुसुमाग्रज जो भाषा सभागृह है वो हमारे हाथ में था, और एक ओपन एयर थिएटर हमने हमारे लिए हमारे इंजीनियर से कंस्ट्रक्ट करवा लिया था। उससे बेहतर थिएटर तो आज इस देश में कहीं नहीं है। ओपन एयर थिएटर में जाइए, माहौल है कि यहाँ बैठे बैठे आप करियों का आस्वाद ले सकते हो।
1: सही है, सही है। तो सिनेमा के जो आपके सपने है, आपकी धारा को,
0: तो इसीलिए सिनेमा, मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि मैं सिनेमा नहीं करूंगा, मुझे लगा था कि यहाँ पर एक स्पेस बननी चाहिए, आपकी जगह बननी चाहिए। और ये मेरा स्वभाव नहीं कि इसको छोड़ के उसको पकड़ो और उसको पकड़ के उसको ताड़ो। मुझे लगा कि ये जहां काम करना है, जहां आनंद आ रहा है, और हर बार आप अपनी डिस्कवरी कुछ कर रहे हो, मतलब अभी तक मैं कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं किया कि मैं अपने आप को रिपीट कर पाऊं। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी कुछ नया नाटक करना चाहिए
1: जी। जी,
0: सिनेमा का भी सपने आते हैं कि मुझे ऐसा सिनेमा करना है कि जैसे पहले नाटक ने देश को हिला दिया, वैसे मैं कम से कम पहले फिल्म में दुनिया को हिला दूं। ऐसा कोई कंटेंट मैं ढूंढ रहा हूं, ऐसा कोई कहने का तरीका ढूंढ रहा हूं, ताकि वो माध्यम में जाने के बाद लोगों को ये ना बुलाए मेरा कुछ देखो।
1: जी जी जी,
0: वो अपने आप इतना बोलना चाहिए कि यार आई शुड गो एंड सी दैट फिल्म।
1: तब तक इस धारा को ऋत्विक आगे बढ़ा रहे हैं।
0: ऋत्विक के 2 या 3 सिनेमा आ गए हैं, और तीसरा ही पिछले हफ्ते में उसके सिनेमा का फिल्म फेस्टिवल में एक स्क्रीनिंग हुआ है
1: जी। जी,
0: उसके पहले उसका ड्राई डे एक सिनेमा रिलीज हो गया है। अभी रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेमा है जो उतना अंडरलाइन होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया, पर आगे चलकर होगा, सरगम नाम का सिनेमा है और बहुत यूनिक स्टोरी पे बनाया है। और उसका खासियत यह है कि गिरीश कारनाड जी का आखिरी सिनेमा है जिसमें गिरीश कारनाड जी ने स्वतः काम किया है
1: जी,
0: और वो मराठी सिनेमा है, और वो बहुत अच्छा रोल किया है गिरीश कारनाड जी ने। और ऋत्विक और गिरीश कारनाड जी आमने सामने हैं।
1: वाह वाह वाह,
0: ऋत्विक प्रमुख भूमिका में, नायक की भूमिका में है, और वो ऐसा लगता है खलनायक है लेकिन वो है नहीं।
1: जी।

0: तो ये सारा जो मुझे लग रहा है कि ये जो धरोहर है या ये जो थ्रेट्स है या जर्नी है वो तो आगे चलती रहेगी। ऋत्विक अपने तरीके से वो थिएटर भी कर रहा है और सिनेमा में भी काम कर रहा है और भी कुछ वो करना चाह रहा है, जो कभी बोलता है कभी नहीं बोलता है।
1: अच्छा क्या बात?

0: मेन स्ट्रीम जो हमारा व्यावसायिक सिनेमा है उसमें बहुत रेयरली आपको लगता है कि यार ये ठीक है
1: जी।
0: इसलिए मैं सेंसर बोर्ड का बोर्ड मेंबर भी हूँ, तो वो इसीलिए हूँ कि मैं सिनेमा देखते रहता हूँ
1: हर तरह के
0: सिनेमा देखते।
1: जी वामन केंद्र जी, आपकी तमाम अगली अभिव्यक्तियों का हमें इंतजार रहेगा और इस लंबी बातचीत में बहुत आनंद आया। सबसे अच्छी बातचीत वो होती है जिनमें अगली बार की बातचीत की गुंजाइश बनी रहे।
0: जी जी जी,
1: तो मुझे लगता है इस बातचीत को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूनुस जी और विविध भारती का मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इतना सारा गपशप करवाने के लिए।
1: बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू, धन्यवाद।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का चौथा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

बेगम अख्तर की आवाज में सुदर्शन फाकर की लिखी ये ठुमरी आप सुन रहे थे। और इसके पहले श्रोताओं, हमने आपको सुनवाया था उमराव जान फिल्म का नगमा। आशा भोसले की आवाज थी, शहरयार के बोल खयाम की तर्ज थी।

0: सदियां इस एल्बम में आप सुन रहे थे ऋचा शर्मा और साबरी ब्रदर्स की आवाजें, समीर के बोल थे, अदनान सामी की तर्ज थी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। हाँ।

0: आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गडले
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
4: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
5: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
6: चिट्ठी न कोई संदेह।
2: 20 सितंबर से हर रविवार।

0: तर्ज और आवाज अदनान सामी की थी, समीर का लिखा ये गीत आपने सुना तेरा चेहरा एल्बम से।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैला

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज में ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। विविध भारती का ये कार्यक्रम है श्रोताओं रंग तरंग।

0: लता मंगेशकर की आवाज में बाल कवि बैरागी की ये रचना आपने सुनी। जयदेव का संगीत था, फिल्म थी रेशमा और शेरा।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवियर बेटल की आज नई दिल्ली में मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेटल की ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा के साथ आज सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुरानी बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
1: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि ये मामला सांप्रदायिक सद्भाव को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण होगा और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 443 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 138 अंक गिरकर 23,759 पर कारोबार कर रहा था। दिग्गज सिनेमाटोग्राफर टीएन कृष्णन कुट्टी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मलयालम सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री कृष्णन कुट्टी ने 1960 में अपने करियर की शुरुआत उम्मा फिल्म में कैमरा ऑपरेटर के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में सिनेमाटोग्राफर के रूप में काम किया।

0: जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। इस महोत्सव को स्थानीय फिल्मकारों और रचनात्मक पेशेवरों को व्यापक फिल्म उद्योग से परिचित कराने और क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करने के एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। चार दिवसीय इस महोत्सव में 40 देशों की 135 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: दिल ही तो है इस फिल्म की कव्वाली। आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

एल संतोषी की रचना आपने सुनी, हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी पोस्ट बॉक्स नंबर 999। और इसके पहले जो गीत आपने सुना, आशा भोसले, मुबारक बेगम और साथियों की आवाजें थी। फिल्म थी कब हुई गवनवा हमार। मुनिंद्र शुक्ला के बोल थे, इकबाल कुरैशी की तर्ज थी।

0: अपरा हाउस इस फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज आपने सुनी, नगमा निगार मजरू सुल्तानपुरी, मौसिकार चित्रगुप्त।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता।

नेता विनीत रैना, जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में पीएल संतोषी का लिखा यह गीत आपने सुना। सी रामचंद्र की तर्ज थी, फिल्म थी शिनशिना की बुबला बो। और इस गीत के पहले श्रोताओं, हमने आपको सुनवाया था जो गीत हम पंछी एक डाल के इस फिल्म से आशा भोसले और साथियों की आवाजें थी, पीएल संतोषी की रचना थी, एन दत्ता का संगीत था।

0: लता मंगेशकर की आवाज में पीएल संतोषी की रचना आप सुन रहे थे। शिवराम कृष्णा का संगीत था इस गीत में। तीन बत्ती चार रास्ता इस फिल्म का गीत था।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला और गड्डिले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

0: दिल ही तो है इस फिल्म में आपने सुना मन्ना डे की आवाज, साहिर ध्यानवी की बोल थी, रोशन का संगीत था।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

बॉबी नैयर के संगीत निर्देशन में इसे गाया आशा भोसले ने। मजरू सुल्तानपुरी की रचना आप सुन रहे थे मेरे सनम फिल्म से। और अब आपको सुनवाते हैं जहरीला इंसान फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम संपन्न होता है। श्रोताओं,
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार।

0: भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: यह है विविध भारती, आप सुनेंगे थोड़ी देर में कार्यक्रम सुरीला सफर।
2: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस परिषद में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा उपायों और जारी बचाव अभियान की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
3: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम

0: सात परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा और कई अन्य नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि सोन नदी के जलस्तर में कमी से कुछ राहत मिली है। सोन नदी पटना के पास गंगा में मिलती है। इसमें पानी कम होने से दीघा तथा गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर का दबाव कम हुआ है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले चार दिन तेज बारिश का अलर्ट है। रीवा और सागर संभाग के छह जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवर बिटल की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बिटल की ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। ओपेक प्लस समूह के सात प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 485 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 145 अंक गिरकर 23,753 पर कारोबार कर रहा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की आज शाही सवारी का आयोजन हो रहा है। अंतिम शाही सवारी में भगवान महाकाल के सात अलग अलग रूपों के दर्शन होंगे। सवारी शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होगी और महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा और रामानुज कोट होते हुए राम घाट पहुंचेगी। आकाशवाणी उज्जैन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक इसका लगातार प्रसारण करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah is chairing the 28th meeting of the Western Zonal Council in Panaji today. Chief ministers and senior ministers of Goa, Gujarat and Maharashtra, along with representatives of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, are participating in the meeting. The council provides a structured platform to discuss issues affecting two or more states or the center and states together and strengthen mutual cooperation. Matters requiring coordinated action and those remaining unresolved at the official level could be taken up for consideration. Later, Amit Shah will present the President's police colour to Goa Police. The Enforcement Directorate ED has conducted searches at 7 premises in Kolkata, Delhi and Ranchi in connection with a case involving Akhbar-e-Mashriq Private Limited, an Urdu daily newspaper, and its director and TMC MP Nadeemul Haq. ED has recorded an enforcement case information report on the basis of an FIR registered by Vidhannagar Police Commissionerate. The investigation agency said the case relates to allegations concerning the publication and dissemination of material allegedly promoting communal disharmony. It said the case also contains allegations regarding illegal transactions, unaccounted cash transactions and funding from suspicious sources. Delhi Chief Minister Rekha Gupta, along with Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa, visited the site of the building collapse and took stock of the situation in the Satyaniketan area of New Delhi this morning. Talking to reporters, Ms. Gupta stated that the government is in touch with the parents of the affected students.
2: Around 80% of the debris has been removed. Only debris equivalent to the basement levels remain. So far, 12 people have been found, of whom 6 are dead and 6 are in stable condition. We are in touch with the parents of all of them and are making every possible effort to ensure that they do not face any difficulties. Action will be taken against the owner of the building. All dangerous buildings in the surrounding area will also be identified and demolished.
1: Manjinder Singh Sirsa said the National Disaster Response Force team is continuously engaged in the operation. Mr. Singh said the Chief Minister has directed the Commissioner and the Chief Secretary to immediately suspend all officials responsible for this matter and to take strict

0: action. External Affairs Minister of Affairs Jayshankar met Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Luxembourg, Xavier Bettel, in the national capital today. In a social media post, Ministry of External Affairs spokesperson Ranveer Jaiswal said the visit provides an opportunity to further strengthen the multifaceted relations between India and Luxembourg. Mr. Bettel arrived in New Delhi for an official visit earlier today. The Indian Space Research Organization, ISRO, has issued a clarification on reports circulating in the media regarding speculations and misinformation that there is an attempt to privatize ISRO or reduce its role. In a social media post, ISRO said it will neither be privatized nor will its importance be diminished. It added that participation of the private sector in space is aimed at enabling ISRO to focus even more strongly on the next generation of India's space program while industry scales up mature technologies and capabilities. The United States, South Korea and Japan today began a five-day joint military exercise, Freedom Edge, in international waters east and south of South Korea's Jeju Island. The exercise is proceeding on schedule even as key Seoul Washington drills were recently scaled back upon U.S. President Donald Trump's order. South Korea's Joint Chiefs of Staff said the annual defensive exercise will focus on strengthening the three countries' operational and joint response capabilities across maritime, air and cyber domains. The drills are aimed at countering North Korean nuclear and missile threats and maintaining regional stability. The fourth edition of Freedom Edge is being held as scheduled despite the recent scaling back of the U.S.-South Korea Ulchi Freedom Shield exercise following an order from U.S. President Donald Trump. Benchmark domestic equity indices were trading in negative zone during the afternoon session today. The Sensex declined 485 points to 76,030, while the Nifty fell 145 points to 23,753 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी सांसद पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। रांची, कोलकाता और दिल्ली स्थित ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी का सघन तलाशी अभियान जारी। बाल विवाह के खिलाफ भारत की लड़ाई को वैश्विक सफलता। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यूएन के 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने के फैसले को बताया ऐतिहासिक। रांची में भाजपा के सेवा संकल्प अभियान में शामिल हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान। राज्य में एसआईआर अभियान तेज। नए वोटरों के नाम जोड़ने के लिए मिले 3.5 लाख से अधिक आवेदन। दावे और आपत्तियां जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर। और जमशेदपुर में राज्य स्तरीय रोल बॉल प्रतियोगिता संपन्न। कई जिलों के युवाओं ने दिखाया दम। विजेता खिलाड़ियों को मिले मेडल और सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अहमद हसन नदीमुल हक से जुड़े कोलकाता, दिल्ली और रांची स्थित करीब 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। यह पूरी कार्रवाई एक समाचार पत्र से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की जा रही है। ईडी की टीमों ने आज तड़के कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में स्थित सांसद के आवास और कार्यालय समेत अन्य ठिकानों पर दबिश दी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने 27 नवंबर को बाल प्रारंभिक और जबरन विवाह उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की तारीख से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश इस कुरीति को खत्म करने के लिए संकल्पित है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा एवं समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रांची में आयोजित भाजपा की जिला स्तरीय कार्यशाला में सहभागिता की। इस अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री के राष्ट्र निर्माण के संकल्प को जन जन तक पहुंचाना है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार के आकस्मिक निधन के कारण झारखंड

0: इस एसोसिएशन ने अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर 8 से 10 सितंबर तक प्रस्तावित राज्यव्यापी आंदोलन को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने बताया कि राजकीय शोक के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया।
1: माननीय मंत्री झारखंड सरकार सुदीप सोनू जी हमारे बीच अब नहीं रहे, उनका असामयिक निधन हो गया हृदय गति रुकने से, बहुत ही दुखद बात है। झारखंड राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि अभी आंदोलन को तत्काल स्थगित कर दिया जाए और आगे जब कुछ सामान्य हो जाएगा इसके बाद हम लोग मिल बैठ कर आगे की रूपरेखा तय करेंगे।
0: सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर में कल होने वाले राज्यपाल के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने सीटीसी प्रिसीजन टूल्स का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात और प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया। सरायकेला एसपी मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
2: संभावित गवर्नर आनंदी गवर्नर से का जो विजिट है इसमें लेके हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या कहाँ पॉइंट्स पे हम लोग डिप्लॉय करना है सब हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है और उस टाइम पर हम लोग अच्छे से डिप्लॉय करेंगे। दूसरा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनका सीमाओं से बनेगा जो भी हम लोग डिप्लॉय करना है उसके लिए हम लोग सारे डिवेक्शन किए गए हैं।
0: राज्य में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत अब तक फॉर्म 6, 7 और 8 के लिए 5,90,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए 3.5 लाख से अधिक फॉर्म 6 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार नाम जोड़ने और सुधार के लिए दावे और आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2026 तय की गई है। रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स के हड्डी रोग और एनाटॉमी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से रिम्स बेसिक नी आर्थोप्लास्टी कोर्स का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यशाला का उद्देश्य आर्थोपेडिक सर्जनों और युवा डॉक्टरों को घुटना प्रत्यारोपण की आधुनिक तकनीकों तथा प्री ऑपरेटिव प्लानिंग का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह कल आयोजित होगा। समारोह की अंतिम तैयारियों को लेकर कुलपति प्रोफेसर अंजिला गुप्ता की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। इस समारोह का रिहर्सल आज XLRI में किया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने पूर्व में पंजीकरण से वंचित रही 33 छात्राओं को भी समारोह में शामिल होने का विशेष अवसर दिया है। सिमडेगा पुलिस ने नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए अवैध शराब और ड्रग्स के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। एसपी श्रीकांत एस खोत्रे ने चेतावनी दी है कि नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
3: पुलिस इस दिशा में एक्साइज विभाग के साथ में मिलकर लगातार छापेमारी कर रही। पिछले सप्ताह में ही लगभग 500 केजी दवा मोमा तथा करीब 20 लीटर शराब जो है बरामद की गई है। इससे कांड भी जो है वो दर्ज किए गए। ड्रग्स की बात करें तो पिछले माह में ही 2 कांड दर्ज किए गए हैं जिसमें जो टैबलेट है वो बरामद की गई है और था उस नेटवर्क में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।
0: रांची के मोरहाबादी मैदान में आगामी 1 से 7 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल JCI के 29वें एक्सपो उत्सव 2026 के आधिकारिक ब्रोशर का कल विमोचन किया गया। मौके पर JCI के PRO चेयरमैन वरुण जालान ने बताया कि इस 7 दिवसीय भव्य व्यापार मेले में देश विदेश के विभिन्न उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक स्टॉल महिलाओं को भी समर्पित होगा।
4: विगत कुछ वर्षों से हम लोग पूरा पिंक कैनोपी लगाते हैं जितनी भी लेडीज उद्यमी है रांची में उनके लिए, तो वो पिंक हैंगर जो हमारा होता है उसमें सिर्फ लेडीज लोग से रिलेटेड सारे सामान रहते हैं। बाकी पूरा एक्सपो में जितने भी 250+ स्टॉल्स लगते हैं बाहर से भी आते हैं विदेश से भी आते हैं।
0: घरेलू शेयर बाजार में आज सुबह के कारोबारी सत्र में बड़ी गिरावट देखी गई, जहां प्रमुख इक्विटी

इंडेक्स आधे प्रतिशत से ज्यादा टूटकर ट्रेड कर रहे हैं। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 443 अंक फिसलकर 76,073 के स्तर पर, जबकि निफ्टी 138 अंकों की गिरावट के साथ 23,759 पर था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम। राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में मौसम बदल गया है और बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने पहले ही आज से 12 सितंबर तक राज्य में गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 दिवसीय झारखंड राज्य स्तरीय रोल बॉल प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि टाटा स्टील खेल विभाग के प्रमुख कप्तान मनीष सिन्हा ने विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान कर सम्मानित किया। इस राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में हजारीबाग, बोकारो और रांची समेत कई जिलों के अंडर 11 से लेकर सीनियर वर्ग के बालक बालिका खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी सांसद पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। रांची, कोलकाता और दिल्ली स्थित ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी का सघन तलाशी अभियान जारी। बाल विवाह के खिलाफ भारत की लड़ाई को वैश्विक सफलता। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यूएन के 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने के फैसले को बताया ऐतिहासिक। रांची में भाजपा के सेवा संकल्प अभियान में शामिल हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान। राज्य में एसआईआर अभियान तेज। नए वोटरों के नाम जोड़ने के लिए मिले 3.5 लाख से अधिक आवेदन। दावे और आपत्तियां जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर। और जमशेदपुर में राज्य स्तरीय रोल बॉल प्रतियोगिता संपन्न। कई जिलों के युवाओं ने दिखाया दम। विजेता खिलाड़ियों को मिले मेडल और सम्मान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

साधना और अमिता पर फिल्माया गया ये गीत था मेरे महबूब फिल्म का, शकील बदायूं का लिखा। एक श्रोता ने लिखा है, बैलगाड़ी जाती हुई और लालटेन जलती हुई देखी गई, याद कीजिए फिल्म तीसरी कसम, हीरामन हीराबाई को लेकर फरबीजगंज के मेले बैलगाड़ी से जा रहा है। राज कपूर और वैजयंतीमाला कलाकार थे। जी हाँ, आपने देखी होगी शायद ये फिल्म, और बड़ी ही खूबसूरत, बड़ा ही खूबसूरत इसका पिक्चराइजेशन भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि बिजली और आधुनिक स्ट्रीट लाइट के आविष्कार से पहले सड़कों शहरों में कोयला गैस से जलने वाले लैंप पोस्ट का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था। शाम को इन दीपों या लैंपों को जलाने और बुझाने के लिए विशेष कर्मचारियों या चौकीदारों को रखा जाता था। कई जगह नागरिकों के लिए ये नियम था कि वे अपने घरों की खिड़कियों के पास रोशनी का प्रबंध कर दें। बचपन में हमने भी देखा है, शाम होते ही केरोसिन के लालटेन को गोईठा यानी उपले के राख से साफ करके फिर उसे मुलायम कपड़े से पोंछकर लालटेन जलाकर घर के दरवाजे दलान में रख दिया जाता था, जिससे सड़क गलियां जो है सभी तरफ का भाग जो है वो रोशन रहे। कलाकार आपको बताने हैं।

आया सावन झूम के इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, धर्मेंद्र पर फिल्माया गया। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह होती है तो रोती है शमा महफिल की, रात भर जिसने उजाला किया उसे ही बुझना पड़ा। एक और श्रोता लिखते हैं कि छायावाद की मेरी आदरणीय महादेवी वर्मा जी की कविता से कुछ पंक्तियों को साझा कर रहा हूँ। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। एक और श्रोता ने लिखा है, रोशन तुम्ही से दुनिया रौनक तुम्ही जहाँ की, इस गीत को इन्होंने बताया है। और वैसे तो अगर देखा जाए तो प्यार की जो शमा होती है वो दिल में हमेशा जलनी चाहिए। आज के जीवन में ये बात कितनी प्रासंगिक है ये आप हमें बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि परवाने को शमा पर जलकर कुछ तो मिलता होगा, यूं ही मरने के लिए कोई मोहब्बत नहीं करता। शमा परवाना प्रेम के प्रतीक स्वरूप हैं, जिनसे प्रेम की पराकाष्ठा और समर्पण का पता चलता है। सच्चा प्रेम किसी भी परिणाम से डर कर पीछे नहीं हटता। और फिर आगे इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। आपको ये फिल्म और कलाकार पहचानने हैं?

दिए की रोशनी से जगमगाता ये गीत था जो रोशन था बेहद खूबसूरत अभिनेत्री वैजयंती माला पर, और गंगा जमुना फिल्म का ये गीत था। इस गीत की डिटेल अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि किसका लिखा हुआ ये गीत था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि फिल्म दोस्ती में एक दोस्त रोड पर लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई करते हैं। जी हाँ, ये तो है। एक और श्रोता लिखते हैं कि देवदास फिल्म के आखिरी दृश्य में दिलीप कुमार जी बैलगाड़ी में बेसुध पड़े हैं और लालटेन की रोशनी में गाड़ी चली जा रही है। एक और इन्होंने ही बल्कि लिखा है कि बचपन में गांव में हमारी भी बैलगाड़ी थी, बारिश में ऊपर टप्पर लगाकर शहर खरीदारी के लिए जाया करते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि 20 साल बाद फिल्म में भी शमा लालटेन के रूप में दिखाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल। और गीत को भी इन्होंने याद किया है कि फिल्म में ये गीत था। आप ये नगमा सुने श्रोताओं, और बताएं कि ये किसके ऊपर फिल्माया गया है, मतलब किन अभिनेता और अभिनेत्री पर।

आशिक फिल्म के इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है। राज कपूर और पद्मिनी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो है शम्मा परवानी की बात है, ढलती रात सदियों से मोहब्बत समर्पण और वक्त के गुजरने के फलसफे को बयां करता आ रहा है। शम्मा का वजूद एक खामोश तड़प है, परवाना एक समर्पित दीवाना आशिक जो मरने की हद तक, इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं बहुत लंबी चौड़ी। एक और श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं कि ढलती जाए रात इस गीत को इन्होंने लिखा है। जी हाँ, बहुत सारे गीत थे आज जो हमने इसमें सोचा था कि आपको सुनवाएंगे। देखते हैं कौन कौन से गीत हो सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि शमा और परवाने के बीच प्यार का रिश्ता अटूट निस्वार्थ और आत्मघाती प्रेम कहलाता है। शमा जलती रहती है और परवाना ये जानते हुए भी कि वो जल जाएगा फिर भी उसके प्यार में उसी तरफ खींचा चला जाता है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि शाम ढले खिड़की तले और मेरे महबूब नजा, ये तमाम गीत इन्होंने सुझाए हैं और पसंद किए हैं। एक और सवाल आपसे कि जो हमने किया था कि जीवन में वो कौन है जो शमा की तरह आपके लिए रोशनी बनकर आया, आप चाहें तो बता सकते हैं श्रोताओं।

रजिया सुल्ताना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आपको बताना है श्रोताओं कि इस गीत में कलाकार कौन थे। वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने बताया भी है, तो हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। एक हमारी और श्रोता लिखती हैं कि अंधेरी रात में शमा की रोशनी जगमगा उठी, चांदनी की तरह बिखरती उस रोशनी में प्यार वफा और समर्पण की एक अनोखी दास्तान छिपी थी। शमा और परवानी का रिश्ता सच्चे प्रेम जुनून और तड़प की मिसाल है। कभी जफाओं की कसक, कभी वफाओं की आबरू, कभी महबूब की आगोश में बीतती रात, तो इन सभी एहसासों में प्यार अपनी पूरी शिद्दत से दिखाई देता है। शमा की तरह अपने लक्ष्य के लिए जलना और परवानी की तरह है, इसके आगे भी इन्होंने अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं श्रोताओं। तो आपसे हमने पूछा था कि जीवन में आपके वो कौन है जो एक क्षमा यानी रोशनी की तरह आया, तो आप इस बारे में लिख सकते हैं। और जलती हुई क्षमा एक हमने पूछी थी कि जो फिल्म गंगा जमुना का गीत हमने आपको सुनवाया था उसमें दीपक की रोशनी है, दीपक की रोशनी और क्षमा की रोशनी, और अगर हम झूमर की बात करें तो उसकी रोशनी, ये सभी रोशनियों में आपको सबसे अच्छी किसकी लगती है और किस रोशनी के नीचे आपने कभी कोई शाम बिताई हो, तो आप उस बारे में बता सकते हैं। यानी झूमर या कैंडल यानी मोमबत्ती या फिर दिए की रोशनी के तले कोई ऐसी सुंदर शाम बिताई हो जो आपके जहन में यादगार पल बन गई हो, तो आप ऐसी बातें हमें बता सकते हैं।

जहाँ आरा फिल्म का ये गीत आपने सुना मिन मुमताज पर फिल्माया गया, और इसके पहले हमने आपको सुनवाया था रजिया सुल्ताना फिल्म का गीत जयराज और निरूपा रॉय पर फिल्माया गया। ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है और बिल्कुल ठीक है। तो हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि जब मैं छोटी थी तो लैंप में पढ़ती थी, बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था। हम 5 भाई बहन एक साथ बैठकर शरारतें भी बहुत किया करते थे। वो समय दो हंसों का जोड़ा ये फिल्म थी, गंगा जमुना दिलीप कुमार वैजयंतीमाला। इस गाने में नायिका के अपने अकेलेपन के दर्द को नायिका बताती हैं, ऐसा इन्होंने इस गीत के बारे में भी लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शम्मा परवाना और ढलती रात तीनों मिलकर मोहब्बत की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां इश्क सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि खामोशी से मिटते जाने का हुनर है। परवाना एक पल में जलकर अपनी कहानी कह देता है मगर शम्मा पूरी रात पिघलकर भी रोशनी बांटती रहती है। शायद सच्ची मोहब्बत भी ऐसी ही होती है, एक जलता है दूसरा पिघलता है और रात चुपचाप बीत जाती है, पीछे रह जाती है बस थोड़ी सी रोशनी और बहुत सारी यादें।

ये कलाकार आपको बताने हैं श्रोताओं, और फिल्म बतानी है। एक हमारी श्रोता लिखते हैं कि लाइट चली जाती थी तब लालटेन से पढ़ाई की है। एक और श्रोता ने लिखा है कि धूल का फूल फिल्म में राजेंद्र कुमार लैंप पोस्ट

राजेश खन्ना पर फिल्माया गया कटी पतंग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिए की रोशनी में मेरी इनकी शादी के बाद इन्होंने लिखी है, तब बिजली नहीं थी, लालटेन दरवाजे पर जला करती थी, बाकी घर में दिए जलते थे जो मिट्टी के तेल से जलते थे। बाकी जो है एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि कटी पतंग फिल्म का ये गीत राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया और इस गीत की डिटेल लिखी है इन्होंने। अब आपको ये बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है, किस पर फिल्माया गया।

मुगले आजम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। खूबसूरत बेहतरीन अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया। श्रोताओं, हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि ये चिराग अंजुमन तो है बस एक शब के मेहमा, तू जला वो शम्मा ए दिल जो बुझे कभी न जल के।

अभिनेत्री चित्रा पर फिल्माया गया नूर महल फिल्म का ये गीत था सुमन कल्याणपुर की आवाज में। श्रोताओ, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम सुरीला सफर आज बस यहीं तक। आज का ये सफर आपने तय किया संगीता श्रीवास्तव के साथ।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आयना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर विशेष बल दिया गया।
1: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉ जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
2: Ours is a very trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
2: Ratification likely in the coming future.
0: डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लग्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर श्री बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। श्री बेटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।

0: ये आकाशवाणी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहाँ से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा ताकि ये मनमर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
0: इस बीच दक्षिण जोन के एमसीडी उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। भवन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है।
3: इसमें मतलब स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन में बेसिकली ब्रीचिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो है इक्विपमेंट्स है सीमेंट और कंक्रीट काटने के लिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं इनको स्लैब्स को रिमूव करने के लिए, इन्फ्लेक्टेबल बैग्स वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और शोरिंग सिस्टम है, ये हाइड्रोलिक शोरिंग है, वुडन शोरिंग है। ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है वो करती है। और डिटेक्शन सिस्टम, इसमें कैनाइन है या लाइट डिटेक्टर्स इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
4: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सका है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIR News Hindi और पब्लिक पर @AIR News Alerts को

0: फॉलो करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले चार दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने दो मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के छह जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहां कलियासोत बांध के दो गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
2: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में हाथीदह, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई है। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 टूरंट कम के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में आरना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमेरिकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आरना सबालिंका ने अमेरिकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमेरिका के टॉमी पॉल को पराजित किया। भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01-2331-0481-2371-7117 और 2331-4444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। MCD दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आरना सबालिंका तथा कार्लोस अल्काराज अमेरिकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती। लीजिए सुनिए फिल्म अनुरोध का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: रही हैं। नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने रांची पश्चिमी जिला के कार्यशाला को संबोधित किया। इस मौके पर श्री मरांडी ने सेवा संकल्प अभियान को सफल बनाने के लिए जरूरी सुझाव और निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री के 25 वर्षों की सेवा से परिपूर्ण प्रेरणादायी यात्रा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाने पर जोर दिया। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मामले पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री दुबे ने कहा कि सीआईडी जांच के नाम पर मामले की लीपापोती की जा रही है। सीबीआई की जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि वे झारखंड में गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लें।
1: जब तक उसकी जांच नहीं होगी ये सारी लीपापोती चल रही है और इसका एकमात्र अल्टरनेट ये है कि उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि सभी को माफी मांगनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट पर हमें भरोसा है कि सीबीआई जांच हो जाएगी। सीबीआई जांच जब होगी तो मुख्यमंत्री से लेकर राहुल गांधी जी तक फंसने वाले हैं।
0: ईडी ने झारखंड, दिल्ली और कोलकाता में 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि टीएमसी के राज्यसभा सांसद मोहम्मद नदीमुल हक से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने यह दबिश दी है। सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले कंटेंट के प्रकाशन, अवैध वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध सौदों के जरिए फंडिंग से जुड़ी शिकायतों के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की है। रांची के कोकर इलाके में एक उर्दू समाचार पत्र के कार्यालय में भी ईडी की छापेमारी जारी है। राज्य में एसआईआर के तहत दावा आपत्ति का चरण चल रहा है। हालांकि राजकीय शोक की वजह से आज सुनवाई का काम स्थगित है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 15 सितंबर तक आवेदन दिए जा सकते हैं। श्री कुमार ने इस दौरान छूटे हुए पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि आगामी 19 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कड़माटाड़ थाना क्षेत्र के भेलाटाड़ गांव के पास से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से 4 मोबाइल और 5 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में आज रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटे के दौरान गुमला और सिमडेगा जिले में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आंधी और वज्रपात होने की भी संभावना है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। दियारा क्षेत्र में बाढ़ का असर पूरी तरह से दिखने लगा है, जिससे हजारों लोग पलायन करने को मजबूर हैं। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अमरजॉन आइंद ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों से राहत शिविर में रहने की अपील की है।
2: जिला प्रशासन की ओर से वहाँ जितना बाढ़ पीड़ित गांव है सभी गांवों का दौरा किए
3: और अभी देखते हैं पानी का स्तर जो है दिनों दिन बढ़ रहा है, तो सभी ग्रामीणों से अनुरोध किए वे लोग साहिबगंज में जो हम लोग राहत शिविर बनाए वहाँ पे आकर रहे, वहाँ पे पशुओं के लिए व्यवस्था किया गया है रहने का। सभी से अनुरोध किया गया कि आप लोग वहाँ जो राहत शिविर है वहाँ पे आके रहे।
0: भुवनेश्वर में आयोजित ईस्ट जोन इंटरस्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन कर राज्य का मान बढ़ाया है। रांची की मनीषा रानी तिर्की ने महिला एकल का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी को पराजित किया। राज्य के अन्य खिलाड़ियों ने भी उम्दा प्रदर्शन कर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समापन समारोह के दौरान विजेता सम्मानित किए गए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पहले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है।

0: की सहेली।
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और हम आ गए हैं आज बहुत सारे विषय लेकर, कुछ व्यंजन लेकर और कथा सुधा लेकर।
1: बिल्कुल, वैसे हम ले तो आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहते हैं सबसे पहले कि कोई भी मंजिल पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, सफलता तक पहुँचने के लिए संघर्ष बड़ा जरूरी होता है और संघर्ष की कहानी बहुत मायने रखती है। यूं ही कोई प्राप्य नहीं होता है।
2: बिल्कुल, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन वो मेहनत भी कहते हैं ना कि संघर्ष उसमें बहुत है। मेहनत अलग चीज हुई, संघर्ष अलग है। और हर इंसान मेहनत तो करता ही है, चाहे वो छोटी से छोटा श्रम हो, परिश्रम हो, लेकिन कुछ लोग जब बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकलते हैं तो कई सारे संघर्षों से होकर ही वो गुजरना पड़ता है। और जब भी हम बहुत सारे सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं ना, तो पता लगता है कि कितना संघर्ष उनके जीवन में रहा।
1: और संघर्ष, जो कहा जाता है कि सोना जितना तपाया जाता है उतना ही खरा होता है, तो जितना आप संघर्ष कर लेंगे, जितनी मेहनत कर लेंगे, उतनी ही आसानी से आपको आगे चलकर जीवन यापन करना होगा, मतलब सफलता आपको मिलेगी। अब हमारे श्रोता क्या कहते हैं इस बारे में, अपने संघर्ष कहानी वो हमें बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और कैसे उन्हें सफलता मिली, और उन्हें ही नहीं, उनके घर वालों को, उनके बच्चों को और उनके परिजन मित्रों को।
2: और वो ये भी हमें बता सकते हैं कि क्या किसी की सफलता ने उनको प्रेरित किया, उनके संघर्ष की कहानी ने उनको बहुत सारी प्रेरणा दी, जिसको सुनकर वो अपने जो भी मुश्किलें आ रही थी उनसे उबर कर आगे बढ़ पाए।
1: अच्छा, एक बात बताइए चंचल जी, कि पिछले दिनों आपने आसमान तले कब आप यूं ही खड़ी रही, और आसमान, नीला आसमान कब देखा? वो धुंधला वाला नहीं, नीला नीला आसमान जो कहा जाता आसमानी रंग, वैसा आसमान देखा?
2: आसमान का आसमानी रंग ना आजकल बहुत सारा जो प्रदूषण है उसके आगे कहीं धुंधल का सा छा गया है, वो दिखाई ही नहीं देता। और कई बार जब हम छत पर सोया करते थे तारों की छाव में, वो तारों की छाव भी खासतौर पर महानगरों में ना तारे नजर ही नहीं आते हैं। अगर नजर आएंगे भी ना, तो रात के 1-2, 2.5 बजे के बाद में, जब थोड़ा सा पॉल्यूशन बिल्कुल कम हो जाता है ना, तब आपको कहीं थोड़ा सा आसमान साफ नजर आता है।
1: महानगरों से अगर हम किसी गांव की ओर जाते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि आसमान बिल्कुल सामने नीचे उतर आया है, और तारे झिलमिल झिलमिल तारे एकदम चमकते हुए नजर आते हैं। और महानगरों में आप पूरी अपने मुंडे को ऊपर कर दें तब भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, तारे छुपे रहते हैं। तो स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आज, 7 सितंबर को इसे खासतौर से याद किया जाता है।
2: बिल्कुल, और आज वायु प्रदूषण के कारण सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं, बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्या और बहुत सारे देशों में अर्थव्यवस्था और विकास को भी चुनौती मिल रही है।
1: तो इस बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज अपने प्रोग्राम के दौरान, और कुछ व्यंजन की बातें भी तो होंगी।
2: बिल्कुल, आज से हम शुरू कर रहे हैं, सितंबर का महीना शुरू हो रहा है, और कश्मीर के जो व्यंजन की बात होगी तो दमालू भाई पंजाबी भी होते हैं लेकिन दमालू कश्मीरी भी होते हैं, तो कश्मीरी दमालू की रेसिपी की आज बात की जाएगी।
1: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। और अब क्या एक गाना सुन लिया जाए?
2: पहले गीत सुन लेते हैं।
3: ना ये जमीन थी ना आसमां था, ना चांद तारों का ही निशान था, मगर ये सच

0: न ये आसमां था न ये जमी थी, भाई आसमान की तलाश कौन नहीं करता है।
1: देखो ये उन दिनों की बात हो गई ना जब प्रदूषण बहुत ज्यादा नहीं था, तब ऐसी जमीन और आसमान नहीं थे, और अब ये जमीन आसमान हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण नजर आता है। हालांकि स्वच्छ हवा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की 99% जनसंख्या ऐसी है जो ऐसी ही तरह की हवा में सांस ले रही है जहां बहुत सारा प्रदूषण है, और इस नुकसान से खुद को और आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को कुछ बातें समझनी जरूरी हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं।
1: और हम जो कर सकते हैं वो ये है कि वायु को शुद्धता रखने के लिए जो है हम कचरा जलाना बंद करें, विद्युत कचरे का निस्तारण करें, सप्ताह में एक दिन वाहन मुक्त दिवस मनाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर ईवी को अपनाएं, और सह वाहन यात्रा को अपनाएं कि अगर हमारे उसी रास्ते से कोई जा रहा है तो हम उसको साथ में ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और एयर की क्वालिटी इंडेक्स को देखने की आदत भी बनाएं।
0: चंचल जी, जो सूक्ष्म धूल कण होते हैं हमारे फेफड़ों से सीधे रक्त में चले जाते हैं, इससे केवल श्वास रोग ही नहीं होता है बल्कि हृदय रोग होता है, मानसिक अवसाद भी बढ़ता है। जब तापमान बढ़ता है तो धरातल के निकट ओजोन परत अधिक बनती है, लू और स्थिर वायु की स्थिति में प्रदूषक जमीन के पास ही फंस जाते हैं, जिससे हवा और ज्यादा विषैली हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जलवायु परिवर्तन वायु प्रदूषण को बढ़ाता है और वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन को। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने इन्हीं मुद्दों पर ध्यान खींचने के लिए 7 सितंबर को स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। पहली बार ये दिवस 2020 में मनाया गया था, ये इस बार 7वां

0: वर्ष है
1: और 2026 में इसकी जो थीम रखी गई है वह क्लीन एयर फॉर क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु कार्यवाही के लिए स्वच्छ वायु होना जरूरी है। इसका मतलब यही हुआ कि वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन दो अलग चुनौतियां नहीं बल्कि दोनों का एक ही मतलब है। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का प्रदूषण, पराली जलाना, ये हमारे हवा को भी खराब करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ा देते हैं।
0: जबकि हवा हम सबके लिए जरूरी है, बिना हवा के हम जी नहीं सकते हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी भी तो बनती है कि हम याद रखें कि स्वच्छ वायु विलासिता नहीं है बल्कि हमारे भविष्य में किया गया निवेश है। और स्वच्छ वायु और नीला आकाश तभी होगा जब स्वस्थ विकास होगा। और हम सब की निजी तौर पर भी जिम्मेदारी बनती है, हमारे हाथ में जो कुछ है वो हम कर सकते हैं, कम से कम इर्द गिर्द पौधे लगाएं तो शायद थोड़ी बहुत शुद्ध हवा आपको मिल सकती है। फिलहाल कथा सुधा सुनते हैं।
2: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है भगवती चरण वर्मा की कहानी, वरना हम भी आदमी थे काम के।
4: लोग मुझे कवि कहते हैं और गलती करते हैं। मैं अपने को कवि समझता था और गलती करता था। मुझे अपनी गलती मालूम हुई मियां राहत से मिलकर, और लोगों को उनकी गलती बतलाने के लिए मैंने मियां राहत को अपने यहां रख छोड़ा है। मियां राहत वास्तव में कवि हैं, वो नामी आदमी नहीं है। उनका कोई दीवान अभी तक नहीं छपा और शायद कभी छपेगा भी नहीं। मुशायरे में वो नहीं जाते, या यूं कहिए कि मुशायरों में वो नहीं पढ़ते। एक बार मुशायरे में उन्होंने अपनी गजल पढ़ी तो उनको इतनी दाद मिली कि बेचारे घबरा गए और उस दिन से मुशायरे में न पढ़ने की कसम खा ली। और दूर की नहीं हाँकते, पर फिर भी कवि हैं, इतने बड़े कि आजकल के नामी नामी शायर सब एक साथ उन पर निछावर किए जा सकते हैं। यदि आप 40-50 साल के एक ऐसे आदमी को मेरे बंगले के बारामदे में देखें, जो लंबा सा और किसी हद तक मोटा सा कहा जा सके, जिसका चेहरा गोल भरा हुआ और उस पर चेचक के दाग, मूछ नदारत लेकिन दाढ़ी तोंद तक पहुंचती हुई, सिर पर पट्टे और बाल बीच से खिंचे हुए, आंखें बड़ी बड़ी ऊपर उभरी हुई और उनमें सुरमा लगा हुआ, चिकन का कुर्ता और लंकलाट का गरारेदार पजामा पहने हुए हो तो आप समझ लो कि यही मियां राहत हैं। वो आपसे झुककर सलाम करेंगे, अदब के साथ आपका नाम पूछेंगे, आपको कुर्सी पर बैठलाकर मुझे आपकी इत्तिला देंगे और फिर धीरे से वहां से खिसक जाएंगे। आप उनको मेरा नौकर किसी भी हालत में नहीं समझ सकते और मैं उनसे मालिक का बर्ताव करता भी नहीं हूं। मैं उनकी इज्जत करता हूं, बुजुर्ग की तरह उन्हें मानता हूं। मियां राहत से मेरी मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। यूं तो इसके पहले भी मैं उन्हें देखता आता था, पर उस समय मुझे उनके नाम और उनकी खूबियों का पता ना था। इलाहाबाद के स्टैनली रोड और कैनिंग रोड के चौराहे पर खाकी वर्दी पहने लाल पगड़ी बांधे हुए मियां राहत को मैंने सवारियों को रास्ता बतलाते हुए देखा था। इक्के वाले झुककर मियां राहत को सलाम करते थे और उनकी कुशल क्षेम पूछते थे और मियां राहत मुस्कुराकर उन सबको जवाब देते थे। साथ ही इक्के वाले और तांगे वाले उल्टे सीधे दाएं बाएं जहां से तबीयत होती थी इक्का तांगा ले जाते थे। मुझे शक था कि मियां राहत शायर अवश्य होंगे। कभी कभी सवारियों को अपने भाग्य पर छोड़कर मियां राहत एक नोटबुक और एक पेंसिल लिए हुए

0: हुए चौराहे के एक कोने में नजर आते थे। कभी कभी वो अपनी पेंसिल से नोटबुक में कुछ दर्ज भी कर लेते थे। पहले तो मैंने समझा मियाँ राहत किसी का चालान कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनका गुनगुनाना सुना तो बात समझ आ गई। उस दिन मैं सिविल लाइंस में घूमने जा रहा था। शाम का समय था। इलाहाबाद के शौकीन रईस अपनी अपनी मोटरें लेकर घूमने को निकल पड़े थे। स्टेनले रोड और कैनिंग रोड के चौराहे पर जब मैं पहुंचा तब पैर आप ही आप रुक गए। आंखों ने मियाँ राहत को ढूंढ ही तो निकाला। एक किनारे खड़े हुए मियाँ राहत कागज पर अपनी पेंसिल चला रहे थे। रुक कर मैं राहत को देखने लगा। इसी समय चौक की तरफ से एक कार तेजी से आई और अपनी दाहिनी ओर मियाँ राहत पर चढ़ती हुई आई। कार की स्पीड 60 मील प्रति घंटे से कम ना होगी। मियाँ राहत अपनी नोटबुक और पेंसिल के साथ इतने मशगूल थे कि उन्हें कार के आने की जरा भी खबर ना थी। मैंने खतरे को देखा और जोर से चिल्ला उठा, मियाँ भागो नहीं तो जान गई। मियाँ राहत उछले, लेकिन कार इस तेजी के साथ चल रही थी कि उनके हटते हटते उसके अगले मडगार्ड का झोंका मियाँ राहत को लग ही तो गया और राहत लाहौल विला कुबत कहते हुए जमीन पर आ गए। मैं दौड़ा और कार भी थोड़ी दूर चलकर रुक गई। मैंने मियाँ राहत को उठाया। चोट ना आई थी, सिर्फ घुटने और कोहनी कुछ छिल गए थे। उठते ही मियाँ राहत ने अपनी पगड़ी दुरुस्त की और वर्दी से धूल झाड़ी। उस समय कार से एक 24-25 वर्ष की युवती उतरकर मियाँ राहत के पास आई। बहुत सुंदर, गोरी और यौवन भार से लदी हुई। मुस्कुराते हुए उसने मियाँ राहत से पूछा,
1: ओहो, अरे आप ठीक तो हैं? चोट तो नहीं लगी?
0: मियाँ राहत ने प्रायः 10 सेकंड तक बड़ी गंभीरता पूर्वक उस युवती को देखा। इसके बाद वो भी मुस्कुराए।
2: नहीं, चोट तो ऐसी कोई लगी नहीं, लेकिन जरा देखभाल कर मोटर चलाया कीजिए।
0: युवती ने 5 रुपए का नोट मियाँ राहत को देते हुए कहा।
1: वो क्या है ना कि अभी हाल ही में मोटर चलाना सीखी है। एक मिनट, लो ये 5 रुपए, अपने बचने की खैरात बांट देना।
0: अपने हाथ हटाकर जेब में डालते हुए मियाँ राहत ने अपना मुंह फेर लिया।
2: मिस साहब, मेरी क्या, मैं तो आप लोगों का गुलाम हूँ। आप लोगों पर अपनी जान न्योछावर करने में भी मैं फख्र समझूंगा। आप ही अपनी इस खुशकिस्मती पर कि इस चौराहे पर मैं था, ये खैरात बांट दीजिएगा।
0: वो युवती मुस्कुराती हुई चल दी। मियाँ राहत ने उसे झुककर सलाम किया। इसके बाद उन्होंने अपनी नोटबुक और पेंसिल उठाई। मैंने पूछा, मियाँ तुमने इनका चालान क्यों नहीं किया? मियाँ राहत बोले,
2: क्या करूं बाबू साहब, दिल गवाही नहीं देता। इन परिजादों की तो परस्तिश करनी चाहिए और आप चालान करने की बात करते हैं।
0: इतना कहकर मियाँ राहत और कोने में खिसक गए और नोटबुक और पेंसिल का झगड़ा सुलझाने लगे। मैं वहां से चल दिया, पर चलते चलते मुझे ये 2 पंक्तियां सुनाई पड़ी जो शायद मियाँ राहत ने उसी समय बनाकर नोटबुक में दर्ज की थी। किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, ये लुत्फ यार हमारे नसीब ही में ना था। न जाने क्यों उस दिन के बाद से मेरे हृदय में मियाँ राहत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मियाँ राहत मेरे यहाँ प्रायः आया करते थे और घंटों मुझे अपनी कविता सुनाते थे। मैं उनकी कविता समझता भी था और उनकी दाद भी देता था। इस घटना को हुए 2 मास हो गए थे। सत्याग्रह संग्राम जोर से चल रहा था। कई दिनों से मियाँ राहत मेरे यहाँ ना आए थे। एक दिन शाम के वक्त बरामदे में बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था कि मियाँ राहत आए। उनकी मुद्रा देखकर मैं घबरा गया। आंखें दबदबाई हुई, चेहरा पीला और पैर लड़खड़ा रहे थे। मैंने पूछा, मियाँ राहत खैरियत तो है? ये तुम्हारी क्या हालत?

0: क्या बीमार तो नहीं रहे? कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने कहा,
1: बाबू साहब, उफ, बाबू साहब।
0: इसके बाद वो लगातार ठंडी सांस भरने लगे। मैं वास्तव में घबरा गया था। मैंने पूछा, क्या कुछ तबीयत खराब है?
1: नहीं।
0: मियां राहत ने ठंडी सांस ली। तुम्हारे बीवी बच्चे तो अच्छी तरह हैं?
1: हाँ।
0: राहत ने फिर एक ठंडी सांस ली। अरे भाई, कुछ बतलाते क्यों नहीं कि क्या हुआ? मियां राहत ने बहुत करुण स्वर में आरंभ किया,
1: बाबू साहब, उस दिन की बात तो आपको याद है ना? जिस दिन मैं मोटर से दबते दबते बचा था।
0: हाँ हाँ, भला उस दिन की बात मैं भूल सकता हूं?
1: बाबू साहब, अब कैसे बताऊं, उस दिन वो जो मिस साहब मोटर चला रही थी, वो, अरे क्या बताऊं, वो मिस साहब एक वो जो बड़ी पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी, उस पार्टी में काम करती है।
0: हाँ हाँ, मैं जानता हूं, उनका नाम सुशीला देवी है ना?
1: है बाबू साहब, यही नाम है। आज वो गिरफ्तार हो गई।
0: अरे तो फिर इससे क्या?
1: अब क्या बतलाऊं बाबू साहब, अरे मुझे भी दरोगा साहब के साथ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाना पड़ा था।
0: मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मियां राहत रोने वाले हैं। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद मियां राहत ने फिर कहा,
1: बाबू साहब, ये सरकारी नौकरी बड़ी खराब है। इसमें अपनी रूह को चांदी के चंद टुकड़ों पर बेच देना पड़ता है। जानते हैं बाबू साहब, आज मैंने अपनी रूह का गला घोंटकर कितना बड़ा गुनाह किया।
0: मैंने कहा, मियां राहत, इस सोच विचार से कुछ फायदा नहीं। तुम नौकर हो, तुमने अपना फर्ज अदा किया है, इसी के लिए तो तुम तनख्वाह पाते हो। मियां राहत चिल्ला उठे,
1: मैं नहीं चाहता यह तनख्वाह। इस गुलामी से मैं आजिज आ गया हूं।
0: मैंने देखा मियां राहत की भावुकता जोरों के साथ उमड़ी हुई है और रंग बिगड़ा हुआ है। मैंने कहा, मियां, तुम्हारी बीवी हैं, बच्चे हैं, उनका पेट भरना तुम्हारा फर्ज है। उनसे भी कभी पूछा है कि वे तनख्वाह चाहते हैं या नहीं? जाओ अपना काम करो। बीवी बच्चों का नाम सुनते ही मियां राहत की उमड़ती हुई भावुकता पर ब्रेक लग गया।
1: क्या करूं बाबू साहब, कुछ समझ में नहीं आता।
0: इस बार उन्होंने एक बहुत गहरी सांस ली और उनकी आंखों से दो आंसू टपक पड़े। दूसरे दिन शाम के समय जब मैं काम से लौट रहा था तो मियां राहत के मकान के सामने से निकला। वहां जो दृश्य देखा वो जीवन भर कभी ना भूलूंगा। मियां राहत जमीन पर सिर झुकाए बैठे थे और उनकी बीवी उनके सिर पर बिना गिने हुए तड़ातड़ चप्पलें लगा रही थी। बीवी रो रो कर कह रही थी,
2: अरे निगोड़ा निगोड़ा, कलुहा कहीं का, नौकरी छोड़ाया हम लोगों को भूखा मारने के लिए। भूखा मारेगा हा? हम लोग क्या खाएंगे, बच्चे कैसे रहेंगे? ले नौकरी छोड़ने का मजा, ले मजा ले।
0: मियां राहत की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और वो ये शेर बेर बेर गा गा कर पढ़ रहे थे।
1: हाय, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। हाय हाय, ये इश्क।
3: आज आपने सुना कथा सुधा में भगवती चरण वर्मा की कहानी वरना हम भी आदमी थे काम के। भाग लेने वाले कलाकार जी श्याम, जयंत पात्रिकर, नेहा देसाई और ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा सुन रहे थे श्रोता अभी, और अब गाना सुनते हैं। ये
4: दिल का खिलौना है तू।

0: सखियाँ और सखा ये गाना सुन रहे थे। अब चंचल जी घड़ी की ओर देख रही हैं कि ये ब्रेक का समय हो गया है, तो लेते हैं।
1: अंतराल का समय हो गया है और अंतराल के बाद हम फिर आएंगे बातें करने।
0: छोटा सा ब्रेक।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: और गीत ये कथा सुधा से पहले हमने बात की थी स्वच्छ वायु नीले आकाश के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। आज तीन बड़े अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं यानी कि 7 सितंबर को। एक है विश्व ड्यूशेन जागरूकता दिवस और ये हर साल 7 सितंबर को हम मनाते हैं। ये एक पेशे दुपोषण का अनुवांशिक दुर्लभ रोग है और इसमें क्या होता है कि शरीर में डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन है वो नहीं बनता, जिसकी वजह से मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और मुख्य रूप से ये बीमारी जो है लड़कों को या पुरुषों को प्रभावित करती है और लड़के अधिकांश 15 वर्ष की आयु तक चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं और इस दिन का उद्देश्य यही है कि इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके ताकि जो उपचार है वो भी समय रहते किए जा सके।
0: बिल्कुल। और चंचल जी आज अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस भी है, 7 सितंबर है। 7 सितंबर 1923 को वियना में अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग बना था जिसे आज हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं। इसी ऐतिहासिक याद के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2022 में प्रस्ताव पारित किया और 2023 से हर बरस 7 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है।
1: और ममता जी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध अपनी कोई सीमा नहीं देखते, साइबर अपराध हैं, मानव तस्करी, मादक पदार्थों के अपराध हैं, आतंकवाद है, ये एक देश से शुरू होते हैं और दूसरे देश में जाकर समाप्त होते हैं। तो एक देश की पुलिस अकेले वहां कुछ नहीं कर पाती, तब ऐसे समय पे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस यानी कि इंटरपोल की बहुत जरूरत पड़ती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं और इसीलिए पुलिस अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग जरूरी भी है। इंटरपोल, संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय पुलिस संगठन मिलकर सूचना साझा करते हैं और चोरी हुए पासपोर्ट पकड़ते हैं, अपराधी तंत्र को तोड़ते भी हैं। इस वर्ष का विषय हमें गहरी बात भी सिखाता है, वो है विश्वास यानी भरोसा। इस वर्ष 2026 का विषय कमजोरी से सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था में विश्वास और वैधता का निर्माण है।
1: बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का भी ये मानना है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग जो हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, शरणार्थी हैं, दिव्यांगजन हैं, ये सभी लोग सबसे पहले अपराध का शिकार बनते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि उन्हें न्याय भी सही से नहीं मिल पाता है। इसीलिए पुलिस व्यवस्था केवल क्षमता से नहीं बल्कि जनता के विश्वास से भी बनती है।
0: बिल्कुल।
1: और एक लाइन में अगर कहें ममता जी तो सीमा पार सहयोग तभी सुरक्षित हर योग, या फिर विश्वास ही है शक्ति, पुलिस है जन की भक्ति।
0: सही बात है और हमें चाहिए कि हम उन सभी पुलिस कर्मियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें जो दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे हैं और संकल्प लें कि हम विधि के पालन में सहयोग करेंगे। और अब एक गाना सुनते हैं ये।

0: कौन अपना कौन पराया फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में सखियां और सखा सुन रहे थे। और चंचल जी, जब हम कोशिश करते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि हमें सफलता मिल जाए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद, कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए? क्या हार मान के बैठ जाना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमें तो बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर कुछ भी पाना है तो उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। और वैसे भी समाज में प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, रुपया, पैसा, तरक्की, पढ़ाई में अव्वल आना, कुछ भी होने दो, लक्ष्य अगर आपको प्राप्त करना है तो संघर्ष के बिना तो वो संभव ही नहीं है। और ममता जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि संघर्ष हमारे जीवन को तराशता है, निखारता है, संवारता है, और फिर हमें एक ऐसे सांचे में ढाल देता है कि दुनिया में हम किसी भी जगह पर एक मिसाल भी बन सकते हैं। और हम जो भी अथक प्रयास करते रहते हैं, जिसे हम संघर्ष कहते हैं ना, उसके बाद ही हमें सफलता मिलती है, और निसंदेह वो अतुलनीय भी होती है।
0: बिल्कुल, इसी तरह की एक बात हमारी एक सखी कह रही है, इसी तरह की बात कि जिंदगी के बुरे दौर में मिलने वाली छोटी बड़ी असफलता से बजाय घबराने के हमें उसी में से रास्ता खोजना चाहिए। कई लोग अपनी असफलता की तरफ कुछ ज्यादा ही देखते हैं और नए सपने देखने का जोखिम उठाने से डरते हैं। दरअसल सफलता का हर तार हमारे भीतर ही जुड़ा होता है, आवश्यकता है उसे तार को सही तरीके से कसने की, उस तार को, अपने भीतर के तार को सही कसकर ही कोई एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर विजय पताका फहरा पाता है।
1: बिल्कुल सही बात है, जीवन के संघर्ष जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव हमें कराते हैं और अच्छे बुरे का ज्ञान भी करवाता है, हमेशा सक्रिय रहना सिखाता है, समय की कीमत हमें पता लगती है, और इन सब चीजों से प्रेरित होकर हम सशक्तिकरण के साथ फिर से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाते हैं और जीवन जीने के जो सही ढंग है उसको सीख पाते हैं।
0: बिल्कुल, दुनिया का हर व्यक्ति जीवन में सफलता की उम्मीद करता है, जिसके लिए वो परिश्रम भी करता है। कई बार कुछ अलग करने की इच्छा और प्रबल प्रेरणा से हम अपने मुकाम के करीब पहुंच भी जाते हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयों को सामने देखकर हार मानकर अपनी सफलता से वंचित हो जाते हैं।
1: इसी तरह से एक संदेश हमें ये कह रहा है कि सफलता का रास्ता कठिनाइयों और संघर्ष से होकर गुजरता है। कठिनाइयां इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं, असफलताएं मुश्किलें असली ज्ञान और अनुभव सिखाती हैं। बड़ी सफलता के लिए लंबा धैर्य और निरंतर प्रयास इसकी सबसे बड़ी कुंजी है। सुडौल अक्षर को लिखने के लिए बचपन में ही स्कूलों द्वारा, हमें शिक्षकों द्वारा एक दो पेज लिखने के लिए कहा जाता था, और निरंतर अभ्यास से लिखावट में सुधार आता है, अक्षर सुंदर हो जाते हैं। इसी तरह से जिंदगी में भी सफलता के लिए ये सूत्र लागू होते हैं।
0: जब लिखने के लिए कहा जाता था सुलेख लिखना, तो सबसे कठिन लगता था कि अरे क्या मतलब, कठिन से मतलब कि उबाऊ लगता था, कि एक दो लाइन लिखने के बाद लगता था कि वही बात क्यों लिखवाया जा रहा है, कि भारत हमारा देश है, हमारा देश जानो प्राणों से प्यारा है, और उसी एक लाइन को बार बार बार बार लिखना, तो तब ये बात नहीं समझ में आती थी कि अगर ऐसे ही अभ्यास की आदत पड़ी रहेगी तो आगे जब कठिनाइयां आएंगी तो कठिनाइयों से जूझने की आदत पड़ेगी। और बहुत सारे ज्ञानी लोग भी कहते आए हैं कि जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। याद रखें कि अपनी मंजिल का आधा रास्ता तय करने के बाद कभी पीछे मुड़कर ना देखें, बल्कि पूरे जुनून और विश्वास के साथ बाकी की आधी दूरी तय करें। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर भी हमें उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है जितनी दूरी तय करने पर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं।
1: ये बात आपने बड़ी सही बताई, कई बार आधे रास्ते में आगे लगता है ना कि चलो भाई वापस चले, कितना दूर है।

0: जबकि अगर हम थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ जाएं तो शायद उतनी ही दूरी पर मंजिल।
1: यहाँ पर तैरने वाले का उदाहरण सबसे अच्छा होता है कि जो लोग तैराक होते हैं, अगर नदी पार कर रहे हैं और आधी नदी तक उनका हौसला टूटने लगे तो क्या कर सकते हैं? बीच नदी से पीछे जाएंगे तो भी उतना ही पानी है और आगे जाएंगे तो भी उतना ही पानी है। तो इसलिए बेहतर है कि आप हाथ पैर मारते रहें, कोशिश करते रहें।
0: बिल्कुल, आगे बढ़कर मनचाही सफलता नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी काम हम कर रहे हैं उसका अनुभव हमें मिलेगा। और बार बार हार कर अपनी हिम्मत के साथ लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना, यही संघर्ष होता है।
1: और यहाँ पर बात ये बनती है कि हमें गाना सुनवा दें।

0: तो चंचल जी, हम बात कर रहे थे सफलता प्राप्ति का रास्ता संघर्ष से होकर ही गुजरता है, और हमारे श्रोता भी इस मुहिम में आगे आ चुके हैं और वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि संघर्ष ने मुझे तो बहुत कुछ सिखाया है, कभी ठोकर देकर संभलना, कभी आंसू पोंछकर मुस्कुराना। आज जो थोड़ा भी मजबूत हूँ उसमें मेरी मुश्किलों का बड़ा हाथ है। शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि संघर्ष हमें तोड़ने नहीं, हमें अपने आप से मिलाने आता है। क्या बात है,
1: सही बात है ममता जी। जीवन में जब तक संघर्ष नहीं होगा, जीवन जीने के आनंद को, सच्ची खुशी को हम अनुभव भी नहीं कर सकते। जिस तरह बिना चोट के पत्थर को भी भगवान का रूप नहीं लिया जा सकता, कहने का मतलब यह है कि कोई भी मूर्ति जब गढ़ी जाती है तो कई बार उस पर चोट की जाती है, तब वो अपना आकार लेती है। और ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी संघर्ष की तपिश ना हो तो वो निखरेगा कैसे और शिखर तक पहुंचेगा कैसे, या फिर अपनी मनचाही सफलता को कैसे पाएगा।
0: बिल्कुल, और संघर्ष के सूत्र को हम समझ लें तो उस पर चलने की कोशिश हमें करनी होगी कि मतलब अगर हम

0: हम कोशिश करते रहेंगे तो सफलता मिल ही जाएगी देर सवेर। संघर्ष के डर से जीवन में कभी अपने कदम पीछे नहीं लेने हैं। आज का संघर्ष हमारे कल को सुरक्षित करता है। ये सत्य है कि जीवन में कई बार बुनियादी सामाजिक पारिवारिक समस्या आन खड़ी होती है, तब लक्ष्य के प्रति संघर्ष की इच्छा शक्ति को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जीवन का संघर्ष कई गुना बढ़ भी जाता है।
1: और हमारे श्रोता कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुश्किलों से घबराने की बजाय उनसे सीखता है, वही आगे चलकर सफलता का असली आनंद महसूस करता है। इसीलिए रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं, हिम्मत ना हारें, कदम ना रोकें और अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि संघर्ष जितना सिखाता है सफलता उतनी ही अच्छी लगती है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि सच तो यही है, सफलता का रास्ता संघर्ष से है, लेकिन ईश्वर संघर्ष रहित जीवन भी देते हैं। किसी किसी को चांदी और सोने के चम्मच और थाली वाले घर में ही जन्म दे देते हैं, तो उनके लिए संघर्ष के मायने बिल्कुल अलग होते हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि बिना संघर्ष सफलता मिलना काफी मुश्किल है। जीवन में संघर्ष और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि बिना संघर्ष या कठिनाइयों का सामना किए बिना जीवन में सफलता हासिल नहीं की जा सकती, मतलब बिना संघर्ष के।
1: बिल्कुल, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत भी उतनी ही शानदार होगी, हम इस बात को याद रखें। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, गीत सुन लें।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: भाई गाना हो गया, अब खाने की बात भी जरूरी है।
1: हाँ, गाने के बाद खाना।
0: बिल्कुल, और हमारे श्रोताओं ने जो व्यंजन लिख भेजे हैं हम वही उन तक पहुंचा रहे हैं। कश्मीरी दम आलू और सामान्य आलू दम के बीच मुख्य अंतर उनकी ग्रेवी सामग्री और बनने की विधि में होता है। कश्मीरी दम आलू में इसमें प्याज लहसुन और टमाटर का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता है। इसकी ग्रेवी मुख्य रूप से फेंटे हुए दही पर आधारित होती है। सामान्य आलू दम उत्तर भारतीय या पंजाबी शैली के आलू दम में प्याज लहसुन और टमाटर की गाढ़ी ग्रेवी बनाई जाती है। इसमें काजू का पेस्ट या क्रीम भी डाली जाती है जिसमें ये अधिक मलाईदार बनता है। कश्मीरी आलू दम में सूखा हुआ अदरक, सोंठ पाउडर और सौंफ पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है।
1: तो ये तो हुई एक संदेश की बात। अगले संदेश में इसको बनाने की पूरी रेसिपी बताई गई है और इसमें बताया गया कि कश्मीरी दम आलू बिना प्याज लहसुन बनने वाली बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक रेसिपी है। इसके लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो है बेबी आकार के पोटैटो, यानी कि 500 ग्राम हमें आलू लेने, छोटे छोटे आकार के। सरसों का तेल लेना है ग्रेवी के लिए और तलने के लिए। ताज़ा फेटा हुआ दही करीब एक कप लेना है। सौंफ पाउडर एक बड़ा चम्मच लेना है। सौंठ यानी सूखे हुए अदरक का पाउडर आधा बड़ा चम्मच लेना है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिसे थोड़ी रंगत अच्छी आ जाएगी, वो एक बड़ा चम्मच लेना है। दो चुटकी हमें हींग लेनी है। और खड़े मसाले में हमें लेने हैं जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची। नमक लेना है हमें स्वाद अनुसार। अब बनाने के लिए जो आलू है उनको तैयार कर लें, उनको थोड़ा 50% तक उबाल कर और छील लिया जाता है। अब किसी कांटे से या टूथपिक से आलू में छेद कर दिए जाते हैं ताकि मसाले इनमें अंदर तक जा सकें। और इन आलू, जो छोटे छोटे आलू हैं, इनको सरसों के तेल में मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल लेना है। और थोड़ा सा इनकी जो ऊपर की लेयर है वो क्रिस्पी हो जानी चाहिए, तब तक हमें इन्हें तलना है। और मसाले का एक पेस्ट बनाना है, उसके लिए एक कटोरी में फेटा हुआ दही, कश्मीरी लाल मिर्च, सोंठ पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ा सा पानी मिलाकर ये पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। तड़का लगाने के लिए उसी कढ़ाई में जिसमें हमने आलू तले थे, थोड़ा सरसों का तेल गर्म छोड़ देना है। उसमें जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, हींग डाल देनी है। फिर ग्रेवी डालकर थोड़ा धीमी आंच पर उसे पका लेना है। फिर दही का पेस्ट डालना है और तब तक तेल अलग ना हो तब तक इसको पकाना है। फिर जो हमारे तले हुए आलू हैं, थोड़ा सा नमक डालकर इन्हें भी डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर जब तक वो तेल थोड़ा सा अलग होने ना लगे तब तक पकाना है 10-15 मिनट तक। जब आलू थोड़े से नरम हो जाएंगे तो आपके ये समझ लीजिए कि कश्मीरी दम आलू जो हैं वो तैयार हैं।
0: तो ये रेसिपी हमारे श्रोताओं ने भेजी थी और हम इन्हें पढ़कर सुनाई, और अगली बार किसी और रेसिपी की बात होगी। और अब घड़ी की ओर देखिए कि अब गाना बजाने का समय है और सुनाते हैं ये गाना।

0: आर पार फिल्म का गाना था, गीता दत्त की आवाज थी। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम बोली बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। ईडी ने झारखंड, दिल्ली और कोलकाता में 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि टीएमसी के राज्यसभा सांसद मोहम्मद नदीमुल हक से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने यह दबिश दी है। सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले कंटेंट के प्रकाशन, अवैध वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध सौदों के जरिए फंडिंग से जुड़ी शिकायतों के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की है। रांची के कोकर इलाके में एक उर्दू समाचार पत्र के कार्यालय में भी ईडी की छापेमारी जारी है। रांची में मोटरसाइकिल चोर गिरोह के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रांची सदर अस्पताल के आसपास के इलाकों में मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाओं के मद्देनजर पुलिस पहले से तत्पर थी। इसी क्रम में सदर अस्पताल परिसर में एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया। पूछताछ के क्रम में उसने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा किया। उसके निशानदेही पर पुलिस ने 4 मोटरसाइकिल बरामद करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग पुलिस

0: ने सिगरेट से भरा करीब 920 ग्राम गांजा बरामद किया है। दिवंगत सुदिव्य कुमार के पुत्र श्रेयस ने आज पूरे विधि विधान के साथ बराकर नदी के तट पर अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन किया। इस मौके पर उनके परिजन, रिश्तेदार और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार
1: अदिति जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए कि आज का जो मुद्दा है न्यूट्रिशन, आहार विहार और डाइटिशियन की कब जरूरत पड़ती है और न्यूट्रिशन क्या है?
2: हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, लोग हमेशा यही सोचते हैं कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये हो गया मेरा न्यूट्रिशन। जबकि एक डाइटिशियन जब आपके खाने को देखती है, वो न्यूट्रिशन को थोड़े अलग तरीके से देखती है, जिसमें वो देखती है कि आपके प्लेट में या थाली में क्या है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल है कि नहीं, और वो कितनी मात्रा में है, और उसको कैसे हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स में कंपेयर कर सके। हम ये देखते हैं कि क्या वो संतुलित है और किस मात्रा में आपको उसकी जरूरत है, क्या आप वो सही मात्रा में सही समय पे लेते हैं। तो न्यूट्रिशन अगर हम सर्वसाधारण इंसान को अगर समझाने जाए तो आपको ये देखना है कि खाने में ना कि सिर्फ रोटी, सब्जी, दाल, चावल, बगैर आपको ये देखना है कि आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर ये कितनी मात्रा में है। ये बहुत जरूरी है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जिंदगी के हर पड़ाव पे जरूरी है। तो हर पड़ाव पे ये न्यूट्रिशन की जरूरत हर किसी के लिए अलग अलग होती है। ना कि हम जब पोषण की बात करते हैं, लोगों को सिर्फ बचपन, बीमारी, ये सब याद आता है, मगर न्यूट्रिशन आपको प्रेगनेंसी में भी जरूरी है, आपको अगर आप खिलाड़ी हो, स्पोर्ट्स करते हो तो तब भी आपको जरूरी है, आपको आपकी पीरियड्स शुरू होने वाले हैं या आपके पीरियड्स रुकने वाले हैं तब भी आपको जरूरी है, और आपको समझना जरूरी है कि आपकी जरूरत क्या है।
1: तो ये बताइए कि कैसे समझें, ये जो जरूरत होती है एक आम इंसान को नहीं समझ में आता है कि एक जो इंसान सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में उसको कितनी डाइट की जरूरत है, कितने आहार की और न्यूट्रिशन की जरूरत है, पोषकता की खास तौर से कितना पोषण चाहिए, ये किस तरह से इसका निर्धारण कैसे हो?
2: ये तो आप जब भी डाइटिशियन के पास जाएंगे तब आपको एकदम डिटेल में बताया जाता है, ताकि आपको आपके जिंदगी की, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, आपकी आदतें कैसी है, आप क्या काम करते हो, आपको क्या बीमारियां हैं या आपकी क्या खाने में कमियां हैं, आप जहां रहते हो खाने में क्या पूरी तरीके से पोषण मिलता है, उस आधार पे आपको ये बताया जाता है कि आपको किस चीज की किस मात्रा में जरूरत है। सर्वसाधारण इंसान को अगर मैं थाली के भाषा में समझाऊं तो उनकी थाली में 1/4 हिस्सा धान होना चाहिए, जो कि आपको ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट देगा, ताकत देगा आपकी दिन की काम करने के लिए,
1: ऊर्जा भी देगा,
2: ऊर्जा मिलेगी आपको। आपकी थाली में 1/4 हिस्सा सब्जी होना जरूरी है, जो कि मौसम के आधार पे जो भी आपके इर्द गिर्द मार्केट में आपके अवेलेबल हो वो ज्यादा आपको लेनी जरूरी होती है,
1: वो भी मौसम के हिसाब से,
2: मौसम के हिसाब से, क्योंकि हर सब्जी हर मौसम में मिलती नहीं है, और हम आजकल ज्यादाकर जो साल भर मिलते हैं वही सब्जियां खाते हैं। इसके अलावा 1/4 हिस्सा आपके प्लेट में होना चाहिए आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो आता है वो ज्यादातर अगर आप शाकाहारी हैं तो दाल, फिर आपके पल्सेस जैसे मूंग, चौली, राजमा, छोले, इसमें से आ जाता है। अगर आप दूध लेते हो तो दूध, पनीर, इसमें से आ जाता है। और अगर आप मांसाहारी है तो आपको मच्छी, फिश, चिकन, इसमें से आपको मिल जाता है। और जो 1/4 हिस्सा है इसमें आपको जरूरी होता है कि थोड़ा सा सलाद ऐड करें, थोड़ा सा आपका दही ऐड करें, क्योंकि दही जो होता है प्रोबायोटिक होता है, आपके पेट के लिए अच्छा होता है। ये सर्वसाधारण ये थाली है, जिसमें आधा हिस्सा तो ज्यादा कर सब्जियों से भर जाता है।
1: जी,
2: ये संतुलन जो है हर इंसान के लिए थोड़ा बहुत बदल जाता है।

0: ये डिपेंड करेगा कि आपकी बाकी की ज़रूरतें क्या हैं, उस पे ये निर्भर करता है।
1: जी, और ये जो आपने बताई सब्जी, दो सब्जियां थोड़ा आराम से उबली हुई या कम मिर्च मसाले वाली, नहीं तो फिर वो मसाला खा के दिक्कतें और हो जाएंगी। यहाँ
0: जी
1: पर एक गाना जरूरी है, कौन सा गाना सुने?
0: जी
1: हमें तो लगता है कि वो सादा खाने की बात है, तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ।
0: क्यों नहीं, एकदम सही गाना चुना है आपने।
1: जवारभाटा फिल्म का गाना सुनते हैं।
2: ये समझो और समझाओ।

0: लोग स्वाद प्रेमी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। हम फास्ट फूड की बात तो आगे करेंगे, फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए और बुजुर्गों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए।
1: अगर हम बच्चों की बात करें, पहले तो स्तनपान बहुत ज़रूरी है, पहले 6 महीने तो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद धीरे धीरे आपके खाने में जो भी खाना आता है वो धीरे धीरे बच्चों को शुरू कर देना चाहिए। ये कोशिश करें कि उसमें नमक शक्कर ये वर्ज रहे, या आप उसे खाने में ना रखें।
0: अच्छा अच्छा ओके।
1: आप ज़्यादातर बच्चों को जो वो मौसम के फल है, सब्जियां हैं, दाल चावल है, इससे शुरुआत करें। जितना हो सके ये समझना लोगों को जरूरी है कि बच्चे जो है ये देखकर ज्यादा सीखते हैं, ना कि जो उनको बोला जाता है। सो अगर उनके माता पिता बहुत ज्यादा चुन चुन के खाते हैं तो बच्चों के ऊपर उतना ही असर होता है। बढ़ती उम्र के साथ आपकी खाने में रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चों को सही मात्रा में छोटे छोटे अमाउंट में खाना देना जरूरी है। हर बच्चे की भूख अलग अलग होती है, तो कुछ माता पिताओं को लगता है हम कम खाना दे रहे हैं, कुछ को लगता है हम बच्चों को ज्यादा दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं है, आपके बच्चों को जितना जरूरी है उतना जाना चाहिए। उसके खाने में जो मौसम में मिलने वाली सब्जियां हैं, फल है, वो होना जरूरी है। दूध दही इसकी मात्रा सही तरीके से होनी चाहिए, और प्रोटीन भी उतना ही जरूरी होता है। मतलब दाल पल्सेस जैसे राजमा छोले पनीर, इसका भी आपको सेवन सही मात्रा में रखना जरूरी है। ये वही वक्त है जिंदगी का।

0: जहाँ पे कुपोषण ग्रामीण लोगों में ये बहुत देखा जाता है, क्योंकि कभी कभी लोगों के पास सही खाना होता ही नहीं है। और कई बार ऐसे होता है खाना तो है मगर लोगों को पता नहीं है कि उनको ये बच्चों को देना चाहिए या नहीं। जो पहले के जमाने में था, आपके बुजुर्ग घर में होते थे जो आपको बताते थे कि आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं, आज कईयों के पास वो नहीं है साथ। जितना आप शहर की तरफ जाए, न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बढ़ गई है, तो वहां पे माता पिता बहुत डर डर के बच्चों को खाना देते कि ये दू ये नहीं दू, ये सही है ये गलत है, इस सोच में कई बार बहुत खाना कम चला जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको ध्यान देखना जरूरी है। वैसे ही अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग जो होते हैं उनको दांतों के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं और उनको बाकी के हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जैसे उनकी भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, तो उनके हिसाब से उनका खाना भी बहुत संभाल के बना के उनको देना जरूरी है। जितना बचपन में खाना जरूरी है उतना बुजुर्गों के लिए भी खाना जरूरी है। उनको उस तरीके का खाना देना चाहिए जो वो खा सके। अक्सर बुजुर्ग जो होते हैं वो नहीं बदलते बहुत सही से, तो बहुत रिजिड होते, तो ऐसे वक्त पे दिक्कत आपको बहुत आ सकती है। मगर उनको ये समझाते हुए कि आपको ये जरूरी है, क्योंकि जैसे आप बुजुर्ग हो गए आपके बॉडी में मसल लॉसेस बहुत हो जाते हैं, आपके मेडिकल इश्यूज बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है होना बट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से आहार के ऊपर बहुत असर पड़ जाता है। तो ये वक्त भी ऐसा वक्त है जहाँ पे खाने में प्रोटीन पे ध्यान देना जरूरी है। क्या फल सब्जियां सही मात्रा में जा रही है, सही वक्त पे जा रही है, ये देखना जरूरी है। और उससे ज्यादा ये जरूरी है क्या ये पूरी तरीके से संतुलित आहार पूरे दिन में खा रहे हैं।
1: अदिति जी, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि विटामिन्स कितना जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विटामिन्स। और ड्राई फ्रूट और फलों में बहुत कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि ड्राई फ्रूट्स खा लें तो हमें बहुत सारा पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो जरा हमारे श्रोताओं को बताइए कि कौन से ड्राई फ्रूट्स में किस तरह के विटामिन्स होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में खाएं वो।
0: अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आपको विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत है तो सबसे ऊपर आते हैं फल और सब्जियां। और इसीलिए मैंने कहा कि मौसम के आधार जो भी आपके आजू बाजू में अवेलेबल है वो आपको लेना जरूरी है। जैसे बारिश के मौसम में कुछ सब्जियां मिलती हैं वो बाकी वर्ष भर आपको नहीं मिलेंगी। ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि वो आपको उस समय के लिए जो आपको विटामिन्स मिनरल चाहिए वो उतना प्रोवाइड करती हैं
1: जी।
0: तो सबसे पहले आपके खाने की लिस्ट में, आपके टॉप ऑफ द लिस्ट में होना चाहिए सब्जियां और फल जो कि मौसम के आधार पे हो। जैसे अगर हम मुंबई शहर की बात करें तो यहाँ पे आपको मार्केट में ज्यादातर एप्पल, पेयर, उसके अलावा पपीता मिल जाएगा। मगर मौसम के आधार पे, जैसे अभी ये जो मौसम है ये आलू बुखारा का है, या अनार आपको अच्छे से मिल जाएंगे, आपको ये फल ज्यादा खाने जरूरी है। जैसे सब्जियां हो गई, तो इस मौसम में बारिश के आपको बहुत ज्यादा, हम जो रान भाजी बोलते हैं मराठी में या हिंदी में, हम उसको जो
1: पत्ती
0: वो
1: वाली सब्जी,
0: पत्ती वाली सब्जियां, मगर जो लोगों को ज्यादा कर पता नहीं होती है ऐसी वाली, बारिश के मौसम में कम ऐसी सब्जियां आती है, जैसे फोड़शी हो गया, टाकला हो गया, वो आपको बारिश में ही मिलेगा।
1: अच्छा,
0: और वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अभी कंटोला आ गया, आप तो कंटोला आपको अभी मिलेगा, आपकी तबीयत खुद ही संभल जाएगी, आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको फाइबर की गोलियां या कुछ लेना नहीं पड़ेगा पेट साफ करने के लिए। तो ऐसी चीजें आपको मौसम के आधार पे खानी चाहिए। हम फिर मुड़ते हैं ड्राई फ्रूट और नट्स के बारे में
1: जी।
0: नट्स और ड्राई फ्रूट्स, ये दो चीजें अलग अलग है
1: जी, जी।
0: लोग अक्सर इनको कंफ्यूज कर देते हैं
1: जी।
0: नट्स वो चीज है जो कि आपको विटामिन मिनरल देते हैं, जैसे बादाम हो गए, उसमें विटामिन ई आ गया आपका, उसमें हेल्दी फैट आ गए, थोड़े बहुत प्रोटीन भी आ गए जो आपकी तबियत के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर आ गए अखरोट या वॉलनट जिसे कहते हैं, इसमें आपको विटामिन ई आया, ओमेगा आया, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा ब्राजील नट्स आ गया। अभी ब्राजील नट के लिए तो हिंदी नाम कोई है नहीं, ना ही कोई देसी नाम है उसका, उसे ब्राजील नट ही कहा जाता है। वो कि सेलेनियम रिच होता है, जिसको इन्फ्लेमेशन है, थायराइड का इशू है, उसके लिए वो बहुत फायदेमंद हो जाता है। वैसे ही जो कद्दू होता है, उसके बीज होते हैं पंपकिन सीड्स, बहुत ज्यादा आपकी तबीयत के लिए अच्छे होते हैं, उसमें मैग्नीशियम बहुत होता है। तो नट्स एंड सीड्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं? जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं, अभी जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं उसमें पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, मगर इसका दूसरा हिस्सा ये है कि उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है,
1: बढ़ जाता है।
0: अभी लोग क्या सोचते हैं, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे हैं, किशमिश खा लेते हैं, अंजीर खा लेते हैं, और एक से तो मन कभी किसी का भरता नहीं है, तो चलो मुट्ठी भर उठा लिया, और फिर खुद को ही बताते हैं कि क्या है इसमें, ड्राई फ्रूट और नट्स तो हेल्दी होते हैं तो खा लेते हैं, ये नहीं सोचते कि इससे आपकी शक्कर बहुत बढ़ सकती है, ब्लड शुगर लेवल।
1: जी जी।
0: और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपको पता होना चाहिए कि ड्राई फ्रूट और नट्स वो ऐसी चीजें हैं जो हेल्दी है, जो जरूरी है, मगर एक कम मात्रा में खानी चाहिए, ना कि वो चने सिंह की तरह आप पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके खाते रहे।
1: जी बिल्कुल। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना?
0: क्यों ना देश की धरती सोना उगले, ये थोड़ा सा सुन ले, क्योंकि मुझे लगता है हमारी देश की धरती है वो वाकई में हमें सोना देती है, जो मौसम की जो सब्जियां है, फल है, अनाज है, उससे हमारी सेहत तो वो ऐसे ही संभाल लेती है, तो उससे थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाए।
1: जी। उपकार फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद अदिति जी हमें बताइए, आपने बुजुर्गों की बात की और बच्चों के न्यूट्रिशन की बात की, यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है वो है महिलाओं के पोषण की। महिलाओं के पोषण के प्रति परिवार बहुत लापरवाही भी करता है, खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए प्रचुर मात्रा में पोषण की जरूरत पड़ती है, और ऐसी महिलाएं जो श्रमिक वर्ग से आती हैं और गाँव में खेतों में काम करती हैं, तो इनके बारे में बताइए क्या कुछ इनके लिए जरूरी होता है। कई बार ये भी होता है कि उनके पास खाने की चीजें नहीं होती है, ऐसी स्थिति में क्या कुछ खाएं?
1: तो सबसे पहले

0: इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं थोड़ा एक मुद्दा लाना चाहती हूँ यहाँ पे
1: जी
0: कि जिंदगी के हर पड़ाव पे जो आपको आहार या पोषण की जरूरत होती है उसके लिए अलग अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपको उस वक्त पे सही तरीके की मदद कर सकें। जैसे डॉक्टर्स में स्पेशलाइजेशन होता है वैसे डाइटिशियंस में भी होता है, और गर्भवती महिलाओं के लिए या आप शिशुपालन के वक्त आपको जो भी सहायता चाहिए लैक्टेशन के लिए वहाँ पे आपको अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपकी पूरी तरीके से इस समय में मदद कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी औरत को अकेले महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी की बात करें जिंदगी का एक बहुत अहम चरण है आहार, इसमें बहुत लोग सिर्फ प्रेगनेंसी की ओर से देखते हैं, तो मैं तो कहूंगी कि आपको आपका पोषण प्रेगनेंसी के पहले से देखना जरूरी है। जब भी आप सोचे कि आपको प्रेगनेंसी धारण करनी है ये आपको आपका पोषण उसके पहले से
1: शुरू हो जाना
0: संभालना
1: चाहिए।
0: चाहिए, मतलब आपके सही विटामिन्स मिनरल्स आपका आहार, क्योंकि पहले 3-4 महीने में आपको नौशिया थोड़ा सा उल्टी होना बाकी सब प्रेगनेंसी के इश्यूज आ सकते हैं,
1: जी
0: कुछ खाने आपको सूट नहीं करेंगे तो ये आप तब ठीक करने जाओगे तो ये मुश्किल पड़ जाता है। तो आपको आपके प्रेगनेंसी होने के पहले आपको थोड़ा सा ख्याल रखना खुद का जरूरी है, देखना जरूरी है कि आपके विटामिन मिनरल्स जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड ये सारी चीजें आपकी सही मात्रा में है या नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुद के लिए और बढ़ते हुए बच्चे के लिए खाने की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स में तीनों के वक्त खाना अलग अलग मात्रा में खाया जाता
1: जी
0: है, उसकी रेशोज भी अलग अलग होते हैं जिसकी प्रमाण होते हैं। अगर मैं एकदम सहज भाषा में बताऊं, जो मैंने थाली की बात की थी पहले जहां पे 1/4 धान है, 1/4 प्रोटीन है, आप थोड़ी मौसम वाले सब्जियां, फल और दही दूध सलाद ये थोड़ा सा खा ले तब भी आप आपकी सेहत का ख्याल रखोगे, ये बेसिक हो गया। अगर कोई आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपकी जरूरतें बढ़ सकती हैं
1: जी
0: जो कि आप संभाल सकते हो सिर्फ आहार के बलबूते पे।
1: जी ये यहाँ पर एक बात और है, एक तो माहवारी के समय महिलाओं के लिए और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, दूसरा मेनोपॉज के समय, क्योंकि
0: जी
1: उस समय भी हमने सुना है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और इसमें तीसरा एक मुद्दा है लड़कियों के लिए जो खेल की दुनिया में जाना चाहती हैं, खास तौर से लड़कियों के
0: जी
1: लिए। खेल की दुनिया में तो यूं लड़कों के लिए भी बहुत ज्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है, तो
0: बहुत
1: क्या
0: ज्यादा
1: स्पेशल कोई डाइट होती है?
0: जी, आप जो खेल में खेल रहे हो उस खेल के आधारित आपका पोषण जाता है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्या बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, आप कौन से एज ग्रुप में आप खेल रहे हो इसके बेसिस पे भी आपका खाना पूरी तरीके से बदलता है।
1: जी
0: जब हम स्पोर्ट्स वालों की बात करें तो उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनको विटामिन्स मिनरल्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि उनको परफॉर्मेंस पे ज्यादा है कि आप साल भर तो प्रैक्टिस कर लेते हैं मगर वो एक खेल आपको बता देता है कि आप सही खेले हो या आपने खुद का ख्याल सही से रखा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको अगर आप महिला है और खेल की दुनिया में आना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि आपको आपके आहार के बारे में देखना जरूरी है, आपका पोषण सही होना चाहिए, जो कि लोग तो स्पोर्ट्स के पीछे, स्पोर्ट्स अच्छे कोच हो, अच्छे ट्रेनिंग मिले इसके पीछे लग जाते हैं मगर आहार के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। ज्यादातर मैं ये देखती हूँ कि उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा कम रहती है या वो सही तरीके से नहीं खाते क्योंकि वो उस वय में है जहां पे सुंदरता भी बहुत जरूरी है, एक विशिष्ट रूप से दिखना भी जरूरी है और उनको खेलकूद में भी सही रहना है। और दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स में लड़कियां जाती हैं उनके हार्मोनल और माहवारी के इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वो सही तरीके से अपने खाने के ऊपर ध्यान नहीं देते।
1: तो किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है इन्हें?
0: तो इन्हें ज्यादातर सही वक्त पे खाना बहुत जरूरी होता है और सही वक्त पे सही मात्रा में, जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो और अभी आपकी ट्रेनिंग है तो आपको ट्रेनिंग के पहले कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लगते हैं, ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोटीन के ऊपर देखना जरूरी है, मगर आप पूरे दिन में

0: क्या खाते हो और कितना संतुलन आप मेंटेन करते हो ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको फाइबर की बहुत जरूरत होती है। प्रोटीन आपको नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, एकदम ज्यादा नहीं बट सही मात्रा में, जो कि आपको खाने से आराम से मिल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको आपका प्रोटीन मिल रहा है। विटामिन्स जैसे विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इस चीजों को भी आपको ध्यान देना पड़ता है। फिर अगर आपको इंजरी हो गई तब भी आपका पोषण बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि आपको रिकवरी जल्दी करनी होती है तो तब प्रोटीन की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। विटामिन मिनरल्स जैसे ओमेगा हो गया या विटामिन डी हो गया, ये बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी पड़ जाता है। तो खेल के हिसाब से आपका पोषण बदल जाता है, आप कौन से लेवल पे खेल रहे हो इसके ऊपर भी बहुत बदल जाता है, आपका खेल क्या डिमांड करता है। जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें आपके बॉडी का फैट परसेंटेज एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए,
1: जी
0: जो शरीर में चर्बी होती है वो एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से ही चलती है। आप ज्यादा करोगे तब आपके परफॉर्मेंस पे परिणाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हर खेल के हिसाब से थोड़ा सा पोषण बदला जाता है।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुने
0: जी,
1: कौन सा?
0: क्योंकि हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ना कोई सकदे इंडिया का बढ़िया सा गाना हो जाए।
1: सुनते ही ये गाना।

0: अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग अवस्था के लिए अलग अलग डाइटिशियन होते हैं, ये नई बात है हमारे श्रोताओं के लिए। और आपने जिक्र किया कि आप पेट की तमाम बीमारियों के बारे में डाइट तय करती हैं, पेट की तमाम समस्याओं के बारे में आप अवेयर करती हैं, जागरूक बनाती हैं हमारे श्रोताओं को। तो बताइए कि पेट की किस समस्या के लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए और कितना संतुलन होना चाहिए आहार में।
1: ज्यादातर मेरे पास आने वाले लोग होते हैं उनको एसिडिटी, ये बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जाती है
0: जी।
1: इसके अलावा किसी को डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, पचन क्रिया ठीक नहीं काम करती है, या किसी को आईबीएस आईबीडी ये थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। डाइजेशन रिलेटेड तो बहुत ज्यादा केसेस आ जाते हैं क्योंकि पेट आपका दूसरा दिमाग है, तो आपके दिमाग पे, संतुलन पे, आपके काम पे, सब पे असर पड़ने वाला है। और मुख्यतः क्या हो जाता है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो जो आप खा भी रहे हो ना वो शरीर को लगेगा ही नहीं।
0: जी जी,
1: छोटे छोटे बदलाव बहुत काम आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते कभी कभी। जैसे अगर मैं बोलूँ तो हर कोई चाहता है कि सुबह

0: शुरुआत हो एक कड़क प्याली चाय के
1: चाय से।
0: साथ,
1: हाँ
0: और वो
1: बिल्कुल।
0: चाय के साथ होती है फिर दो बिस्किट या फिर एक टोस्ट, और वो
1: हाँ
0: चाय भी आपकी एसिडिटी के लिए एक बहुत अच्छी दोस्त होती है।
1: जी
0: अगर एसिडिटी के इश्यूज हैं तो आपको सबसे पहले तो क्या आप सही वक्त पे खाते हो, और क्या ये वक्त आप हर रोज उसी वक्त पे खाते हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है।
1: अच्छा
0: दूसरी चीज, आप वो वक्त पे क्या खा रहे हो,
1: जी
0: जैसे आप बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाओगे, मसालेदार चीजें खाओगे, तो आपको एसिडिटी बढ़ने ही वाली है। और एसिडिटी ऐसी चीज है कि आपको एक दिन का उपाय नहीं है वो, आपको जो भी आप उपाय कर रहे हैं वो आपको करीबन 3 से 4 हफ्ते करना पड़ेगा,
1: जी
0: तब जाके आपकी एसिडिटी कहीं जाके कम हो सकती है। तो सही वक्त पे खाना, सही क्वांटिटी में खाना, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर मौसम में जो फल होते हैं, जैसे जब आपको एसिडिटी होती है, ज्यादातर मेलन्स, कलिंगड़ हो गया या फिर तरबूज हो गया, ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि वो ठंडा देता है, आपके पेट को राहत देता है। मगर ऐसा भी होता है कुछ लोगों को उससे भी तकलीफ होती है
1: जी ब्लोटिंग होने लगती
0: बहुत
1: है।
0: ज्यादा। जैसे ककड़ी ऐसी चीज है जो आपको फायदा दे सकती है मगर किसी को तकलीफ दे सकती है।
1: जी
0: तो आपकी शरीर को क्या जरूरी है ये देखना जरूरी है, और उस हिसाब से आपका आहार होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 3 मुद्दों पे ज्यादा ध्यान दोगे, आपकी नींद, आपका पानी और आपकी खाने का समय और मात्रा। ये 3 चीजें आपने संभाल ली और आपने छोटे छोटे क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा खा लिया पूरे दिन में, तो आप सही रहोगे, आपको एसिडिटी की दिक्कत कम होगी। और जितना हो सके थोड़ा स्वाद को दुय्यम स्थान देके पहले पोषण के ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी एसिडिटी आराम से संभल जाएगी।
1: इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है आईबीएस, तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए, मतलब ये सारी गैस, एसिडिटी, पित्त, आईबीएस, इन सब से राहत पाने के लिए खाने वाली कौन सी चीजें जिसे अपना दोस्त बनाएं, और कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें दूर भगा दें, बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: आईबीएस और आईबीडी थोड़ा एडवांस लेवल की पेट के इश्यूज हैं, जहाँ पे आपको लो फॉडमैप के खाने की जरूरत होती है। आपको डाइटिशियन के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके खाने में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। बाकी के जो आपने बातें की उसमें आपके खाने में ज्यादातर, जैसे मैंने कहा, कम मसालेदार, कम खड़े मसाले जहाँ यूज हो ऐसे खाने, कम मात्रा में कम तेल कम मसाले डाल के पकाए जाए और खाए जाए, तब आपको बहुत फायदेमंद देते हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि एसिडिटी और गैसेस के मामले में, कि आपकी दिन की शुरुआत और दिन का अंत, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब आप सबसे पहले क्या खा रहे हो
1: जी
0: और आपका रात का खाना वो पूरे दिन के सभी खाने में से थोड़ा हल्का हो और वो थोड़ा जल्दी हो, सोने के कम 2-2.5 से 3 घंटे पहले हो, ये बहुत जरूरी है।
1: जी जी बिल्कुल। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों की कितनी अहमियत है?
0: बहुत ज्यादा, बहुत कम लोगों को ये पता है कि मानसिक जो भी आप महसूस करते हो इसके लिए भी आपका आहार बहुत काम आ सकता है। बहुत बार ये होता है कि लोगों को विटामिन की कमियां होती है, मिनरल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी एंजाइटी ज्यादा हो जाती है,
1: जी
0: बेचैनी ज्यादा हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया और रील्स के
1: डिप्रेशन।
0: देख के लोग बड़ी आसानी से डिप्रेशन एंजाइटी के अल्फाज यूज कर लेते हैं, बट कई
1: जी
0: बार ये सिर्फ विटामिन और मिनरल की कमियों की वजह से होने वाली चीजें होती है, जहाँ पे आप थोड़े समय के लिए थोड़े से बेचैन हो जाते हो या आप काम पे ध्यान नहीं दे पाते। और जैसे ही आपने विटामिन मिनरल्स को सही कर दिया, आपको दिक्कतें कम हो जाती है। जब आपको कोई मानसिक बीमारी है जो कि डायग्नोस्ड हो और डॉक्टर ने आपको उसका डायग्नोसिस दिया हुआ हो, तो डायग्नोसिस के बेसिस पे भी आपका आहार बदलता है।
1: जी
0: जैसे कि आपको ADHD है, डिप्रेशन है, MDD है, तो हर एक बीमारी के हिसाब से आपका आहार थोड़ा थोड़ा बदल जाता है।
1: जी
0: मानसिक चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके खाने में क्या ज्यादा होना चाहिए, तो उसमें ज्यादातर यहाँ पे नट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है क्योंकि उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। प्रोटीन का बहुत महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे एडीडी है या एडीएचडी है, इसमें पैकेट फूड में जो रंग आते हैं वो उनके सिम्टम्स को बहुत ज्यादा

0: एग्रेवेट करते हैं, तो वो अवॉइड करना या नहीं खाना, उनसे दूर रहना या शक्कर से दूर रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फल सब्जी जितने विविध रंग के आप अपने प्लेट में रख सको वो उतना अच्छा। WHO बताता है कि हफ्ते में आपके कम से कम 30 इंग्रेडिएंट होने चाहिए। आप अनाज सब्जी फल या कोई धान है दाल है इसको गिन के देखिए क्या आप हफ्ते भर में 30 से ज्यादा इंग्रेडिएंट खाते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं।
1: अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर फल जो लोग खा नहीं सकते हैं, सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं, रात को देर से आते हैं, तो उनका ये सिद्धांत होता है कि शनिवार रविवार को बैठ के इकट्ठा फल खा लेते हैं और उस दिन खाना स्किप करते हैं या थोड़ा बहुत खाना खाते हैं अनाज, तो ये सही तरीका है क्या?
0: नहीं, हर चीज का एक रास्ता होता है। जैसे ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं जो सुबह 7 बजे निकलते हैं और 11 बजे 10 बजे आ जाते हैं, उनका एक सही उपाय है कि आप जहाँ काम करते हो ना वहाँ आजू बाजू में जो फल वाला हो उसके साथ जाके थोड़ी सी गपशप कर लो और उनको बता देना कि देखो भाई मुझे हर दिन का एक फल चाहिए। और ये मैंने किया हुआ है कि आप वो फल वाले से बात करो कि मैं हर दिन एक फल लेकर जाऊंगा, आपको वही सुबह मिल जाएगा और वो आपको याद दिलाएगा कि आपने फल लिया नहीं।
1: जी बिल्कुल, और होता उल्टा है कि लोग फास्ट फूड की दुकान ढूंढ लेते हैं और जाके फटाक से पैक करके खा लेते हैं, अमूमन यही होता है, वहां पर समोसा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, आइसक्रीम शॉप ढूंढ लेते हैं। तो भाई खाने का असर सेहत पर होता है, गाने का असर भी बहुत अच्छा असर होता है। कौन सा गाना सुनवाए आपकी पसंद का?
0: आप भी बता दीजिए कोई खाने के ऊपर गाना।
1: ऐसा गाना सुनते हैं जिसमें कि आइसक्रीम भी है और चॉकलेट भी है।
0: बढ़िया,
1: तो चलिए यही गाना सुनते हैं, फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।
2: चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियां, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहां, गुड़िया खिला।

0: अदिति जी, अभी एक बड़ा ही जरूरी मुद्दा है बच्चों में, खास तौर से, वो चाहे बच्चे हो चाहे बड़े भी, लेकिन बच्चों में ज्यादा है। इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो रहा है, बार बार किसी को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी होती है। तो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या कुछ खाना अपने जीवन में जोड़ ले, रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बताइए।
1: सही बात बोलूं तो आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए कोई अलग चीज़ करना ज़रूरी

0: नहीं होता।
1: जी
0: अगर आप अपने खाने को थोड़ा ध्यान से देखें, आपका खाना कहाँ से आ रहा है, आप कैसे बना रहे हो और किस तरीके से खा रहे हो, तो आपकी समस्या की राह यही है।
1: जी जी
0: अक्सर क्या हो जाता है, लोग जैसे मैंने कहा, जो मौसम में आपको फल सब्जियां मिल रही है वो नहीं खाते, बच्चे दूध नहीं पीते हैं या उनको खट्टी चीजें पसंद ही नहीं होती है। इसमें क्या हो जाता है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए या मजबूत करने के लिए आपको विटामिन सी चाहिए, तो ना नींबू जा रहा है यहाँ पे, ना
1: जी
0: संतरा जा रहा है, ना आप कोई विटामिन सी पेरू जा रहा है, तो इसमें आपको दिक्कतें आ जाती है। जैसे मैंने कहा, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी थालियां ना छोटी छोटी छोटी होती जा रही है, वही चार सब्जियां, वही दाल चावल, वही रोटी, हम अलग कुछ करने ही नहीं जाते, जिसके वजह से आप वो ही चार सब्जियों के गुण पाओगे, आपको
1: बिल्कुल
0: उसके आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे बारिश के मौसम में आपको सज्जन फली की पत्ते मिलते हैं, मुरिंगा जिसे कहा जाता है,
1: मुनगा
0: वो इतना आयरन
1: सिंचन।
0: रिच होता है, फाइबर रिच होता है, मगर कितने लोग जानते हैं। मुझे अक्सर पूछा जाता है इसे बनाया कैसे जाए, पर ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने बच्चों के खाने में भी डाल सकते हैं, रोटी में थोड़ा सा डाल दिया, दाल में थोड़ा सा डाल दिया, जैसे मैंने कहा कि आप ये चीज पे ध्यान दो कि आपके थाली में कितने रंग हैं, कितनी तरीके के इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो, और आप अपनी इम्यूनिटी को आराम से संभाल पाओगे।
1: जी बिल्कुल
0: आपको कोई भी काढ़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी अलग से दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर हम क्या करते हैं, हमें सबको ना शॉर्टकट बहुत पसंद होता है। तो चलो इम्यूनिटी बढ़ानी है, सर्दी खांसी होती है तो हल्दी का पानी बना देंगे, बट हम भूल जाते हैं हम भारतवासी हैं, हम हल्दी वैसे भी खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं,
1: जी जी जी
0: और हम जब हल्दी का पानी बनाते हैं हम अकेले हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डालेंगे, थोड़ा काली मिर्च भी डाल देंगे, वो एकदम गरम मसाले का पानी हो जाता है।
1: बिल्कुल। क्या कुछ ऐसे फूड भी हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें रोज मिलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है?
0: ज्यादातर अगर आप सब्जी और फलों के ऊपर ध्यान दें तो आपकी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वही चीज है जो हम कम खाते हैं। जैसे दिन में आपको कम से कम 200 से 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए,
1: जी
0: हम
1: जी
0: यहाँ पे 200-300 ग्राम चार लोगों के परिवार के लिए खाते हैं
1: बिल्कुल। एक पाव सब्जी लेके
0: बस।
1: बस मसाला डाल के बन
0: हाँ, और
1: जाती है।
0: उसमें ढेर सारा आलू, ढेर सारा प्याज और सब्जी बन गई, वहां पे दिक्कत आ जाती है।
1: जी बिल्कुल।
0: आप मेटाबॉलिज्म की बात करें तो आपको बेसिकली आपके खाने के संतुलन पे ध्यान देना जरूरी है, आप उसको कम ज्यादा करने नहीं जा सकते,
1: जी
0: आप
1: जी
0: उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं।
1: अदिति जी, आजकल एक फैशन हुआ है कि अपने वजन को कम करना है, कंट्रोल रखना है। लड़कियों में तो ये प्रवृत्ति बहुत देखी जा रही है कि दुबली पतली रखना, फिगर, जीरो फिगर। लड़के भी आजकल कम नहीं है, होड़ में शामिल है, और उसमें जिम संस्कृति आ गई है। हर तीसरा लड़का या तीसरा व्यक्ति जिम जाएगा। तो ये जो वर्कआउट है, वर्कआउट के पहले कितना आहार लेना चाहिए, वर्कआउट के बाद कितना आहार लेना चाहिए?
0: जी, वजन के पीछे भागना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा भागना थोड़ी सी गलत बात हो जाती
1: जी
0: है। सिर्फ वजन के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान सही में तंदुरुस्त है या नहीं। कभी कभी लोग वजन में थोड़े से हैवी होते हैं, मगर उनके बॉडी में मसल की मात्रा ज्यादा होती है और फैट परसेंटेज कम होता है।
1: जी
0: कई
1: जी
0: बार ऐसे होते हैं कि दुबले पतले होते हैं लोग, मगर उनका
1: जी
0: फैट परसेंटेज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है।
1: जी जी
0: इसके लिए हम कहते हैं कि सिर्फ वजन के आधार पे या BMI के आधार पे किसी की भी तंदुरुस्ती के ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते।
1: जी बिल्कुल
0: जब हम बात करते हैं वर्कआउट की, आज क्योंकि हम ऐसे दौर पे रहते हैं जहां बाहर की खेल कूद, ट्रैवल, ये सब थोड़ा सा कम हो गया है, जहां हम पहले चल के जाया करते थे, अभी एस्केलेटर्स हैं, बस है, रिक्शा है, बाइक है, तो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम कदम इस्तेमाल करते हैं वही कम है। लोग 1,000-2,000 पैदल इतना ही चल लेते हैं, उसके ऊपर वो चलते ही नहीं है। और इसके लिए जिम्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तरीके का शारीरिक व्यायाम भी उतना ही ज़रूरी है। तो जब आप जिम करते हो, जिम में आप क्या करते हो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक रूटीन होना ज़रूरी है। बस अखाड़े चले गए और आपको जो पसंद

0: किया, आपने कर लिया, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक ही समय या एक समय जो होता है, जिसे ये नहीं कहते कि 9 बजे तो 9 बजे जाओ, मगर सुबह के समय पे जाके वर्कआउट करो, तो एक वो टाइम फिक्स करना जरूरी है। जब भी आप वर्कआउट करने जाए तो वर्कआउट के पहले थोड़ा सा तो खाना जरूरी है, जैसे कोई भी फल खा लीजिए, या अगर आप नाश्ता कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, आइडियली डिनर के बाद तो वर्कआउट हम मना कर देते हैं, बट लंच या नाश्ते के बाद जो हम करते हैं वर्कआउट, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपको कभी भी वर्कआउट करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और जब भी वर्कआउट किया जाता है तब मसल टूटते हैं, उनको रीबिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। तो वर्कआउट के बाद आप कितने समय में क्या खाते हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वर्कआउट के बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा सही में होनी चाहिए, कि जो भी आप प्रोटीन इस्तेमाल करें, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चीला बना दीजिए, या कोई दाल एक कटोरी खा लीजिए, या थोड़ा सा पनीर ले लीजिए, या आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा ले लीजिए, तो आपका प्रोटीन थोड़ा सा संभल जाता है। मगर प्रोटीन के साथ थोड़ी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब आप फल इस्तेमाल करो या कोई भी धान्य इस्तेमाल करो, ये बहुत आसान कर देता है। और वर्कआउट के बाद 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपका खाना ये हो जाना चाहिए।
1: जी, एक गाना सुने।
0: जी,
1: कौन सा?
0: आप भी बता दीजिए कोई गाना।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: अदिति जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पित्त की समस्या है, आईबीएस की समस्या है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें मना करते हैं कि खट्टी चीजें मत खाओ, और नींबू तो खट्टा ही होता है, और नींबू लोगों को पसंद भी है, और ये कहते हैं कि नींबू के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। तो क्या करना चाहिए? मतलब अगर नींबू खाओ तो एसिडिटी बढ़ती है, नहीं खाओ तो दिक्कतें होती है, जिसमें संतरा, नींबू और बहुत सारे साइट्रस फ्रूट हैं शामिल।
1: मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान को देखना चाहिए कि उनको क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। जैसे आपने कहा, किसी किसी को नींबू से तकलीफ होती है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपको नहीं होती है, आराम से खा सकते हो। अगर आप सिर्फ नींबू की बात करें या विटामिन सी की बात करें, आपको वो चाहिए आपके लाइफ में या तबीयत के लिए, तो सिर्फ नींबू एक चीज नहीं है जहां से विटामिन सी मिल सकता है। अगर मैं बोलूं तो नींबू तो अक्सर गलत ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार नींबू काट के फ्रिज में रख देते हैं आधा, या नींबू काट के बहुत घंटे खुला रहता है। अगर विटामिन सी ऐसे खुला रख दिया तो
0: ओहो
1: वो खराब हो जाता है, निकल जाता है उसमें से।
0: जी,
1: तो आप सिर्फ खटास के लिए उसको खा रहे हो, विटामिन सी के लिए तो खा ही
0: ओहो
1: नहीं रहे हो।
0: जी,
1: वैसे ही नींबू आप एकदम गर्म उबलते हुए पानी में डालोगे तब भी आपका नींबू का फायदा नहीं होगा। नींबू सिर्फ खटास करेगा, वो विटामिन सी आपको नहीं देने वाला है। तो आपको नींबू किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए खाना बनने के बाद ऊपर से नींबू देते हैं। आप विटामिन सी की अगर बात करें तो नींबू छोड़ के भी आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। आप जैसे कीवी इस्तेमाल करें या संतरा इस्तेमाल करें। आपको अगर खट्टी चीजें मना की है तो आप पेरू का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होता। आप मीठा वाला कर ले लो,
0: अमरूद।
1: अमरूद, तो उसमें आपको अच्छा खासा विटामिन सी मिल जाएगा। जो बेल पेपर्स होते हैं, कैप्सिकम, वो भी आपको बहुत ज्यादा विटामिन सी भी दे सकते हैं। नींबू तो एक ही चीज है, आप संतरा, कीवी, ये सारी चीजें भी आराम से ले सकते हैं। कीवी देसी फल नहीं है, बट वो बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का। हमारे देसी ऑप्शंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे
0: आंवला,
1: आंवला एक चीज है। उसके अलावा पपनस, पोमेलो बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हिंदी का मुझे वर्ड नहीं पता है, बट वो भी ग्रेप फ्रूट बेसिकली, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। अमरूद का मैंने आपको बता दिया, तो
0: करौंदा,
1: करौंदा भी विटामिन सी है, बट करौंदा भी दो तीन तरीके के हैं। जैसे नॉर्थ में फालसा है, उसको भी करौंदा बोलते हैं, और महाराष्ट्र का भी करौंदा अलग है, तो उसमें थोड़े थोड़े अंतर है। आपको आंवले की तरह छोटे आंवले भी आते हैं जो भी विटामिन सी युक्त होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या जिसको स्टार ये बोलते हैं, स्टार आंवला, तो वो भी आप इस्तेमाल कर
0: जी,
1: सकते हो।
0: आंवले के भी तो बहुत सारे रूप हैं। आंवला लोग उबाल के खाते हैं, चटनी बना के खाते हैं, और अचार कहते हैं, वो भी फायदेमंद है। तो इसमें फायदे वाले तत्व तो किसमें होते हैं, बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जितने हो सके आप कम से कम उसको प्रोसेस करके खाए, उसमें सबसे ज्यादा फायदा है। मगर मैं समझती हूँ कि कच्चा आंवला खाना सबके लिए नहीं पॉसिबल है, तो आप जिस भी रूप से खा सकते हो थोड़ा बहुत खा लीजिए। उसको मुरम्बा बना के या मीठा करके वो अवॉइड कीजिए। चटनी चल जाएगी, अचार चल जाएंगे, बिना तेल के या कम तेल में बने हुए अचार चल सकते हैं, बट आंवले का जो सीजन है उसमें आप चटनी के रूप में उसको आराम से खा सकते हो।
0: जी, एक बात और अदिति जी, फलों के साथ कुछ लोग नमक का प्रयोग करते हैं, मसाला नमक आजकल प्रचलित है, या फिर काला नमक, खास तौर से संतरे में, नींबू के साथ भी, या और भी फलों के साथ खाते हैं, अनार में भी लोग नमक डाल के खाते हैं, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, सही है या गलत
1: वो
0: है?
1: लोग अक्सर इसे स्वाद के लिए खाते हैं, ठीक है। हम अभी इस दौर में जी रहे हैं जहां हम खाने में बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नमक की मात्रा जो बहुत ज्यादा है वो हमें बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज की प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। लोग सफेद नमक से मुड़ के अभी डेजर्ट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, मतलब हिमालय का नमक, या काला नमक, सेंधा नमक, और अलग अलग तरीके के नमक यूज कर रहे हैं। इसकी दिक्कत ये है ना कि इन नमक को टेस्ट नहीं किया जाता बहुत बार, इनमें क्या मिनरल्स है, विटामिन्स है, पता नहीं रहते। अगर आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज है या कोई मेडिकल इश्यूज है, तो ये नमक आपको तकलीफ दे सकता है। जो सफेद

0: नमक है, हमें पता है कि वो जानकार दुश्मन है, हमें पता है वो बुरा है, हमें पता है कि जरूरी है जिंदगी में, मगर हमें पता है कि कम खाना है। बट जैसे आप सेंधा नमक की बात करें या लूनी नमक या डेजर्ट सॉल्ट की बात करें या हिमालयन सॉल्ट की बात करें, वो नमकीन जो उसकी मात्रा होती है वो कम होती है, तो अक्सर वो हम
1: ज्यादा डाल
0: थाली
1: देते
0: में
1: हैं।
0: ज्यादा डालते हैं, तो वहां पे दिक्कत आती है और वो आपके इलेक्ट्रोलाइट इश्यूज या ब्लड रिपोर्ट्स को खराब कर सकता है, आपकी हेल्थ कंडीशन को एग्रेवेट कर सकता है। तो अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, कम नमक, टेबल सॉल्ट बेस्ट। आपको ना सॉल्ट लाइट की जरूरत है, ना आपको काला नमक, पिंक नमक, सेंधा नमक की जरूरत है।
1: जी,
0: अगर आप सेहत में ठीक हो, आप अलग-अलग नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर दिन के अंत में आपको ये देखना है पूरे दिन में नमक कितना खाया। अगेन, WHO रेकमेंड करता है कि 3 से 5 ग्राम नमक होना चाहिए, जो कि होता है 1 चम्मच। हम कितना खाते हैं? कम
1: जी,
0: से कम 4 से 5 चम्मच दिन के,
1: बिल्कुल,
0: तो
1: सब्जी में
0: आराम
1: भी,
0: से।
1: दाल में भी, बिल्कुल।
0: तो आपको क्या अलग रूप से फलों के साथ नमक खाना जरूरी है? नहीं।
1: जी बिल्कुल, अदिति जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी कारगर बातें आपने बताई हमारे श्रोताओं को, बहुत सारी जानकारी मिली। हमें भी उम्मीद है, हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा ये कार्यक्रम, क्योंकि इतनी सारी जानकारी साझा की है आपने।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में पोषण सप्ताह और पोषण माह के उपलक्ष्य में आप सुन रहे थे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी आप सुनेंगे आज ही के दिन अगले सप्ताह। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव।
1: केंद्र है, शाम के ठीक 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की सीआईडी जांच की निष्पक्षता पर फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पूछा कि डिजिटल साक्ष्यों को नष्ट कराने के आरोपों से घिरे अनुराग गुप्ता पर कार्रवाई करने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिर क्यों हिचक रहे हैं। श्री मरांडी ने कहा कि जिस अधिकारी की भूमिका पर ही जांच प्रभावित करने के गंभीर सवाल खड़े हों, उस पर कार्रवाई किए बिना सीआईडी की जांच और उसकी निष्पक्षता पर आखिर कैसे भरोसा किया जा सकता है। ईडी झारखंड, दिल्ली और कोलकाता में आज 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि टीएमसी के राज्यसभा सांसद मोहम्मद नदीमुल हक से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने यह दबिश दी है। सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले कंटेंट के प्रकाशन, अवैध वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध सौदों के जरिए फंडिंग से जुड़ी शिकायतों के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की है। रांची के कोकर इलाके में एक उर्दू समाचार पत्र के कार्यालय में भी ईडी की छापेमारी जारी है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज आपराधिक कानून और दुष्कर्म के प्रयास से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने स्पष्ट किया है कि रात के समय पीड़िता के घर में प्रवेश करना, उसके कपड़े उठाना और उसे पकड़ना दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं माना जाएगा। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा अभियुक्त को दी गई सजा को कम कर दिया है। धनबाद स्थित आई

टीआईएसएम के शोधकर्ताओं ने पानी की बर्बादी को कम करने वाला इनबिल्ट आरओ सिस्टम विकसित किया है। यह नई तकनीक पानी की बर्बादी को कम करता है और बचे हुए पानी का दोबारा इस्तेमाल करने में सक्षम है। भारतीय पेटेंट भी इस तकनीक को मिल गया है। इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने वाली रिसर्च

आंखों की कोरों से बरसता है दुख, छा जाते हैं उदासी के बादल और घनघोर घटाएं भिगो देती हैं सब कुछ। कभी कभी आसमान की मुंडेर से बजता है उदासी का वायलिन।

क्या किसी स्केल से नापा जा सकता है प्यार? कैसे कहें कि सही सही बयां हो जाए प्यार? अल्फाज नाप में जैसे कुछ कम पड़ जाते हैं, कई बार अल्फाज की बजाय खामोशी से काम लेना मुनासिब होता है।

जैसे आसमान पर चमके थोड़ी देर सूरज और फिर गुम हो जाए बादलों की ऊट में, जैसे पत्ते पर ठहरे पानी की बूंद और हवा का झोंका आकर उसे ढुलका दे, जैसे होंठों पर तैरे एक सूक्ष्म मुस्कान और फिर छा जाए गहरी उदासी, इतनी थोड़ी सी खुशी, इतना थोड़ा सा साथ।

आज के छाया गीत में थे ऐसे गाने जिनके दो संस्करण हैं और सुनने के आश्चर्य, कौतूहल और आनंद के लिए हमने किसी अप्रत्याशित मोड़ पर इन दोनों संस्करणों को आपस में जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता

0: महबूबा, आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर।

सायंकालीन सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 5:35 पर आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। शाम 6:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 6:02 पर ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम होगा खेती बारी। चर्चा होगी अरहर की खेती में कीट प्रबंधन पर, साथ ही चर्चा में सुनिएगा धान की खेती में कीट प्रबंधन। वार्ता आप सुनेंगे प्राकृतिक खेती पर, वार्ताकार हैं सुषमा श्रीवास्तव। कृषकों को संबोधित कार्यक्रम होगा ग्रामीण सभा शाम 6:30 से। चर्चा होगी पशुओं के लिए आहार व्यवस्था पर, आज की बात में अंतर्वर्ती खेती के लाभ। भेंट वार्ता आप सुनेंगे फल उद्यान पर, भेंट वार्ताकार हैं दिलीप कुमार पांडे, कृषि विशेषज्ञ पलामू, भेंट करता हैं संतोष कुमार। आज की नसीहत में मृदा में पर्याप्त नमी जरूरी, आज का मौसम और जानेंगे आज के बाजार का भाव इसी कार्यक्रम के अंतर्गत।

शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 7:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा बुनियाद। 7:45 पर कल्याणी कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता डेंगू कारण एवं निदान। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर आर के रंजन, फिजिशियन पलामू। भेंटकर्ता हैं संजय कुमार मिश्रा। शाम 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से हम प्रस्तुत करेंगे।

8:45 पर हिंदी में समाचार, 9:00 अंग्रेज़ी में समाचार, 9:15 पर उर्दू खबरें आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9:30 पर हम पुनः शामिल होंगे विविध भारती की प्रसारण सेवा में आकाशवाणी की मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। रात 10:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा को हम पेश करेंगे। रात 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेज़ी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारी ये सभा समाप्त होगी हमेशा की तरह रात 11:10 पर। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

0: घर आंगन सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों को प्रतिमा वर्मा का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही रागिनी कुमारी का भी प्यार भरा नमस्कार।
0: बहनों, घर आंगन में आज बातें होंगी घर और नौकरी की दोहरी जिम्मेदारियां। जी हाँ, घर और नौकरी की दोहरी जिम्मेदारियां निभाना आज के समय में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे अक्सर वर्क लाइफ बैलेंस कहा जाता है। दोहरी भूमिका को बिना मानसिक तनाव के निभाने के लिए कुछ व्यवहारिक उपाय मददगार साबित हो सकते हैं। बहनों, सबसे पहले बात करें तो योजना और समय का प्रबंधन, जिसे टाइम मैनेजमेंट भी कहते हैं। सबसे पहले आप टू डू लिस्ट बनाएं, जैसे सुबह या एक दिन पहले ही घर और ऑफिस के ज़रूरी कामों की एक सूची बना लें। प्राथमिकता तय करें, सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले निपटाएं और कम जरूरी कामों को बाद के लिए छोड़ दें। कल की तैयारी आज ही करें। सुबह की भागदौड़ से बचने के लिए बच्चों के कपड़े, टिफिन की तैयारी या ऑफिस बैग रात में ही तैयार कर लें।
1: उसके बाद परिवार का भी सहयोग चाहिए। घर के कामों को केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी ना समझें, जीवन साथी और बच्चों के साथ मिलकर काम बांटें। आउटसोर्सिंग, यदि बजट अनुमति देता है तो खाना बनाने, साफ सफाई या बच्चों को लाने ले जाने के लिए घरेलू सहायकों की मदद लें। ऑफिस में अपनी क्षमता से अधिक काम का बोझ न लें। अगर काम का दबाव बहुत ज़्यादा है तो अपने मैनेजर से खुलकर बात करें और सामाजिक समारोहों या अतिरिक्त घरेलू कामों के लिए भी अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को देखकर ही आप हामी भरें। तकनीकी और स्मार्ट वर्क का भी आप उपयोग कर सकती हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर या माइक्रोवेव जैसे उपकरणों का उपयोग करके भी आप समय को बचा सकती हैं। ग्रोसरी में भी आप ऑनलाइन सेवाएं ले सकती हैं। राशन के लिए सब्जी या बिलों का भुगतान ऑनलाइन करें ताकि बाज़ार जाने का समय भी आपका बचे और आप खुद के लिए भी समय निकालें और सेहत पर भी ध्यान दें। यदि आप खुद स्वस्थ और खुश रहेंगी नहीं रहेंगे तो दोनों जगह की जिम्मेदारियां प्रभावित होगी। अच्छी नींद लें और पौष्टिक आहार खाएं। दिन भर में कम से कम 15 से 20 मिनट का समय अपने पसंदीदा शौक जैसे संगीत सुनना, पढ़ना या वॉक करना, उसके लिए आप अवश्य निकालें।
0: बहनों, घर और नौकरी के बीच संतुलन रातों रात नहीं बनता, इसके लिए लगातार प्रयास और थोड़े लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। कभी कभी ऑफिस का काम छूट सकता है और

समय को सही तरीके से मैनेज करना ही इस दोहरी जिम्मेदारी की असली चाबी है। जब आप समय का सही प्रबंधन करते हैं तो ना सिर्फ अपना आपका काम कम समय में पूरा हो जाता है, बल्कि आपको मानसिक शांति मिलती है। घर और नौकरी को संतुलित करने के लिए हम कुछ व्यवहारिक डेली रूटीन प्लानर आपको बता रहे हैं, जो अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल सकते हैं। जैसे आप सुबह जल्दी उठें, शांत समय में चाय पिएं, योग या कसरत करें और दिन की योजना बनाएं, आपको मानसिक रूप से मजबूत रखेगा। घरेलू काम और तैयारी कर लें, बच्चों को तैयार करना, टिफ़िन और नाश्ता बनाना, सब्जियों को रात में ही काट कर रख लें तो अच्छी बात होगी। और ऑफिस के लिए निकलना तो यात्रा के समय का सही उपयोग करें, कोई अच्छा पॉडकास्ट सुने, गाने सुने और दिन की जरूरी ईमेल चेक कर लें। ऑफिस के समय आप क्या कर सकते हैं, इसे स्मार्ट वर्क करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण काम है ऑफिस पहुँचते ही सबसे पहले सबसे कठिन और ज़रूरी काम निपटाएं, इसमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। लंच और ब्रेक के समय डेस्क से उठकर खाना खाएं, सहकर्मियों से बात करें और थोड़ी देर के लिए काम से ध्यान हटाएं। शाम को जब आप लौटती हैं तो मीटिंग्स या काम कम जरूरी काम वाले काम करें, जैसे दोपहर के बाद का समय रूटीन फाइल्स ईमेल और मीटिंग्स के लिए रखें। शाम और रात का समय पूरी तरह परिवार और आराम के लिए। तो घर आप वापसी के समय ऑफिस का तनाव ऑफिस में ही छोड़ने की कोशिश करें, रास्ते में खुद को रिलैक्स होने का समय दें, परिवार के साथ समय बिताएं। शाम का समय आपके परिवार का होना चाहिए, तो बच्चों की पढ़ाई देखना, उनके साथ खेलना या जीवन साथी के साथ बातचीत करना, इस दौरान फ़ोन को खुद से दूर रखें। डिनर और अगले सुबह की तैयारी उस समय ही कर लें आप, रात का खाना बन खाएं और कल सुबह बनने वाले नाश्ते या कपड़ों की तैयारी कर लें। स्क्रीन फ्री टाइम और नींद ज़रूर लें, टीवी मोबाइल बंद करें, कोई किताब पढ़ें और गहरी और अच्छी नींद के लिए समय पर सो जाएं। समय बचाने के लिए तीन गोल्डन रूल्स हम आपको बता रहे हैं। कामों को क्लब करें, जैसे यदि ग्रोसरी का सामान लाना है तो हफ्ते में एक ही दिन जैसे शनिवार तय करें। रोज़ बाज़ार जाने का समय बचाएं। मल्टीटास्किंग से बचें, ऑफिस का काम करते समय घर की चिंता ना करें और घर पर रहते समय ऑफिस के ईमेल का जवाब ना दें। एक समय पर एक ही जगह ध्यान लगाने से काम जल्दी होता है। गैजेट्स की आप मदद लें, जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव या चॉपर जैसे छोटे छोटे टूल्स आपका कीमती समय बचा सकते हैं। आई बहनों, इसके बाद सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बहनों, इस प्यारे से गीत के बाद आइए आपको स्वाति सहाय की वार्ता सुनवाते हैं। स्वरोजगार अपनाएं और सशक्त बने।
1: तमाम श्रोताओं को आपकी बहन स्वाति सहाय की तरफ से नमस्कार। आज का मेरा विषय है स्वरोजगार अपनाएं और सशक्त बने, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त कदम। आज का युग परिवर्तन, अवसर और आत्मनिर्भरता का युग है, जहां हर व्यक्ति अपनी पहचान स्वयं गढ़ने की क्षमता रखता है। इस बदलते परिदृश्य में महिलाओं की भागीदारी केवल आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य बन चुकी है। भारत जैसे विकासशील देशों में महिलाओं की भूमिका केवल परिवार तक सीमित नहीं रही है, बल्कि वे आज समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। फिर भी अनेक महिलाएं आज भी आर्थिक निर्भरता, सामाजिक बंधनों और अवसरों की कमी के कारण अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाती। ऐसे में स्वरोजगार, जिसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, एक ऐसा माध्यम बनकर उभरता है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और आत्मविश्वासी बना सकता है। सदियों से महिलाओं ने अपने परिवार और समाज की आधारशिला को मजबूती दी है, परंतु अब समय आ गया है कि वे अपने सपनों को भी उतनी ही प्राथमिकता दें। स्वरोजगार इसी देश में एक सशक्त माध्यम है जो महिलाओं को अपनी प्रतिभा, कौशल और इच्छा शक्ति के बल पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। स्वरोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि यह आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सक्षम बनाता है, बल्कि उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने की शक्ति भी देता है। जब एक महिला अपने प्रयासों से कुछ हासिल करती है, तो वह अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानती है और समाज में एक नई पहचान स्थापित करती है। स्वरोजगार का अर्थ है अपने कौशल, ज्ञान और संसाधनों का उपयोग कर स्वयं के लिए रोजगार उत्पन्न करना। यह न केवल आय का स्रोत है, बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। जब महिलाएं स्वरोजगार अपनाती हैं, तो वे न केवल अपने जीवन को बदलती हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी सकारात्मक दिशा देती हैं। सबसे पहले, स्वरोजगार महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होती है। उसे किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, आज कई महिलाएं सिलाई, ब्यूटी पार्लर, ऑनलाइन व्यवसाय, हस्तशिल्प, खाद उत्पाद जैसे अचार, पापड़ आदि के माध्यम से अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। यह न केवल उनकी आय बढ़ाता है, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है आत्मविश्वास का विकास। जब एक महिला अपने प्रयासों से कुछ हासिल करती है, तो उसमें आत्मविश्वास स्वतः बढ़ता है। वह समाज में अपनी पहचान बनाती है और अपने अस्तित्व को महसूस करती है। स्वरोजगार महिलाओं को यह अवसर देता है कि वे अपनी प्रतिभा को पहचाने और उसे निखारे। तीसरा, स्वरोजगार सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम। जब एक महिला सफल होती है, तो वह अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बनती है। इसमें समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह, जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण है, जहां महिलाएं मिलकर छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करती हैं और सामूहिक रूप से आगे बढ़ती है। वर्तमान समय में सरकार भी महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जैसे स्टैंड अप इंडिया योजना, मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने व्यवसाय को शुरू और विस्तार कर सके। स्वरोजगार के क्षेत्र में कुटीर उद्योग महिलाओं के लिए एक अत्यंत सुलभ और प्रभावी विकल्प है। कुटीर उद्योग ऐसे छोटे स्तर के उद्योग होते हैं, जिन्हें महिलाएं अपने घर से ही सीमित संसाधनों के साथ आसानी से शुरू कर सकती, जैसे सिलाई कढ़ाई, अगरबत्ती निर्माण, अचार पापड़ बनाना, हस्तशिल्प, बुनाई, मिट्टी के बर्तन या सजावटी वस्तुएं तैयार करना आदि। इन कार्यों में अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती और स्थानीय बाजारों के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी इन उत्पादों की बिक्री की जा सकती है। कुटीर उद्योग महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उनके कौशल को पहचान दिलाने का माध्यम भी बनते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह उद्योग महिलाओं के लिए रोजगार का एक अस्थायी साधन प्रदान करते हैं जिससे वे अपने परिवार की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे पाती हैं और समाज में अपनी एक सशक्त पहचान स्थापित करती हैं। डिजिटल युग ने भी महिलाओं के लिए नए अवसर खोले हैं। आज महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न, मीशो, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं को देश विदेश तक पहुंचा सकते। इससे उन्हें बाजार की सीमाओं से बाहर निकलने का अवसर मिलता है। श्रोता मित्रों, हम आपको बताते चले, विश्व भर में ग्रामीण महिलाओं को अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों की सीमित पहुंच जैसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कई गैर सरकारी संगठन कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से आजीविका के अवसर प्रदान करके इस स्थिति को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। ये प्रयास महिलाओं को अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य बनाने में मदद करते हैं और ग्रामीण समुदायों में अस्थायी बदलाव ला रहे हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के पास अपने जीवन को बेहतर बनाने के सीमित अवसर होते हैं। शिक्षा, कौशल या आय के अवसरों की कमी के कारण कई महिलाएं गरीबी में फंसी रहती हैं। उनसे आम तौर पर घरेलू कामकाज, बच्चों की देखभाल और पारिवारिक खेती में मदद करने की अपेक्षा की जाती है, जिससे उनके पास व्यक्तिगत विकास या रोजगार के लिए बहुत कम समय बचता है। कई मामलों में ग्रामीण लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच बहुत कम होती है। वे पूरे घर के कामों में मदद करने के लिए अक्सर जल्दी ही स्कूल छोड़ देती हैं। परिणाम स्वरूप उनकी पूरी क्षमता का विकास नहीं हो पाता और वे आर्थिक रूप से अपने परिवार पर निर्भर रहती हैं। कौशल और आय अर्जित करने महिलाओं को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या पूंजी, पैसे की कमी होती है, क्योंकि व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रारंभिक निवेश आवश्यक होता है। इसके अलावा पारिवारिक जिम्मेदारियां जैसे बच्चों की देखभाल और घर का काम महिलाओं के समय और ऊर्जा को सीमित कर देती हैं। कई बार समाज की संकीर्ण सोच और सहयोग की कमी भी उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। उचित प्रशिक्षण, व्यवसायिक ज्ञान और बाजार की जानकारी का अभाव भी एक बड़ी बाधा बनता है। डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जानकारी न होना भी आज के समय में पीछे कर सकता है। इन सब के बावजूद यदि महिलाओं को सही मार्गदर्शन, परिवार का सहयोग और आत्मविश्वास मिले तो वह इन चुनौतियों को पार कर स्वरोजगार में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। शिक्षा भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि महिलाओं को सही शिक्षा और प्रशिक्षण मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकती हैं। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम महिलाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करते हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि स्वरोजगार महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का एक प्रभावी और अस्थायी माध्यम है। यह उन्हें आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी समाज और राष्ट्र का समग्र विकास संभव। इसलिए आज आवश्यकता है कि हर महिला अपने भीतर की क्षमता को पहचाने, आत्मनिर्भर बने और यह संकल्प ले कि हम सदैव आत्मनिर्भर रहेंगे और स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाए। साथ ही समाज को यह भी समझना होगा कि महिलाओं का सशक्तिकरण केवल एक आवश्यकता नहीं बल्कि एक अनिवार्यता है। जब महिला सशक्त होती है तो परिवार सशक्त होता है और जब परिवार सशक्त होता है तो राष्ट्र सशक्त बनता है। धन्यवाद।
0: बहनों, अभी आप सुन रही थी स्वाति सहाय की वार्ता, विषय था स्वरोजगार अपनाएं और सशक्त बने। और अब बात करते हैं महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत क्यों रहें। बहनों, महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना ही चाहिए क्योंकि वे ही परिवार और समाज का आधार है। पौष्टिक खान पान, नियमित जांच और मानसिक शांति के कई गंभीर बीमारियों से आप बच सकती हैं। संतुलित आहार लें, नियमित जाँच करवाएं, सक्रिय जीवन जिए और तनाव मुक्ति करें लें। जैसे संतुलित आहार, आयरन, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर भोजन लें। अपने खाने का ध्यान रखें कि आप क्या खाना खा रही हैं और क्या आपको नहीं खाना चाहिए। साल में एक बार संपूर्ण स्वास्थ्य जांच जरूर करवाएं। रोजाना कम से कम 30 मिनट योग या सैर जरूर करें। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और पूरी नींद लें। बहनों, महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएँ और नियम भी बनाए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत महिलाओं को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाती हैं।
2: स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ भी मिलता है जननी सुरक्षा योजना के द्वारा।

नैपकिन वितरण भी है, सुरक्षा और सहायता भी है इसमें, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, पोषण और जागरूकता के प्रति भी ध्यान दें, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों को मुफ्त पौष्टिक सूखा राशन और आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां भी दी जाती है। तो बहनों, इसी चर्चा के बाद हमारा समय भी आपसे विदा लेने का हो चला है, इसलिए बातें आज बस यहीं तक। तो इसी के साथ कार्यक्रम घर आंगन से दीजिए रागनी कुमारी और प्रतिमा वर्मा को अनुमति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रदेश भाजपा भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता के खिलाफ आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लेने, दोषियों की गिरफ्तारी और मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कल से 4 दिवसीय चरणबद्ध तरीके से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने बताया कि कल रांची, दुमका, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर और गढ़वा में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रांची में आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू करेंगे, जबकि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी दुमका में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। नालसा, नई दिल्ली और झालसा रांची के निर्देश पर आज लोहरदगा में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्रामीणों से बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और उन्हें नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रखने की अपील की गई। साथ ही कानूनी अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1098, 100 और 112 पर सूचना देने का आग्रह किया गया। सरायकेला खरसावां पुलिस ने डकैती की एक बड़ी साजिश को वारदात से पहले ही नाकाम कर दिया है। पुलिस ने चौका थाना क्षेत्र से डकैती की योजना बना रहे 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, गोली और 3 दोपहिया वाहन समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। दुमका जिले में लगातार बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है। इससे सब्जी और खासकर फूल गोभी की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने बताया कि खेतों में पानी जमा होने के कारण पौधों की जड़ें गल गई हैं और बड़ी संख्या में पौधे सड़ने लगे हैं। इससे किसानों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के पुत्र श्रेयस ने आज पूरे विधि विधान के साथ गिरिडीह स्थित बराकर नदी के तट पर अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन किया। इस मौके पर उनके परिजन, रिश्तेदार और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है

0: खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम ग्रामीण भाइयों को रागनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही प्रतिमा वर्मा का भी नमस्कार।
0: स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम खेती बाड़ी में। ग्रामीण भाइयों, आज हम बातें

प्रमुख कीट भी हैं ग्रामीण भाइयों, जैसे फली छेदक इल्ली, फली मक्खी, माहू और चूसक कीट। फली छेदक इल्ली की बात करें तो यह कली, फूल और हरी फलियों को खाकर दानों को नष्ट करती है, और फली मक्खी इसकी सुंडी फलियों के अंदर छिपकर दानों को खाती है। माहू और चूसक जो कीट है, यह कोमल अंगों का रस चूसकर पौधों को कमजोर करते हैं। समेकित कीट प्रबंधन।

छिपे हुए कीट और उनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। यांत्रिक नियंत्रण में खेत में 50 से 60 पक्षी आश्रय प्रति हेक्टेयर लगाए ताकि पक्षी इल्लियों को खा सके और हाथ से बड़ी इल्लियों को चुनकर नष्ट करें। जैविक नियंत्रण की बात करें तो फूल आने की अवस्था पर नीम का तेल 2% या NPV का 0.1% घोल छिड़कें। रासायनिक नियंत्रण, अधिक प्रकोप होने पर डाइमेथोएट 30% EC या इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG की अनुशंसित मात्रा का

अरहर की फसल को फली छेदक पत्ती लपेटा और मक्खियों जैसे कीटों से बचाने के लिए समय पर रासायनिक और जैविक उपाय भी करें। किसान भाइयों, जैविक और यांत्रिक प्रबंधन करने के लिए आप कुछ ऐसी बातों का प्रयोग करें, जैसे कीट भक्षी पक्षियों के बैठने के लिए खेत में 20 से 25 डी आकार की कुटिया प्रति हेक्टेयर लगाएं। तितलियों की संख्या नियंत्रित करने के लिए प्रकाश जाल यानी लाइट ट्रैप लगाएं। फली छेदक की रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप 10 से 12 प्रति हेक्टेयर की दर से स्थापित करें। अरहर की पंक्तियों के बीच सूरजमुखी या खेत की सलाह के अनुसार अन्य अंतर्वर्ती फसलें

है। इसके नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफॉस 2 ml प्रति लीटर या एस्मिनोसैट 45% AC का उपयोग करें। और जो कीट है पत्ती लपेटा कीट, ये पत्तियों के बचाव के लिए ट्रेजोफॉस दवा की 15 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर

0: और जो सफ़ेद मक्खी और रस चूसक जो कीट है, उसमें आप इमीडा क्लोरोपीरिट की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ये हुई बातें अरहर में कीट प्रबंधन की।
1: किसान भाइयों, अरहर की फसल में फली छिदक और इल्लियों के नियंत्रण के लिए क्लोरेंटा नीली प्रोले 18.5% एसी या एमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव सबसे असरदार माना जाता है। और अब आइए सुषमा श्रीवास्तव की वार्ता आपको सुनवाते हैं।

मोटे अनाजों का खेती में महत्व एवं इसके पौष्टिक तत्व। जी हाँ किसान भाइयों, हमारा राज्य झारखंड, कंकरीली पथरीली भूमि और ढालुआ जमीन यहाँ काफ़ी मात्रा में विद्यमान है। यहाँ अधिकतर खेतिहर कृषक निवास करते हैं और खेती पारी करके अपनी जीविका चलाते हैं। हमारे झारखंड में सिंचाई सुविधा उतने तादाद में नहीं है जितना आवश्यकता है और कभी कभी अनावृष्टि की स्थिति भी बन जाती है। इसके फलस्वरूप अनाज उत्पादन काफ़ी प्रभावित होता है, साथ ही कृषि कार्यों में लगे किसान भाइयों को भारी क्षति भी उठानी पड़ती है। इसके लिए हमारे यहाँ जो भूमि उपलब्ध है, बहुत भूमि जो है पड़ती रह जाती है, क्योंकि उतने सिंचाई के साधन नहीं हैं कि हर खेत में हम फसल लगा सकें। तो वैसे भूभाग में आप मोटे अनाजों की खेती कर सकते हैं। खेती में मोटे अनाज का महत्व बहुत अधिक इसलिए है क्योंकि ये कम पानी और कम लागत में बम्पर पैदावार देते हैं। खेती में मोटे अनाजों के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। किसान भाइयों, कम पानी की आवश्यकता, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और रागी जैसी फसलें सूखे की स्थिति को आसानी से सहन कर लेती हैं और इन्हें बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। कम लागत और जोखिम, इन फसलों में खाद, कीटनाशक और अन्य कृषिगत लागत बहुत कम आती है जिससे किसानों का वित्तीय जोखिम घट जाता है। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल, जी हाँ किसान भाई, बदलते मौसम और अत्यधिक तापमान में भी ये फसलें आसानी से जीवित रह लेती हैं और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। बंजर और सीमांत भूमि का भी इसमें उपयोग हो जाता है। इन्हें उपजाऊ जमीन के अलावा कम उपजाऊ, असिंचित अथवा कंकरीली पथरीली भूमि पर भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। जी हाँ श्रोताओं, जनसंख्या विस्फोट और खाद्य मांगें हमेशा साथ साथ बढ़ती रहती हैं। परंपरागत रूप से हम विभिन्न प्रकार के मोटे अनाज का सेवन करते हैं। शहरी जीवन शैली ने हमारे दैनिक भोजन में मोटे अनाज के संयोजन को शामिल न करके संतुलित आहार का महत्व कम कर दिया है। मोटे अनाज के उपयोग का तरीका देश की कैलोरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बदल गया है। हालांकि मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन यह अन्य अनाजों के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। मूल्यवान सूक्ष्म और वृहद पोषक तत्वों से भरपूर होने के बावजूद इसका महत्व गौण है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति मोटे अनाज की खपत 44.6 किलोग्राम प्रति वर्ष से घटकर 38.5 किलोग्राम हो गई। राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट बताती है कि अनाज और बाजरा की औसत खपत में कमी आई है, लेकिन यह अनुशंसित आहार भत्ता से अधिक थी। रागी, रागी को अंग्रेजी में फिंगर मिलेट भी कहा जाता है। रागी को भारतीय मूल का माना जाता है और यह एक बहुमुखी बाजरा है जिसमें कैल्शियम की मात्रा 344 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होती है। किसी अन्य अनाज में इसका कैल्शियम नहीं पाया जाता है। रागी में आयरन की मात्रा 3.9 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में होती है, जो बाजरा को छोड़कर अन्य अनाजों से अधिक है। मधुमेह रोगियों के लिए रागी को पौष्टिक आहार के रूप में अनुशंसित किया जाता है। रागी में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाता है। इस अनाज में मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण कई अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इनमें से कुछ अमीनो अम्ल अधिकांश अन्य अनाजों में कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें फास्फोरस की मात्रा भी अधिक होती है।
किसान भाइयों, परंपरागत रूप से रागी का उपयोग शिशु आहार में दलिया आदि के रूप में किया जाता है। अब रागी बर्मिसेली एक इंस्टेंट फूड बाजार में उपलब्ध है। रागी से रोटी, डोसा, दलिया, बिस्कुट और स्वादिष्ट लड्डू भी बनाए जा सकते हैं। बाजरा, जी हाँ किसान भाइयों, बाजरा को हिंदी में बाजरा और तमिल में कम्बू कहते हैं। बाजरा का उपयोग विभिन्न औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है। बाजरे के 100 ग्राम खाने योग्य भाग में 11.6 ग्राम प्रोटीन, 67.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 8 मिलीग्राम आयरन और 132 माइक्रोग्राम कैरोटीन होता है, जो हमारी आँखों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक। हालांकि इसमें फाइटिक एसिड, पॉलीफेनॉल और इमाइलेज अवरोधक जैसे कुछ जीवाणुरोधी तत्व होते हैं, लेकिन पानी में भिगोने, अंकुरण और अन्य खाना पकाने की प्रक्रियाओं में से पोषक तत्व कम हो जाते हैं। बाजरा हमारे देश में जहाँ भी उगाया जाता है वहाँ भोजन, पशु आहार और चारे के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उपयोग होता है। बाजरा विटामिन बी और पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर और मैग्नीज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह ग्लूटेन मुक्त है और गेहूं से एलर्जी वाले लोगों के लिए आदर्श माना गया है। जी हाँ किसान भाइयों, बाजरा चावल और गेहूं की तुलना में पोषण के मामले में बेहतर पाया गया है और हमारे देश भारत में किए गए एक शोध में यह बात सामने आया है कि बाजरा और दालें गेहूं के आहार की तुलना में मानव विकास को बढ़ावा देने में कुछ हद तक अधिक प्रभावी होते हैं। ज्वार, जी हाँ किसान भाइयों, ज्वार हमारे राज्य का एक महत्वपूर्ण अनाज है। अन्य मोटे अनाजों की तुलना में ज्वार का औद्योगिक उपयोग कहीं अधिक है। इसका उपयोग मादक पेय पदार्थों में भी किया जाता है। रोटी बनाने के उद्योग में गेहूं ज्वार के मिश्रण का प्रयोग होता है। व्यावसायिक शिशु आहार उद्योग ज्वार, लोबिया और ज्वार सोयाबीन के मिश्रण का उपयोग करते हैं। इसमें 10.4 ग्राम प्रोटीन और 66.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 2.7 ग्राम फाइबर और अन्य सूक्ष्म एवं बृहद पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। आहार फाइबर का महत्व, जी हाँ किसान भाइयों, अब आइए आपको बताते हैं इसका क्या महत्व है हमारे मानव जीवन पर। आहार फाइबर को पौधों की कोशिकाओं का वह घटक माना जाता है जो आहार में मौजूद होता है। आहार फाइबर के स्वास्थ्य लाभ असंख्य हैं। आहार फाइबर में पानी सोखने और बल्किंग एजेंट के रूप में कार्य करने की क्षमता होती है। यह पाचन तंत्र में भोजन के तेजी से पाचन में सहायता करता है और बृहदान्त्र में मल के ठहराव के समय को कम करता है। यह पित्त लवण को बांधकर कोलेस्ट्रॉल के नुकसान को बढ़ाने में मदद करता है और हाइपोकोलेस्ट्रोमिक एजेंट के रूप में भी शरीर में कार्य करता है। इसलिए हृदय रोग के आहार प्रबंधन में यह काफ़ी उपयोगी माना गया है। अन्य अनाजों की तुलना में चावल में आहार फाइबर का प्रतिशत सबसे कम होता है। ज्वार में 89.2%, बाजरा में 122.3% और रागी में 113.5% आहार फाइबर पाया जाता है। मानव आहार में कैल्शियम का महत्व, जी हाँ किसान भाइयों, एशिया और अफ्रीका में महिलाओं द्वारा कैल्शियम का सेवन अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान कैल्शियम की कमी के कारण शिशु की हड्डियों का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान अपर्याप्त कैल्शियम सेवन से माँ का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, क्योंकि माँ की हड्डियों से कैल्शियम भ्रूण के विकास और स्तन दूध उत्पादन में उपयोग हो सकता है। यदि हम मोटे अनाजों के पोषण मूल्य का विश्लेषण करें तो रागी और ज्वार कैल्शियम से प्रचुर मात्रा में भरपूर होते हैं और आहार में ये काफ़ी सहायक होते हैं। मोटे अनाज आधारित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, किसान भाइयों, भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का 1/4 हिस्सा मक्का, ज्वार और अन्य बाजरा से आता है और देश की खाद्यान्न अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। पारंपरिक पाक विधियों के अलावा इनका

योग मुख्य रूप से शिशु आहार और अनमाल्टेड खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किया जाता है। ज्वार का उपयोग ग्लूकोज और अन्य पेय पदार्थों के निर्माण में होता है। रागी और गेहूं मिश्रित सेवई बाजार में इंस्टेंट फूड के रूप में ये काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पोषक तत्वों की कमी कैसे करें? पफिंग, रोस्टिंग, स्प्राउटिंग, सोकिंग और माल्टिंग जैसी कुछ पारंपरिक खाद्य प्रसंस्करण विधियों से बाजरे की चिपचिपाहट में वांछनीय परिवर्तन आया है। माल्टिंग की प्रक्रिया के दौरान चिपचिपाहट में अधिकतम कमी आती है। अनाज के अंकुरण और धूप में सुखाने के बाद अधिकांश अवांछित एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। इस मिश्रण में इमाइलेज और चिपचिपाहट बिना माल्टेड अनाज के मिश्रण की तुलना में काफ़ी कम होती है। माल्टेड मोटे अनाज से शिशु आहार और वृद्धावस्था पोषण दोनों में लाभ मिलता है। इस प्रकार किसान भाइयों, हम जिस राज्य में जैसे झारखंड राज्य में रहते हैं तो यहाँ की भूमि, यहाँ की मिट्टी मोटे अनाजों के लिए काफ़ी अनुकूल है। और चूँकि वर्षापात हमारे क्षेत्र में, झारखंड क्षेत्र में कम होता है, कभी अनावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि, जिसके चलते हमारी परंपरागत फसलें मर जाती हैं। इसलिए आप मोटे अनाजों की खेती करके इससे अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं और अपने परिवार की जीविका को आसानी से चला सकते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे विंध्यवासिनी देवी के गाए लोकगीत। और कार्यक्रम में अब हम बातें करते हैं धान की खेती में कीट प्रबंधन की। ग्रामीण भाइयों, धान की फसल को तनाछेदक और भूरा फुदका जैसे कीटों से बचाने के लिए समेकित कीट प्रबंधन IPM अपनाना सबसे असरदार और सुरक्षित तरीका है। सबसे पहले कीट की पहचान कैसे करेंगे? तो तनाछेदक जो कीट है, इसकी सुंडी तने के अंदर घुसकर पौधों को खोखला करती है। इससे कल्ले निकलते समय गोभ सूख जाती है डेड हॉट, और बाली आने पर वह सफ़ेद हो जाती है। भूरा फुदका भी इसी तरह का एक कीट है। यह पौधे का रस चूसकर उसे सुखा देता है, जिससे खेत में धब्बे नुमा फसल सूखने लगती है। हिस्पा और पत्ता लपेटक, ये जो कीट है, ये पत्तियों को खुरच कर या सी कर नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पत्तियां सूखने लगती है।
1: जैविक और यांत्रिक नियंत्रण भी हम आपको बता दें, रोपाई और निगरानी जरूरी है। खेत के समय में रोपाई करें और नियमित निगरानी रखें। मेड़ों को घास फूस से मुक्त रखें। कीटों की निगरानी और रोकथाम के लिए प्रति एकड़ 5 फेरोमोन ट्रैप और रात में कीटों को आकर्षित करने के लिए लाइट ट्रैप यानी प्रकाश प्रपंच लगाएं। ट्राइकोडर्मा जैपेनिकम जैसे परजीवी अंडों का उपयोग करें या नीम के तेल आधारित उत्पादों का छिड़काव करें। रासायनिक नियंत्रण और सुरक्षा सावधानियां भी आपको हम बता दें। दानेदार कीटनाशक का इस्तेमाल करें। तनाछेदक के शुरुआती प्रकोप या मिट्टी के कीटों की रोकथाम के रोपाई के 20 से 25 दिन बाद यूरिया के साथ फटेरा यानी क्लोरेंटल पोल 0.4% GR 4 किलोग्राम या रिजेंट

0: फिप्रोनिल 0.3% GR 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से उपयोग कर सकते हैं।
1: और इसकी सावधानी में भी आप बरत सकते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब कीटों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर यानी लगभग 10% से अधिक फसल प्रभावित हो। एक ही दवा का बार बार उपयोग न करें बल्कि बदल बदल कर प्रयोग करें ताकि कीटों में सहनशीलता न बढ़े। तो ग्रामीण भाइयों, इस चर्चा के बाद अब हमारा समय भी आपसे विदा लेने का हो चला है, इसलिए बात आज यहीं तक। तो इसी के साथ कार्यक्रम खेतीबाड़ी से अब दीजिए रागनी कुमारी और
0: प्रतिमा वर्मा को
1: अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम आप सुन रहे थे खेतीबाड़ी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: ग्रामीण सभा सुनने वाले तमाम श्रोताओं को प्रतिभा वर्मा का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही रागनी कुमारी का भी नमस्कार।
0: बातें सबसे पहले इस कार्यक्रम में पशुओं के लिए आहार व्यवस्था की। किसान भाइयों, खेती के साथ आप पशुपालन तो करते ही हैं, तो पशुओं के लिए सही आहार व्यवस्था क्या होनी चाहिए या संतुलित पशु आहार क्या होने चाहिए, यह हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे और आपको इसकी जानकारी भी ज़रूरी है। इसमें हरा चारा, सूखा चारा, दाना, कंसंट्रेट, खनिज लवण और साफ पानी का सही तालमेल होना चाहिए। संतुलित आहार के मुख्य भाग क्या हैं? तो हरा चारा आप ले सकते हैं, बरसीम, ज्वार, बाजरा या नेपियर घास, इसमें विटामिन और नमी मिलती है। सूखा चारा ले सकते हैं, गेहूं का भूसा, धान का पुआल या ज्वार बाजरे की कड़वी। दानेदार मिश्रण में आप लीजिए मक्का, जौ, चना, बिनौला या सरसों की खली या चोकर। और खनिज लवण में मिनरल मिक्सचर लें, हड्डी की मजबूती और पाचन के लिए साधारण नमक और खनिज मिश्रण। स्वच्छ पानी आप पीने के लिए दिन भर ताज़ा और साफ पानी दें।
1: कुछ ज़रूरी बातें भी हैं ग्रामीण भाइयों, जैसे पशुओं को उम्र और उनके काम दूध भार के हिसाब से खाना दें। सड़ा हुआ या फफूंद लगा चारा बिल्कुल ना दें। खाने के बर्तन आप रोज़ साफ करें।

इसकी खुराक में यहाँ पशुओं द्वारा भूख को शांत करने के लिए एक समय में जो भोजन खाया जाता है आप उसे खुराक कहते हैं ग्रामीण भाइयों। और भोजन की वह आवश्यक मात्रा जिसे पशु 24 घंटे के दौरान खाते हैं आहार कहलाती है। ऐसा आहार जो पशु को आवश्यक पोषक तत्वों प्रोटीन का वसा कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण विटामिन युक्त का उचित अनुपात और मात्रा में प्रदान करें जिससे कि पशु की एक दिन की बढ़वार स्वास्थ्य दूध उत्पादन प्रजनन आदि बनाए रखें। और पशु का शरीर 75% जल 20% प्रोटीन 5% खनिज पदार्थों और 1% से भी कम कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। शरीर की संरचना और आयु और पोषण का बहुत प्रभाव होता है। बढ़ती उम्र के साथ जल की मात्रा में कमी परंतु वसा में वृद्धि होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे नीलम सहाय और प्रियंवदा सिंह के गाए लोकगीत। इसके बाद आपको सुनवाते हैं भेंटवार्ता फल उद्यान। इस विषय पर भेंटवार्ताकार हैं कृषि विशेषज्ञ पलामू के दिलीप कुमार पांडे जी, बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: तमाम किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज हम आमंत्रित किए हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे जी को, उद्यान विज्ञान विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे जी को, जिनसे आज हम विस्तृत बातें करेंगे फल उद्यान की देख रेख की। हमारे किसान भाई लोग फल उद्यान लगाते हैं अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए, पर कहीं थोड़ी बहुत चूक हो जाती है जिससे वे आमदनी प्राप्त नहीं कर पाते, वे नुकसान सह लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार आपको और सुनने वाले श्रोता बंधुओं को।
1: हमारे किसान भाई फल उद्यान की देख रेख किस प्रकार करें जिससे कि हम उन्हें जो भी पूंजी वो फल उद्यान की दिशा में लगाते हैं उससे उन्हें लाभ।
2: जैसा कि मैं फील्ड में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ किसान फल लगा रहे हैं या जो फल लगाने में रुचि रखते हैं, उन लोग स्थान का, फल के उपयुक्त स्थान का चुनाव में नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आम के लिए उपजाऊ मिट्टी चाहिए तो कंकड़ेली मिट्टी का चुनाव कर रहे हैं। अमरुद को हम कंकड़ेली मिट्टी में लगा सकते हैं, वैसी स्थिति में हम लोग अमरुद के लिए जहाँ पे पानी लग रहा है वैसी जगह का चुनाव कर रहे हैं। नींबू के लिए थोड़ा नीची जमीन का चुनाव कर रहे हैं। तो ये सब समस्याएं हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि किसान भाइयों को सबसे पहले फल के उपयुक्त जमीन का चुनाव सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे जो भी गाढ़ी जिसका जड़ होता है उसके लिए आप उपजाऊ मिट्टी को हमको सेलेक्ट करना है। जिसका जड़ कम ऊपर तक रह रहा है वैसे के लिए थोड़ा कमजोर मिट्टी वाली भी जमीन का हम चुनाव कर सकते हैं
1: जी।
2: दूसरा चीज क्या होता है कि बिना भूमि को सुधारे भी लोग फल को लगा देते हैं। तो किसान भाइयों को जिस जगह पे यदि फल की स्थापना करनी है तो उनको चाहिए कि कम से कम 1-2 साल उसे टाण में वो खेती करें, जैसे अरहर लगा लें या नहीं तो कम से कम कुछ नहीं तो ढैंचा कम से कम एक बार लगा दें
1: जी,
2: जिससे कि वो जमीन उपजाऊ बन जाएगी। तीसरा जो है, फल लोग लगाते हैं और उसके बाद देखभाल करना भूल जाते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे किसी आदमी को फल लगाना है
1: जी,
2: तो क्या करते हैं, 5 एकड़ खेत है और उनके पास पानी पटाने का साधन मुश्किल से 1 या 2 एकड़ में है
1: जी,
2: वो 5 एकड़ में एक ही साथ फल लगा देते हैं। तो वैसे किसानों को मेरा सलाह होगा कि वो कम से कम 3 बरस तक केवल 2 एकड़ में फल बाग की शुरुआत करें, 3 बरस बाद फिर अगला 2 एकड़ लें और फिर उसके बाद 3 बरस बाद, क्योंकि शुरुआती के 3 बरस में पौधों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको जिंदा रहने के लिए। नहीं तो जैसा हम लोग का क्लाइमेट है, फल आप लगाएंगे पानी नहीं पड़ा तो सब मर जाता है, तो इससे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इन जो छोटी छोटी बातों है इनका लोगों को फल बाग लगाने से पहले ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है।
1: और ये तो हो गई फल बाग लगाने की बात है, स्थान का चुनाव वगैरह क्या ध्यान देने की आवश्यकता?
2: देखिए, स्थान के चुनाव के बारे में सबसे पहले भी पूर्व में भी बताया था कि हम लोग को एकदम वैसा खेत कभी नहीं चुनना है जो कि एकदम कंकड़ीला पथरीला हो। दूसरा चीज, जंगल के नज़दीक का हम लोग को जमीन नहीं लेना चाहिए। जंगल के नज़दीक का जैसे आप जमीन लेंगे तो क्या होता है कि जब फल लगेगा तो उसमें आपका जो अगल बगल के है जैसे बंदर से नुकसान होगा, चिड़िया से नुकसान होगा, तो जो आपको फायदा होना चाहिए वो नहीं होगा। तो फल बाग लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि मिट्टी में जरूर कुछ ना कुछ उपजाऊपन हो। दूसरा, शहर के भी नज़दीक हो, वैसे फल हम लोग को लगाना है जहाँ पे बाज़ार में उसकी मांग हो, ये नहीं कि हम लोग हैं सेब की खेती कर रहे हैं और उस तरीका के जो ठंडे प्रदेश की फसल है उसको हम लोग लगा रहे हैं। हम लोगों को जो गर्म प्रधान क्षेत्र के होने चाहिए, जैसे आम हम लोग लगा सकते हैं, लीची लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, केला लगा सकते हैं, पपीता लगा सकते हैं, तो इसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें उत्कृष्ट वैरायटी का किसानों को चुनाव करना चाहिए
1: जी।
2: इसके अलावा है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो जमीन होता है तो जैसे पहले से यहाँ के पलाश का पेड़ पहले से है, बेर का पेड़ है, तो उसको ऊपर ऊपर काट देते हैं। तो ऊपर ऊपर आपको काटना नहीं है, कोशिश ये कर

0: है कि आप उसके नीचे के पूरा जड़ को हटा लें
1: जी।
0: किसी भी तरीका का अवांछित जो पौधा है उसको आपको हटा लेना है
1: जी।
0: यदि मान लीजिए माली को रखने के लिए एक आध पेड़ आप कहीं पे अवांछित पौधा छोड़ सकते हैं
1: जी। वृक्षों के किस्म का चुनाव पर वो क्या ध्यान देंगे?
0: देखिए किस्म का चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट चीज है
1: जी।
0: जैसे हम लोगों के पास जैसे कलमी आम हो गया, देहाती आम हो गया, तो इस बात को आप देखेंगे कि जो पलामू का प्रदेश था पके आम के लिए ज्यादा विख्यात नहीं था, बल्कि यहाँ पे अचार के आम पाए जाते थे
1: जी, जी।
0: और जो पुराने जो है बीजू जैसा पौधा है उसका बहुत ज्यादा यहाँ डिमांड था, आंवला था। तो हम लोगों को यहाँ पे ऐसे किस्म का चुनाव करना चाहिए जो ऑलरेडी यहाँ से अवेलेबल है, जैसे बेर का चुनाव करना है, बेल का चुनाव करना है
1: जी।
0: तो उसकी किस्में बाजार में लोगों को मौजूद है।
1: बेल से तो बहुत दूर हो गए हमारे किसान भाई लोग
0: एकदम। और जबकि हम आपको बताना चाहेंगे कि बेर में और नींबू में उसके बीज में एक खासियत है कि उसके बीज को यदि आप रुपाई करेंगे तो 100 यदि 100 बीज है उसमें से एक बीज ही दूसरे किस्म का होगा।
1: अच्छा,
0: नींबू में भी तो किसान भाई बीज से भी पौधे लगा सकते हैं,
1: बेल की भी खेती कर सकते हैं,
0: बेल की भी खेती कर सकते हैं। 100 में से केवल एक बीज अलग जैसा होता है।
1: अच्छा, बेल में अच्छा।
0: नींबू में तो आप जो है सीड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चीज लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे हम लोग बीजू पौधा लगा रहे हैं तो बीजू लगाने के लिए जैसे आप आंवला में भी बीजू का पौधा लगा सकते हैं, नींबू में लगा सकते हैं, अमरूद में भी बीजू पौधा लगा सकते हैं। लेकिन बीजू पौधा को लगाने के समय में हम लोग को दूरी को थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा।
1: अच्छा।
0: दूरी ज्यादा रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा देर से फलते हैं लेकिन इनकी जो समय है बहुत ज्यादा लंबा समय तक जाती है। और उसी में लोगों को क्या होगा कि आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ उत्कृष्ट टाइप का फल मिल जाए जो कि आने के लिए इस क्षेत्र की पहचान के तौर पर ना आ जाए। और इसके बाद वो जो है जो कॉमर्शियल वैरायटी है जैसे अमरूद में हम लोग L49 या इलाहाबाद सफेदा, मैंने आपको फल का ऐसा चुनाव करना है कि किसान जैसे अब मान लीजिए कि अमरूद का एक फल हो, 1 kg का फल हो, अब ये इतना बड़ा फल 1 kg का लेंगे तो बाजार में उसकी वैल्यू नहीं है। लोग शुरुआत में एक बार क्यूरियोसिटी के तौर पे खरीदेंगे लेकिन बाद में मार्केट बेहतर नहीं है।
1: नहीं।
0: तो हम लोग को जो जैसे कम से कम 100-150 ग्राम के अंदर का हो, मीडियम साइज का फल का चुनाव करना चाहिए। तो मैंने किस्म का चुनाव में एकदम सावधानी बरतनी चाहिए। एक लोभ ये नहीं कि ये अच्छा दिख रहा है तो इसको हम लगा दिए। मार्केट में किसकी ज्यादा जरूरत ज्यादा समय तक रहेगी इस पे ध्यान देना है। किस्म के चुनाव में
1: सिर्फ प्रदर्शनी भर करने से मतलब नहीं है।
0: नहीं, प्रदर्शनी करने से आप कल को गए हुए नुकसान होगा।
1: अच्छा, भूमि की तैयारी कैसे करनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को, इसकी जानकारी?
0: भूमि की तैयारी के लिए पहले भी मैं थोड़ा सा दिया था कि जब भी जमीन है, जमीन को हम लोग जैसे मान लीजिए कि जमीन है हमारे पास 5 एकड़ का खेत है, तो सब खेत को हम लोग समतल देख रहे हैं कि पूरा यहाँ का हमारा है, अलग अलग प्रवृत्ति 5 एकड़ में अलग अलग प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो हम लोग खेत को कैटेगरी के अनुसार बांट लेंगे। बीच में कहीं पानी रुक जाता है तो हमको पानी रुकेंगे तो कल को हुए हम ज्यादा नुकसान होगा
1: जी।
0: तो हम लोग खेत में पानी को भी रुकने नहीं देना है, दूसरा चीज पानी को बहने भी नहीं देना है।
1: अच्छा,
0: दोनों चीज का ध्यान रखना है। तो ऐसे चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग खेत को 2-3 कैटेगरी में बांट लें
1: जी।
0: जैसे हम लोग का खेत होता है सीढ़ीदार, उसी तरीका से हम लोग फल उद्यान को भी सीढ़ीदार के तौर पर कर सकते हैं। और जो प्लॉट हमारा होगा मान लीजिए 1-1.5 एकड़ का, उसको समतल हम लोग बना लेंगे। दूसरा जो होगा उसको उसके अनुसार समतल बना लेंगे। पानी ज्यादा हो तो उसका निकास की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन पानी कम हो उसका संरक्षण की व्यवस्था हमको खेत में रखना है। दूसरा चीज, कभी भी एकदम कंकड़ीली जमीन का चुनाव नहीं करें। एकदम कंकड़ीली जमीन का यदि आप चुनाव कर रहे हैं तो जैसे अमरुद के लिए आप कर सकते हैं, बेल के लिए कर सकते हैं, बेर के लिए कर सकते हैं। यदि आम लगाने की बात हो तो हमको थोड़ा उपजाऊ जमीन चाहिए। दूसरा चीज, जमीन में जब भी फल हम लोग लगाएं तो उचित दूरी हमेशा मेंटेन करें।
1: अच्छा।
0: उचित दूरी आप मेंटेन नहीं करेंगे, नजदीक नजदीक यदि फल लगा देंगे तो बहुत नुकसान होगा। तीसरा चीज, जमीन का चुनाव जो बात है इसमें हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जैसे उत्तर आप देखेंगे कि ठंडा का समय है।

0: तो उत्तर दिशा से ठंडा हवा आती है
1: जी,
0: गर्मी का दिन है तो पश्चिम से गर्म हवा आती है
1: जी।
0: तो हम लोगों को जमीन का जब चुनाव करेंगे तो हम लोग उत्तर और पश्चिम में जैसे इमारती लकड़ी जो लंबे लंबे होते हैं 15 फीट की दूरी पे आप लगा दें, उससे क्या होगा कि जो फल का हमारा बाकी पौधा है वो गर्मी और लू से और जो ठंडा है उससे बचाव होगा और सही तरीका से उसमें फ्रूटिंग होगी, और यदि किसी तरीका से आंधी आती है तो फल भी बचेगा।
1: ये हम बातें कर रहे थे किसान भाइयों फल उद्यान पर, और फल उद्यान से संबंधित किस प्रकार हमें देख रेख करनी चाहिए, किस प्रकार खेती करनी चाहिए, जानकारियां साझा कर रहे थे हमारे साथ पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे जी। आपने बहुमूल्य जानकारियां हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार।

0: अंतर्वर्ती खेती यानी इंटरक्रॉपिंग एक ऐसी आधुनिक कृषि पद्धति है जिसमें एक ही खेत में मुख्य फसल के साथ साथ एक या एक से अधिक सहायक फसलें एक निश्चित पैटर्न में उगाई जाती हैं। अंतर्वर्ती खेती के कुछ मुख्य लाभ हम आपको बता दें। अतिरिक्त आमदनी, एक ही समय और भूमि से दो या दो से अधिक फसलें मिलने से किसानों की आय में 20-30% या उससे अधिक की वृद्धि होती है। संसाधनों का सही उपयोग भी होता है। खेत की खाली पड़ी जगह, धूप, पानी और खाद का पूरा और सही इस्तेमाल होता है। मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है। यदि मुख्य फसल के साथ दलहनी या लेग्यूम फसलें उगाई जाएं तो वे हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी से मिलाती हैं, जिससे रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होती है।
1: और कीटों और खरपतवारों से बचाव भी होता है। कुछ अंतर्वर्ती फसलें प्राकृतिक रूप से कीटों को दूर रखती हैं या मुख्य फसल को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा खाली

0: ये हुई बातें अंतर्वर्ती खेती के लाभ की।
1: अब आज का तापमान आपको बता दें, आज पलामू में अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान

0: चलते चलते आज की नसीहत में हम बात करते हैं मृदा में पर्याप्त नमी होना क्यों जरूरी है। मृदा में पर्याप्त नमी होना पौधों के विकास और पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है। मिट्टी की नमी पौधों के जीवन का आधार होती है। इसके कुछ कारण भी हैं, जैसे पोषक तत्वों का अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, मिट्टी के तापमान का नियंत्रण, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता और मिट्टी की संरचना का जुड़ाव। तो पौधे मिट्टी से सीधे ठोस रूप में पोषक तत्व नहीं ले सकते हैं। नमी मिट्टी में मौजूद खनिजों और पोषक तत्वों को घोलने का काम करती है, जिससे पौधों की जड़ें उन्हें आसानी से सोख पाती है।
1: प्रकाश संश्लेषण, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। पर्याप्त नमी ना होने पर भोजन बनने की प्रक्रिया रुक जाती है और पौधे सूखने लगते हैं। पानी मिट्टी के तापमान को बहुत ही गर्म या बहुत ही ठंडा होने से बचाता है। जड़ों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करता है। मिट्टी में मौजूद केंचुए और फायदेमंद बैक्टीरिया तभी सक्रिय रहते हैं जब वहाँ नमी हो। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी को उपजाऊ और भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं। नमी मिट्टी के कणों को आपस में बांध कर रखती है, जिससे तेज हवा या पानी के बहाव के कारण होने वाला जो मृदा अपरदन होता है, यानी सॉयल इरोजन, वो रुकता है।

महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे जलवायु, तापमान और वर्षा मिट्टी बनने की गति को तय करते हैं। अधिक गर्मी और बारिश से चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया तेज होती है। जनक पदार्थ या मूल चट्टान की हम बात करें तो यह वह मूल चट्टान है जिससे मिट्टी के खनिज बनते हैं। चट्टानों के घिसने और टूटने से ही मिट्टी के कण तैयार होते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और कवक मिट्टी में ह्यूमस यानी कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं, इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। ज़मीन की ढलान और ऊंचाई तय करती है कि पानी की

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण सभा, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी देर

0: इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
2: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
1: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
2: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
1: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
3: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें।

0: 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
2: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
3: कंडोम,
2: गर्भ निरोधक गोलियाँ।
4: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
6: बुखार होने पर ओझागुनी के पास न जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
5: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: आपकी चाय, EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है, इलीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
8: ना भाई ना।
9: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें, RBI कहता है।
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। रांची समेत तीन शहरों में ईडी की छापेमारी जारी। टीएमसी सांसद नदीमुल हक से जुड़े अवैध वित्तीय लेनदेन के मामले में कार्रवाई। दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार की अस्थियां बराकर नदी में विसर्जित। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल समेत कई दलों के नेताओं ने परिजनों से मिलकर जताई संवेदना। नागरिकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल। रांची में एनसीसीएफ के मोबाइल वैन यूनिट से 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिल रहा प्याज। भाजपा का कल से 4 दिवसीय राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन। छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग। और दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में पूर्वी क्षेत्र के कप्तान ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी। 250 रन की यादगार पारी खेलकर बनाए कई रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। टीएमसी के राज्यसभा सांसद मोहम्मद नदीमुल हक से जुड़े झारखंड समेत तीन राज्यों के 7 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि ईडी ने सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले कंटेंट के प्रकाशन, अवैध वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध सौदों के जरिए फंडिंग से जुड़ी शिकायतों के बाद यह दबिश दी है। रांची के कुकर इलाके में एक उर्दू समाचार पत्र के कार्यालय में भी ईडी छापेमारी कर रही है और साक्ष्य जुटा रही है। दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के पुत्र श्रेयस ने आज पूरे विधि विधान के साथ गिरिडीह स्थित बराकर नदी के तट पर अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन किया। इस मौके पर उनके परिजन, रिश्तेदार और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई दलों के नेताओं ने दिवंगत सुदिव्य कुमार के परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की।
1: गिरिडीह नहीं बल्कि झारखंड और झारखंड विधानसभा के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं कह सकता हूं कि झारखंड विधानसभा में जो मंत्री हर विषय पर विधायकों के लिए जवाब देने के लिए कोई खड़े होते थे तो सुदीप कुमार शर्मा बड़ी ही मुखरता से अपनी बातों को रखते थे।
0: इधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सिरिवेला प्रसाद भी गिरिडीह में दिवंगत सुदिव्य कुमार के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया।
2: बहुत दुख है, ये मेरा पता है, मैं भी ऑब्जर्व किया मिनिस्टर का, ये अच्छा आदमी है, वेरी सिस्टमैटिक, उनका सोच भी अच्छा है, ये अच्छा सलाह भी दे रहा है। ये रियली ग्रेट लॉस है झारखंड का, जेएमएम का ये ग्रेट लॉस है, इसलिए हम लोग इधर आए परिवार मिलके कंडोलेंस एक्सप्रेस कर रहे हैं।
0: दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के असामयिक निधन पर आज रांची विश्वविद्यालय में शोक सभा का आयोजन हुआ और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने सुदिव्य कुमार के योगदान को याद किया।
3: स्वर्गीय सुदिव्य कुमार

जी का झारखंड में वास्तव में वो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाना चाह रहे थे। इतने कम समय में जो उनका शिक्षा मंत्रालय में टेन्योर था उसमें वो बहुत सारी चीजें ऐसी लेकर आए थे जो राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप थी। सभी कर्मचारियों की तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तरफ से यही होगी कि उनके

0: पहल की प्रशंसा की है।
1: एक आदमी को 2 किलो ही दे रहा है, 70 रुपया लिया 2 किलो का, राहत तो है। बाजार में 50-60-70 का रेट है, तो यहाँ पे 35 में दे रहा गवर्नमेंट, तो राहत तो है।
2: एक गाड़ी लगा हुआ है सरकार का, तो ले लिए 2 किलो, 70 रुपए में 2 किलो, 35 रुपए किलो।
3: गाड़ी देखे, गाड़ी में पोस्टर लगा हुआ, भारत सरकार सौजन से चल रहा है, महंगाई के दौर में बहुत राहत है।
0: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी 9 सितंबर को वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ करेंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के लिए हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी धुन के साथ सामुदायिक नेतृत्व वाली कार्रवाई के केंद्र में रखा गया है। इसी धुन से हाल ही में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी प्रबंधन समितियों के त्वरित गठन और संचालन को गति मिलेगी। सुपोषित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए 1 महीने तक चलने वाला पोषण अभियान चलाया जाएगा, जो विकसित भारत 2047 की नींव है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रदेश भाजपा भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता के खिलाफ आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लेने, दोषियों की गिरफ्तारी और मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कल से 4 दिवसीय चरणबद्ध तरीके से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने बताया कि कल रांची, दुमका, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर और गढ़वा में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रांची में आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू करेंगे।
4: 48 घंटा का समय समाप्त हो गया और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में युवाओं पर जो दर्ज FIR है वो वापिस हो, जिस तरह सामने बातें आ रही है, और बिना CBI जांच का CID सक्षम नहीं है। इसीलिए हम लोगों का मांग है कि FIR दर्ज जो है उसको वापिस सरकार ले और CBI जांच कराए।
0: सरायकेला खरसावां पुलिस ने डकैती की एक बड़ी साजिश के वारदात से पहले ही नाकाम कर दिया। पुलिस ने चौका थाना क्षेत्र से डकैती की योजना बना रहे 6 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, गोली और 3 दोपहिया वाहन समेत कई सामान बरामद किए गए हैं।
5: 19 अगस्त को जो हुआ था वो बंसा शराब दुकान में लूट का प्रयास हुआ था और फिर उसके बाद माउंट 10 व्यू होटल में लूट का घटना हुआ था, तो उसी के आलोक में एक SIT का गठन किया था। टोटल 6 अभियुक्त हम लोग गिरफ्तार किए हैं। घटना में इस्तेमाल किए 3 पिस्टल है, साथ में लोहे का हथौड़ा था और एक दावली, वो सब भी हम लोग बरामद किए हैं।
0: रांची में मोटरसाइकिल चोर गिरोह के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रांची सदर अस्पताल के आसपास के इलाकों में मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाओं के मद्देनजर पुलिस पहले से तत्पर थी। इसी क्रम में सदर अस्पताल परिसर में एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया। पूछताछ के क्रम में उसने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 4 मोटरसाइकिल बरामद करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब मौसम का हाल। राज्य में 13 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 9 और 10 सितंबर को कुछ जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। 9 सितंबर को बोकारो और धनबाद में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 10 सितंबर को रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह में भी कहीं कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 13 सितंबर तक राज्य के कई इलाके में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। 2 दिनों के बाद तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। दलीप ट्रॉफी के फाइनल में पूर्वी क्षेत्र के कप्तान ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया है। चेन्नई में उन्होंने साउथ जोन के खिलाफ 250 रन की यादगार पारी खेली और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। ईशान ने मुकाबले के 2रे दिन आज अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए पहले दोहरा शतक पूरा किया और इसके बाद 250 रन के आंकड़े तक पहुंचे। ईशान ईस्ट पूर्वी क्षेत्र के लिए दलीप ट्रॉफी के फाइनल में दोहरा शतक लगाने वाले 3रे बल्लेबाज बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची समेत 3 शहरों में

0: ईडी की छापेमारी जारी। टीएमसी सांसद नदमुल हक से जुड़े अवैध वित्तीय लेनदेन के मामले में कार्रवाई। दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार की अस्थियां बराकर नदी में विसर्जित। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल समेत कई दलों के नेताओं ने परिजनों से मिलकर जताई संवेदना। नागरिकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल। रांची में एनसीसीएफ के मोबाइल वैन यूनिट से 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिल रहा प्याज। भाजपा का कल से 4 दिवसीय राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन। छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग। और दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में पूर्वी क्षेत्र के कप्तान ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी। 250 रन की यादगार पारी खेलकर बनाए कई रिकॉर्ड। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बहन, मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं?
2: अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
1: 104 नंबर, वो क्या है बहन?
2: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
3: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: माँ, मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
6: नहीं, तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
7: अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं?
8: बढ़ती बच्ची किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
7: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
8: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
7: माहवारी प्रारंभ होती है,
8: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
7: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
9: हर बैंक के अलग अलग KYC पेपर्स, काश एक चाबी होती।
10: एक चाबी है CKYC ID।
9: CKYC मतलब?
10: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
9: वाह, RBI कहता है
10: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
11: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है जिले में आजकल।
12: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
1: भारत में डिजिटल भुगतान की पहचान बन चुके यूपीआई ने अपने 10 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर जमशेदपुर के दुकानदारों ने खुशी जताते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। सांची स्थित ओल्ड बुक स्टोर के दुकानदारों का कहना है कि यूपीआई ने उनके व्यवसाय को काफी आसान बना दिया है।
2: देखिए, यूपीआई ट्रांजेक्शन या कैशलेस ट्रांजेक्शन का 10 साल हो चुका है। मेरा मानना ये है कि केंद्र सरकार का सबसे बहुत अच्छा पहल था ये। हम जैसे मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं, जिनको पैसे रखने में दिक्कत होता है, जैसे गल्ले में काउंटर में चेंज रखना प्रॉब्लम होता है, तो कस्टमर आते हैं तो पैसा काटना होता है, तो चेंज देने में समस्या होती है। अब क्या, कस्टमर आते हैं तो अब क्या है, अब ऑनलाइन QR आ गया है, अब QR में पेमेंट कीजिए, आराम से हमारे बैंक खाते में पैसा पहुंच जाता है।
3: जब से UPI आई है सर, उसके बाद से हम लोग को चेंज देने का प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया। प्लस क्या है कि बैंक जो बार बार हम लोग जाते थे, अब वो सारी चीज की समस्याएं दूर हो गई।
1: जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात PM के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन को उत्साहपूर्वक सुना। प्रधानमंत्री के संदेश से छात्राओं और खिलाड़ियों में खेल के प्रति नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिला।
4: जैसे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज हमें ये बताया कि जिस तरीके से हम खेल में अगर हम रुचि देंगे तो उसके साथ साथ हमें नशा मुक्त होने का भी एक विजन मिलेगा। इस विजन से हम ये समझते हैं कि खेल ना ही सिर्फ हमें फिजिकली बल्कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के ओर लेकर जाता है, प्लस हमें नशा मुक्त होने का एक

0: अच्छा एनकरेजमेंट दे रहा है, एक विजन दे रहा है।
1: आज का ये सेमिनार अटेंड करके बहुत कुछ सीखने को मिला और मोटिवेशन भी मिला कि स्पोर्ट्स हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। और मुझे भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है और मैं खेलती भी हूँ, बट एज अ जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन आए थे नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, वैसा मुझे कभी मौका नहीं मिला। बट मैं जरूर इंकरेज करूंगी सबको आगे कि वो इस फील्ड में आए और देश के लिए, अपने समाज के लिए योगदान दें।
2: जमशेदपुर में आकाशवाणी केंद्र का 37वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी क्लब की ओर से जोहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वर्तमान और भूतपूर्व कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान पूर्व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया और सभी ने आकाशवाणी से जुड़े अपने अनुभव और पुरानी यादें साझा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार राय ने कहा कि आकाशवाणी जमशेदपुर के 37 वर्षों के सफर में वर्तमान कर्मचारियों के साथ पूर्व कर्मचारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
3: स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि हमने यहाँ जो अपने सेवानिवृत्त साथी थे उनको भी आज हमने आग्रह किया कि आप भी आएं और हमसे अपना विचार साझा करें। जो स्थानीय थे या जो झारखंड के आसपास के, और बड़े ही हर्ष की बात है कि हमारे जो सेवानिवृत्त साथी है वो ईचागढ़ प्रखंड से, ऊटी से, रांची से तक से आए। हम लोगों ने आपस में अपने विचार को साझा किया।
2: जैसे जैसे दुर्गा पूजा नजदीक आ रही है, जमशेदपुर में पूजा का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। शहर के विभिन्न पूजा स्थलों पर पंडाल निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। कहीं पारंपरिक शैली तो कहीं आकर्षक और भव्य थीम पर पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
4: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: साथ बुनियाद
1: बुनियाद बुनियाद कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से पूरे बिहार और झारखंड में आपके अपने राजेश की आवाज गूंज गई और हम आ गए युवा साथियों से उनके करियर पर बातें करने। फिर से वही बात आज पहले ही दोहराया दे रहा हूँ, टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है युवा साथियों, टेक्निकल पढ़ाई का चुनाव कीजिए और विशेषज्ञता हासिल करके महारत हासिल कर लीजिए और फिर रोजगार की कमी नहीं होगी, हमारी ऐसी मान्यता है। बुनियाद कार्यक्रम में लगातार वर्षों से हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं, आपसे मुलाकातें होती हैं, आप जब बताते हैं कि आपने इस कार्यक्रम को सुनकर टेक्निकल पढ़ाई चुनी है, अपनी मर्जी की पढ़ाई चुनी है, तो सचमुच अच्छा लगता है। और ऐसे में हम बिहार में स्थित टेक्निकल पढ़ाई का जो हब है, जो यूनिवर्सिटी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, उसे धन्यवाद देते थकते नहीं। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर रोहतास सासाराम बिहार में है और यहाँ करीब 14 टेक्निकल पढ़ाई कराई जाती है और कोर्सेज की संख्या तो छोड़ ही दीजिए, आप खुद जानकारियां ले लीजिएगा। 15 मिनटों में हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले डिमांड होती है आपकी कि नंबर बता

0: आइए ना, और कोई वेबसाइट है तो उसका पता दीजिए ना, तो लीजिए ना, नंबर नोट कीजिए जिस पर आप बात कर सकते हैं सीधे सीधे 9431899002 9431899002 और एक टोल फ्री नंबर भी है 1800121 0051। हमने कहा 1800121 0051। कुछ लोगों ने यह कहा कि फोन पर ज्यादा जानकारियां नहीं मिल पाती हैं क्योंकि समय सीमित होता है और उस वक्त तुरंत जो है ना हमारे सामने सवाल नहीं आ पाता है जो हम पूछ सकें, तो वेबसाइट का पता दीजिए, हम देखना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को, कोर्सेज को और जो उस पर कमेंट्स आते हैं। तो नोट कीजिए ना, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का वेबसाइट का पता है gnsu.ac.in, ये पता है, इस पर जाकर के आप अच्छे से बैठ करके जो जो चाहें देख सकते हैं, और अगर चाहें तो जमुआर, सासाराम, रोहतास जाकर भी देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो बात है ना, करियर की बातें हैं, ये तो पास में है, कोई दूर दराज रहता, दूसरे स्टेट का कोई यूनिवर्सिटी रहता तो कोई बात समझ में आती, ये अपने राज्य बिहार में है, झारखंड का पड़ोसी भी है बिहार, पहले तो हम एक ही थे ना, हाँ हमारी सारी चीजें एक ही मिलती है, खान पान, व्यवहार, स्वभाव, पढ़ाई लिखाई सब तो एक है। हाँ तो आप भी आइए, आमंत्रित है, आकर के देखिए, समझिए, जानिए, परखिए, तब निर्णय लीजिए। हाँ फी में जहाँ तक बात है तो यहाँ बिहार सरकार से जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर जितना भी पैसा मिलता है उस पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, और उस पैसे को लेने के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग भी किया जाता है। बहरहाल आपको एक बात और बता दें कि यहाँ अलग से प्लेसमेंट सेल भी है जो आपको तैयार करता है कि जब पढ़ाई ख़त्म हो जाए ना तो आपको रोज़गार भी मिल सके, और अगर जो स्वरोजगार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। बहरहाल ढेर सारी बातें और भी होंगी, लेकिन आज बताएं, आज हम बातें करेंगे एग्रीकल्चर पर, कृषि में आप पढ़ाई कर सकते हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा क्षेत्र है। गोपाल नारायण सिंह का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या कॉलेज है उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, और आज हमने फोकस किया है लड़कों की बात, अभी ठहर जाइए, लड़कियां एग्रीकल्चर की पढ़ाई बहुत तादाद में कर रही हैं, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आ रही हैं, और हम अभी गए थे यूनिवर्सिटी, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय गए थे, हमने एग्रीकल्चर पढ़ रही कुछ लड़कियों से बातचीत की है, तो आज हम उनकी बातें सुनवाएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लड़की खेती की पढ़ाई करेगी, लेकिन कर रही है, जमाना बदल गया है, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं क्या कहती हैं, अपने बारे में पूरी जानकारी दीजिए, और पूरा बिहार झारखंड सुन रहा है उनको बताइए कि एग्रीकल्चर की पढ़ाई आपने क्यों चुनी, क्या करना चाहती हैं।
1: मेरा नाम सोनाक्षी कुमारी है, मैं बीएससी एग्रीकल्चर से हूँ। सर मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मुझे यहाँ पे सेफ्टी वगैरह पढ़ाई भी सही है। सर मैं औरंगाबाद की रहने वाली हूँ। सर एग्रीकल्चर में इसका बैकग्राउंड भी सही है, अगर फील्ड वर्क करे तो ये फील्ड वर्क भी सही है, फिर इसमें कैरियर भी आगे जॉब के लिए सही है, बैंकिंग, यूपीएससी, जेआरएफ एसआरएफ। सर यहाँ पे पढ़ाई की बहुत ही अच्छा सुविधा है, जैसे कि सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, अच्छे से उन लोग पढ़ाते भी हैं सही। एग्रीकल्चर अगर हम लोग लेते हैं तो इसमें बहुत ही इसका फायदा है, जैसे कि अलग अलग फील्ड में हम लोग जा सकते हैं।
0: बहुत सही, अलग अलग फील्ड में हम जा सकते हैं। लड़कियों, हम सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां युवतियां नहीं आ रही हैं, चैलेंज नहीं ले रही हैं। एग्रीकल्चर सिर्फ खेती नहीं है, बहुत सारा हाँ डायमेंशन खुल चुका है, कंपनीज में आप नौकरी कर सकती हैं, अगर स्व व्यवसाय करना है तो फल का उत्पादन कर सकती हैं, दूध का उत्पादन कर सकती हैं, मुर्गी पालन खोल सकती हैं, ढेर सारी चीजें हैं जिसमें आप अपना किस्मत आजमा सकती हैं। एक कदम आगे बढ़ के तो देखिए, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। अभी और भी हाँ युवतियां हैं जिनसे हमने बातचीत की, अभी सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम थैंक यू कहना चाहते हैं गोपाल नारायण

0: सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार को, जिन्होंने आगे बढ़कर बिहार में टेक्निकल पढ़ाई का हब बनाया, एक यूनिवर्सिटी ऐसी बनाई, एक सुरक्षित कैंपस ऐसा बनाया जहां लड़कियां भी सुरक्षित रूप में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं, अपने सपनों को उड़ान दे सकती हैं। नंबर नोट करें इस यूनिवर्सिटी का, आप भी पता कर सकती हैं फोन करके या कर सकते हैं 9431899002 और टोल फ्री नंबर है 1800121001 और वेबसाइट है gnsu.ac.in। और अब आइए ये क्या कह रही हैं सुनते हैं।
1: मेरा नाम रितु कुमारी है, मैं बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हूँ और मैं थर्ड ईयर में पढ़ती हूँ। मतलब एग्रीकल्चर के बारे में मेरे को आइडिया नहीं था कि एग्रीकल्चर होता क्या है, तो मैं नर्सिंग करना चाहती थी। ठीक है, तो एक दिन मेरे डैड ने बोला कि नर्सिंग कुछ खास नहीं है, काफ़ी भीड़ वगैरह है, तो आप एग्रीकल्चर देखिए। तो मैं एग्रीकल्चर के बारे में वेबसाइट पे गई, मैंने सर्च किया कि एग्रीकल्चर क्या है, उसमें फील्ड क्या है, स्कोप क्या है, तो सारी चीज़ें मैंने देखा, तो मेरे को लगा कि एग्रीकल्चर सही है, इसमें काफ़ी स्कोप है, फील्ड है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे फ्यूचर के लिए बहुत सही है। तो मैंने एग्रीकल्चर चूज़ किया, बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, तो हम लोग एंजॉयमेंट के साथ पढ़ते हैं। सर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और हर चीज़ का फैसिलिटी है यहाँ पे, पढ़ाई के साथ थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल वगैरह भी काफ़ी करवाया जाता है और सारी चीज़ें अच्छी हैं। मैंने अपने सीनियर से पूछा था कि ये करने के बाद यहाँ पे जॉब वगैरह मिलता है, प्लेसमेंट मिलता है कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि हाँ मिलता है। सर सीनियर ने तो बोला कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है, आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, इन फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा आपका और यहाँ से काफ़ी चीज़ें आप सीख के जा सकते हो और आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं कहना चाहूँगी कि जो घर पे बैठे हुए हैं और जो बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उन्हें एक बार गूगल पे जाके, वेबसाइट पे जाके गोपाल नारायण सिंह के बारे में सर्च करना चाहिए और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में एक बार आके विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए, विजिट करना चाहिए और एग्रीकल्चर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सर बहुत अच्छा फील्ड है, उसमें काफ़ी स्कोप है, फ्यूचर भी ब्राइट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हाँ एग्रीकल्चर में तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं, आप एग्रीकल्चर लेकिन मतलब कोई भी फील्ड में जा सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, आप टीचर का भी कर सकते हो, बैंकिंग कर सकते हो।
0: युवतियाँ हाँ सुन रही हैं ये आज का कार्यक्रम बुनियाद, आप ही को डेडिकेटेड है, यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ मेरी बेटी कैसे जाएगी, क्या होगा नहीं होगा, अब ये जमाना नहीं है, आगे बढ़ना है तो बढ़ना पड़ेगा आगे, है ना, सोचना कम एक्शन ज्यादा। हम बातचीत कर रहे हैं वैसी युवतियों से जिन्होंने एग्रीकल्चर का करियर चुना है और एग्रीकल्चर में अपने किस्मत को आजमा रही हैं, और दोनों ने बताया कि अभी हम इंजॉय कर रहे हैं, जी हाँ अपने करियर को इंजॉय कर रहे हैं, और दोनों ही छात्राएं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर कॉलेज की हैं और बहुत ही खुश हैं इस करियर को चुनकर। नंबर बता रहे हैं 9431899002 9431899002 और 1800121051 ये नंबर है, gnsu.ac.in इसका पता है। आइए ये क्या कहती हैं सुनते हैं।
2: नमस्कार, मेरा नाम मोहिनी कुमारी है, मेरा घर अकोढ़ी गोला के पास में एक चांदी गांव है, वहाँ से मैं आती हूँ। हाँ मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रही हूँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय से। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, जैसे कि हम बात करें यहाँ के टीचर्स की, यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं जैसे कि हमारे पीओ अंकल हैं वो सारे अच्छे हैं, यहाँ के जो ऑफिस वर्कर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर हमें कोई, जनरली मैं DRCC की स्टूडेंट हूँ, तो शुरू हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है DRCC से रिलेटेड, तो यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर हैं और जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं वो लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ फिल करना है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, इन सब को लेके बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं वो। और कैंपस की बात करें तो लड़कियों के लिए कैंपस और यहाँ का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, ना कोई और ना एंटी रैगिंग के केसेज आते हैं यहाँ पे, ना ही यहाँ पे लड़कियों को कोई प्रॉब्लम होती है। प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे लोग हमें असिस्ट करते हैं। देखिए मैं तो यही कहूँगी कि अगर आदमी खुद से मेहनत नहीं करेगा तो आपको आगे कोई लाकर देगा नहीं, आप खुद से मेहनत करिए, अपने लिए आप खुद का रास्ता बनाइए, प्लेसमेंट तो मिल रहा है, बस आपकी कितनी एबिलिटी है कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। सीनियर्स कह

0: सकते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी होती है और प्लेसमेंट के लिए आपको अच्छी सैलरी मिलती है। एज अ स्टूडेंट हमें लगता था कि जब हम यूनिवर्सिटी में आए थे हमें लगता था कि सब कुछ नया है, हो सकता है कोई हमारी बात ना सुने, लेकिन एज अ पर्टिकुलर स्टूडेंट भी जब हम अपनी प्रॉब्लम लेकर जाते हैं यूनिवर्सिटी के पास या फिर किसी भी टीचर के पास, तो वो हमारी बातों को सुनते हैं और जो भी प्रॉब्लम रहती है उसका सॉल्यूशन ढूंढने में हमारा हेल्प करते हैं। तो जो लोग घर बैठे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर जो है वो कोई सीखने का कोर्स नहीं है। उसमें आप लोग को लगता होगा कि हम आएंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमारे आसपास ही हमारे जितने भी घर वाले हैं वो शुरू से ही एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उन्हें पता है कि कैसे क्या किया जाता है, बस उन्हें हर चीज़ की अच्छे से नॉलेज नहीं है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, अगर आप आएँ यहाँ पर आकर पढ़ें तो आपको इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। और अगर आपके घर पर कोई आपके घर वाले हैं खेती करते हैं तो इसमें आप उनकी सहायता कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ सेल्फ खुद से कोई बिजनेस करना हो तो एग्रीकल्चर करके आप वो बिजनेस भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत सारे स्किल्स भी सिखाए जाएंगे, जैसे कि आप घर पे रह रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा कि कितने सारे स्किल्स हैं। आजकल के टाइम में नॉलेज ही ज्यादा जरूरी नहीं है, स्किल्स भी जरूरी हैं।
1: बाप रे बाप, कितना कितना आगे बढ़ गई है लड़कियाँ, हाँ युवतियाँ। अच्छा लगता है हमारे घर की बेटियाँ जब आगे बढ़ती हैं। और आज का ये कार्यक्रम बुनियाद डेडिकेटेड था हाँ युवतियों के लिए, अगर ऐसा मौका मिला तो फिर से हम लेकर आएंगे। लेकिन एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्र में जहाँ लड़के ही चकते हैं, लड़कियाँ आगे आ रही हैं, अच्छा लगा। चलिए नंबर बता देते हैं, 9431899002 और 1800121051 ये टोल फ्री नंबर है, और gnsu.ac.in ये वेबसाइट का पता है। तो आज का बुनियाद बहुत मजा आया, हमें तो मजा आया, आपको भी आया होगा, नए रास्ते खुले होंगे लड़कियों युवतियों, तो बस चलने की तैयारी कीजिए। फिलहाल राजेश आज के इस कार्यक्रम से चलने की तैयारी करता है, अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम।

0: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की युगल आवाज़ों में कुछ फिल्मी नगमे।
1: कुछ हमको
2: क्या
1: कुछ तुमको

अलग अलग फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार आरडी वर्मन। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आइए सुनते हैं चरणों की सौगंध फिल्म से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार के साथ अलका याग्निक की, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: इसी नगमे के साथ ही अब आज का एक रंग कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कल्याणी। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं भेंट वार्ता डेंगू कारण एवं निदान। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर आर के रंजन, फिजिशियन पलामू। भेंट करता हैं संजय कुमार मिश्रा।
1: कल्याणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं, डेंगू का नाम तो आपने सुना होगा। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर कहते हैं अगर इसकी अनदेखी की गई तो ये खतरनाक हो सकता है। वाकई कितना खतरनाक है, कैसे फैलता है, कैसे इसे रोक सकते हैं, क्या इसकी पहचान है, ढेर सारी बातें हैं जो आप जानना चाहते होंगे और आज इन्हीं सवालों के जवाब आपको दिलवाएंगे। कार्यक्रम में आमंत्रित हैं पलामू जिला अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सक एवं पलामू मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर आर के रंजन। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, डेंगू आजकल अक्सर कहीं ना कहीं का नाम सुनने को मिल जाता है, क्या है डेंगू?
2: डेंगू एक वायरल फीवर है जस्ट आफ्टर द रेनी सीजन और बिगनिंग ऑफ द जड़ा का जो मौसम होता है, इस बीच में डेंगू के लिए बहुत फेवरेबल होता है। हर साल कुछ न कुछ इंडियन पॉपुलेशन में अफेक्ट करता है, इस बार थोड़ा ज़्यादा है। हम लोग डे टू डे देख रहे हैं जो पेशेंट फीवर, हाई ग्रेड फीवर लेके आ रहे हैं, रैसेज लेके आ रहे हैं, शरीर में सीवियर पेन लेके आ रहे हैं, हेडेक लेके आ रहे हैं, उनको जो हम लोग टेस्ट कराते हैं तो डेंगू का लक्षण मिल रहा है। संयोग से कि डेंगू अभी खतरनाक वाला जो डेंगू होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। दो टाइप के जनरली डेंगू फीवर को हम लोग बांटे हुए मेडिकल साइंस बांटता है, एक डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो अभी हम लोग को जो भी केस मिल रहा है डेंगू फीवर हेमरेजिक फीवर का मिल रहा है, जिसमें दाने दाने हो जाते हैं, हाई फीवर रहेगा, पेशेंट का बीपी थोड़ा कम रहेगा लेकिन वो शॉक में नहीं रहेगा और बॉडी पेन लेके आएगा। प्लेटलेट्स काउंट लोगों को जनरली अभी जो आ रहा है 40,000 से लेके 1,00,000 के बीच में आ रहा है, लेकिन जब हम डेंगू शॉक सिंड्रोम की बात जब कहते हैं तो उसमें प्लेटलेट काउंट सिवियरली लो हो जाती है, इवन टू लेस देन 10,000 हो जाता है। उस पेशेंट को हम लोग को बचाने बहुत मुश्किल होता है। हम लोग पलामू में रहते हैं, पलामू में हम लोग प्लेटलेट अभी सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं ब्लड बैंक से, ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग इशू है। अगर सरकार इस मैटर पे काम कर रही है, बहुत जल्दी भविष्य में पलामू के जनता को प्लेटलेट ब्लड से प्लेटलेट अलग करने की मशीन लग जाएगा। एक ब्लड जो हम लोग आज ब्लड बैंक में देते हैं उसे 4 जिंदगियां बचाई जा सकती है, जो अभी हम लोग 1 जिंदगी बचा पाते हैं और सारा कंपोनेंट ब्लड का बेकार हो जाता है। अगर वो 3 कंपोनेंट ब्लड को हम लोग बचा लेंगे तो 3 जिंदगी और बच जाएगी। तो सरकार इस मुद्दे पर काम कर रहा है, मशीन बहुत जल्दी लग जाएगा। जिस भी पब्लिक को, पलामू के पब्लिक को अगर फीवर महसूस होता है, हाई ग्रेड फीवर है, उल्टी है, माथा में दर्द है, और डेंगू फीवर जनरली हाई ग्रेड फीवर होता है और बैक साइड ऑफ द हेड जो होता है उसमें सीवियर हेडेक होता है, दोनों आईज में पेन होगा, लॉन्ग बोन्स में

0: पैर हाथ के हड्डी में बहुत सीवियर दर्द होगा, और शरीर पे दाने दाने, लोग को लगेगा कोई मच्छर काट लिया है या कहीं कोई ड्रग्स का रिएक्शन है। ये जनरली लक्षण है, उल्टी होना, शरीर में दर्द होना, थकावट होना, ये सब लक्षण है। जब आप टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट में भी आपको प्लेटलेट्स जनरली जो काउंट होता है वो कम होता है। डेंगू सीरोलॉजी भी हम लोग कराते हैं। डेंगू के चार टाइप के वायरस होते हैं, जनरली डेंगू 1, 2, 3, 4 में बांटा गया है। ये भी हम लोग डायग्नोसिस लेबोरेटरी के आधार पर कर लेते हैं, और कुछ नहीं तो हम लोग एक क्रूड मेथड भी है, मोटा मोटी मेथड भी है, मरीज को हम टर्निक्वेट अप्लाई करके हम लोग टर्निक्वेट टेस्ट कर लिखते हैं। टर्निक्वेट जैसे किसी को वेन या जब पंचर करते हैं ब्लड लेने के लिए, तो हम लोग बांधते हैं टर्निक्वेट, वो बांध के 20 मिनट छोड़ देंगे तो पता चलेगा कि दाना दाना बांधने से ऊपर, बांधने के पार्ट से ऊपर अपियर हो जाएगा, उसको लोग पॉजिटिव टर्निक्वेट टेस्ट करते हैं। डेंगू अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो डेंगू खतरनाक होता है। आप लोगों को पता होगा जब दिल्ली में आज के 10 साल पहले 2009-10 की बात है, दिल्ली के हॉस्पिटल में बेड कम पड़ गए थे डेंगू के चलते। उस समय डेंगू शॉक सिंड्रोम, खतरनाक डेंगू उस समय काफ़ी कॉमन था, बहुत सारे जिंदगियां डॉक्टर बचा नहीं पाए। अभी हम डेंगू का मेरा जो अभी वेराइटी है वो सिंपल वेराइटी है। लोग अगर सतर्क रहें, लोग टाइम रहते अगर डॉक्टर से इलाज ले लेंगे तो ज़िंदगी बचाई जा सकती है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है, इस पर इससे क्योर हो सकता है।
1: अगर डॉक्टर साहब, अगर ये वायरल है तो इस वायरस का वाहक कौन है, कौन पहुंचाता है इसे?
0: एक्चुअली वायरस का एक मच्छर होता है, जनरली मच्छर को आप नेकेड आई से नहीं दे सकते, हैंड माइक्रोस्कोप से हम पहचान सकते हैं पूरे बॉडी में। इस मच्छर का नाम एडीज एगिप्टाई कहते हैं। तो मच्छर के शरीर पर ब्लैक और वाइट का स्ट्रिप होता है, मैंने आपको कहते हैं कि देखिएगा तो ब्लैक और वाइट अल्टरनेट करके उसमें स्ट्रिप रहता है उसके बॉडी पर। वो जनरली डेंगू कैरी करने वाले मॉस्किटो होते हैं जो डेंगू के वायरस कैरी करते हैं ह्यूमन बॉडी से मच्छर में। डेंगू का कुछ लाइफ साइकिल मच्छर में होता है, कुछ लाइफ साइकिल ह्यूमन में होता है। तो ये दोनों डेंगू के वायरस के लिए ये दोनों जंतु रहना बहुत ज़रूरी है। तो मॉस्किटो को कंट्रोल करें तो डेंगू पर कंट्रोल हो जाए, मॉस्किटो से दूर रहें, कोशिश करें अभी के सीजन में फुल पैंट और फुल शर्ट लगा के चलें। रात में कहीं जाना है तो मॉस्किटो वाइल भी आता है, जिससे लगाने के बाद मॉस्किटो आपके शरीर को नहीं काटेगा। रात में सोने वक्त आप मच्छरदानी लगा लें, और आसपास के जो पानी जमा वाला जो जगह है, जैसे कूलर हुआ, आसपास के नदी नाले हुए, उसमें हमेशा DDT वगैरह छिड़काव करते रहें, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सरकार कंट्रोल कर भी रही है।
1: डॉक्टर साहब, एक समस्या ये आती है कि हमारे पलामू ज़िला की बात करें, आजकल तो गांव हो, शहर, देहात, कहीं भी मच्छरों का प्रकोप ज़बरदस्त है। कहीं कोई ऐसा जगह, खाली जगह नहीं मिलती जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं। तो डेंगू वाले मच्छर ये इन मच्छरों की तरह ही दिखते हैं या थोड़े अलग हैं, अलग जगह पाए जाते हैं, कोई ख़ास अंतर दोनों में?
0: नहीं, आप ऐसे कॉमनली आप नॉन मेडिकल आदमी नहीं पहचान सकता है, लेकिन हम लोग पहचान लेते हैं उसका बैठने का, उसका चल उड़ने का, उसके शरीर का आकार, कलर से हम लोग पहचानते हैं उसको। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। बेसिकली किसी भी टाइप के मच्छर को हम लोग पनपने से रोकें, उसके ब्रीडिंग प्लेसेस को हम लोग डिस्ट्रॉय करें, तभी हम मॉस्किटो बॉर्न डिजीज से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उस पर। और डेंगू अगर आप सतर्क हैं तो डेंगू की बीमारी से बचाया जा सकता है, बच सकते हैं।
1: डॉक्टर आर के रंजन जी, सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि हमारे, अगर हम अब ज़िले की बात करें, हमारे तमाम श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, यहाँ पर किसी बीमारी को नज़रअंदाज करने की आदत लोगों की बड़ी ख़राब कह सकते हैं, और बीमारी आगे बढ़ जाना, बीमारी का परेशानी का कारण बन जाना, ये एक मुसीबत है। तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि इसी नज़रअंदाज करने की बिल्कुल ना सोचें, अगर इस तरह का कोई लक्षण अगर मिले तो क्या क्या करें और कब करें?
0: देखिए, कोई भी फीवर अगर 2 से 3 दिन के बाद अगर फीवर कंटिन्यूस आता जा रहा है तो इसको इग्नोर नहीं करें। जनरली वायरल जो होता है, फ्लू होता है, वो 2 से 3 दिन, हार्डली 4 दिन रहता, वो धीरे धीरे सिम्टम उसका असर जो है ख़त्म होते जाता है। लेकिन आपको लग रहा है कि 2-3 दिन तक हमको फीवर नहीं उतर रहा, 2-3 दिन से ज़्यादा लास्ट कर गया, तो आप तुरंत एक अच्छे डॉक्टर से दिखाएं। आप हर जगह, हर ब्लॉक, कस्बे में MBBS डॉक्टर अवेलेबल।

0: स्कूल हैं, आप किसी भी झोला छाप के चक्कर में नहीं पड़ें, क्योंकि झोला छाप के पास आप जाएंगे तो आपको हायर एंटीबायोटिक देगा जो डेंगू में कहीं कोई रोल नहीं है। डेंगू का एज सच कोई पार्टिकुलर फिक्स इलाज नहीं है, वो सिम्टोमेटिक इलाज है। जैसा मरीज लक्षण बताएगा वैसा जो डॉक्टर्स होते हैं उसको इलाज करते हैं। कोई एंटीबायोटिक का वायरल डेंगू पर कोई रोल नहीं है। पैरासीटामोल को लीजिए, दो बार लीजिए, तीन बार चल लीजिए, चार बार लीजिए और रेस्ट कीजिए। जो सिट्रस फ्रूट हैं जिस जो प्लेटलेट्स बढ़ाने में हेल्प करते हैं, खास करके लेमन्स हुआ, आंवला हुआ, पपाया हुआ, कीवी हुआ, ये सब फल, ताज़े सब्जियाँ खाएं, फल खाएं, इससे आपको डेंगू फीवर से रिकवरी होने में मदद कारगर साबित होता है, ये प्रूव है। और किसी भी झोला छाप के चक्कर में नहीं पड़े, किसी भी बहकावे में नहीं है। अगर आपको फीवर है तो तुरंत PHC की तरफ मूव करें, CHC की तरफ मूव करें, या मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे कॉम्पिटेंट डॉक्टर आ गए हैं। डेंगू बिल्कुल अगर टाइम पे इलाज लिया जाए तो इससे कैजुअल्टी ना के बराबर है। अभी भी अभी इस सीज़न में, अभी जब तक हम लोग इस सीज़न में डेंगू आया है, अभी तो कोई डेंगू से कैजुअल्टी नहीं हुआ है। किसी किसी मरीज़ को हम लोग को रांची रेफ़र करना पड़ा है जिसको प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ा है, वो प्लेटलेट्स के लिए हम लोग भेजे हैं रिम्स में, वो भी वहाँ प्लेटलेट्स चढ़ने के बाद वो भी ठीक होकर मरीज आया है, रिटर्न हो गया है और अच्छा से अपना डे टू डे एक्टिविटी लाइफ अपना जी रहा है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि इसमें सिर दर्द भी होता है और तेज़ बुखार भी आता है और इस तरह की परेशानियां होती हैं, तो ये आम तौर पर बुखार में सिर दर्द और इस तरह की के लक्षण दिखते हैं, तो कब किन परिस्थितियों में ये समझ पाएंगे वो कि उन्हें डेंगू है और जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाकर अपने इलाज के बारे में तैयारी करेंगे?
0: देखिए, हर इंसान को लाइफ में फीवर का अनुभव तो जरूर है। फीवर एक ऐसा सिम्टम है, बहुत सारे बीमारी का लक्षण होता है फीवर, लेकिन जो डेंगू का फीवर होता है, ब्रेक बोन फीवर इसका नाम ही दिया गया है, ऐसा लगे, ऐसा सीवियर पेन होगा, लगेगा मरीज जो है चिल्लाने लगेगा, असहनीय पेन होगा शरीर में, आँख पर और सर के पीछे। ये लक्षण अगर फीवर के साथ सीवियर हेडेक, सीवियर बॉडी पेन और रैसेज दाने दाने अगर शरीर पर आता है तो 99% कह सकते हैं वो डेंगू का फीवर है। तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका इलाज कराएं। आप टाइम पर अगर इलाज लेंगे तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं।
1: और अगर मान लीजिए डॉक्टर पास पहुंचने में थोड़ा टाइम लग रहा हो, तो क्या कोई और उपाय है जो आप कहना चाहेंगे कि डॉक्टर पास आने से पहले प्राथमिक उपचार जिसे कहा जाता है, कोई उपाय करके उसके बाद डॉक्टर को ढूंढें?
0: डॉक्टर घर पर भी अगर फीवर आया, हेडेक हुआ, रैसेज है तो आराम से रेस्ट करें, ताज़ा सब्जी, फल सब्जी खाएं, पारासीटामोल को लेते रहना है। डेंगू अपने आप भी रिकवरी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस डेंगू का है, उसमें कोई मेडिसिन की जरूरत है, बस पारासीटामोल लीजिए, घर पे रहिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा फल फूल खाइए, ठीक हो जाइएगा 5 से 7 दिन के भीतर।
1: और आपने जो बताया कि किसी में प्लेटलेट्स का कम होना एक बड़ी समस्या देखा जाता है, तो प्लेटलेट्स कम होने पे कोई उसके लक्षण दिखते हैं जिसे आप समझते हैं कि प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत है या इस पर कुछ अलग से इलाज की आवश्यकता है?
0: प्लेटलेट्स लक्षण बहुत होते हैं, प्लेटलेट लक्षण कम होने का लक्षण बहुत सारा है। जैसे प्लेटलेट्स बॉडी में कम होगा तो शरीर में दाने दाने आएंगे, पहला लक्षण है। इसके बाद अगर प्लेटलेट बहुत कम होगा तो उसको पेशाब से खून आ सकता है, पैखाना से खून आ सकता है, उल्टी से आ सकता है, ये सब खतरनाक स्टेज का डेंगू है। अगर ये सब अगर है किसी पेशेंट को तो घर पर इलाज नहीं ले सकता, और इसके लिए हायर सेंटर चाहिए जहाँ पर प्लेटलेट अवेलेबल हो, जहाँ पर प्लेटलेट्स तुरंत चढ़ाया जाए तभी जान बचाया जा सकता है। प्लेटलेट्स आप असेसमेंट घर पर नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे पब्लिक पैनिक हो जाते हैं कि डेंगू हमको हो गया, डेंगू हो गया, तो पैनिक नहीं होना है, अपने आप में धैर्य रखना है। प्लेटलेट अगर 20,000 तक भी कम है, अगर कोई ब्लीडिंग नहीं है, बॉडी में कोई ब्लीडिंग नहीं है, 20,000 तक है, तब पर भी आप घर पर इलाज कर सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन अगर कोई ब्लीडिंग है और प्लेटलेट काउंट 50,000 से कम है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। एक 20,000 से कम अगर प्लेटलेट है, ब्लीडिंग नहीं भी है, तो आपको हॉस्पिटलाइज होना है। कुछ खास लेवल होता है संख्या प्लेटलेट का, जिसके अनुसार हम लोग तुरंत मैरिज को कहते हैं कि आपको हॉस्पिटल में इलाज करें या घर पे करें या बाहर भेजें। उसमें एक 20,000 जो प्लेटलेट, वो बाउंड्री लाइन है, ठीक है। 20,000 से ऊपर वाले को हम लोग मॉडरेट केस में रखें, लेकिन लेस देन 20 वाले को हम लोग सीवियर केस में रखते हैं। सीवियर केसों कभी भी हम लोग डेंगू को घर पे इलाज के लिए सलाह नहीं देते, उसको हॉस्पिटलाइज में अंडर डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में रख के

0: जांच करेगा और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। डेंगू क्यूरेबल बीमारी है, बहुत स्मूथली डेंगू 5 से 7 दिन काट लेंगे तो अपने आप भी रिकवरी हो जाएगा।
1: डॉक्टर आर के रंजन जी, क्या डेंगू होने के बाद लोगों का कहना है कि कमज़ोरी बहुत बुरी तरह आती है और मरीज़ को चलने फिरने में परेशानी होती है, तो ये क्या सच है? तो अगर ऐसा है तो उनको तुरंत क्या करना चाहिए?
0: देखिए, कोई भी वायरल फीवर में लोगों की कमज़ोरी होता है और फीवर एक डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस प्रोसेस है, जो बॉडी भी किसी भी बाहरी ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में आता है तो उसे लड़ता है, उसमें उसी से फीवर उत्पन्न होता है। फीवर होना, किसी भी मरीज में जो फीवर होता है तो नो डाउट उसको कमजोरी आएगा, थोड़ा सा चलने में दिक्कत होगा, शरीर में दर्द होगा, तो धीरे धीरे अगर डाइट अच्छा से रखें तो उससे भी निजात पाया जा सकता है, उसके लिए चिंता नहीं है। पेशेंट का जब फेब्राइल पीरियड लास्ट कर जाएगा तो पेशेंट धीरे धीरे अपना एक्टिविटी, अपना स्ट्रेंथ को रिकवर कर लेगा।
1: डॉक्टर साहब, डेंगू किन परिस्थितियों में खतरनाक हो सकता है?
0: डेंगू शॉक सिंड्रोम एक वैरायटी है, अगर वो डेंगू है किसी पेशेंट को तो प्लेटलेट 20,000 से कम रहेगा, पेशेंट ब्लीडिंग लेकर के आएगा, पेशेंट शॉक में आएगा, पेशेंट बेहोश होकर आएगा, अनकंसस रहेगा, वो पेशेंट खतरनाक होता है, वो पेशेंट की जान चला जाता है, इवन टू हायर सेंटर में भी उसको, वो हम लोग बहुत गंभीर डेंगू के कैटेगरी में उसको रखते हैं, जिसको हम लोग डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं।
1: तो क्या आप ये कह सकते हैं कि अगर इस तरह की परेशानी दिखे किसी को तो तुरंत अगर इलाज के लिए डॉक्टर के पास चले जाएं तो डेंगू बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है, आसानी से ठीक किया जा सकता है और मरीज हंसते हंसते घर वापस लौट कर आएगा?
0: डेंगू शॉक सिंड्रोम का पेशेंट जितना जल्दी अगर डॉक्टर के पास जाएगा उतना अच्छा से, उतना जल्दी रिकवर होगा, उतना उसको इमरजेंसी फेस करना नहीं पड़ेगा। और अदरवाइज़ जो माइल्ड डेंगू फीवर है उसमें उतना चिंता की बात नहीं, उतना पब्लिक को पैनिक नहीं होना है। डेंगू एक वायरल फीवर है, जो फ्लू है वो भी वायरल फीवर है, तो डेंगू बस इसमें प्रिवेंशन, उसमें कुछ प्रोफाइलेक्टिक जो एंटीपायरेटिक है उसको लेते रहना है।
1: तो फिर आखिरी में डॉक्टर साहब, हमारे तमाम श्रोताओं को आप ये भी बता दें कि किस तरह के अपने आचार विचार, व्यवहार, खान पान और तमाम चीज़ों पर ध्यान रखें जिससे डेंगू उनके करीब आ ही ना पाए।
0: सबसे पहले मच्छर से बचें, मच्छर से जहाँ भी आउटडोर एक्टिविटी है उसमें कोशिश करें कि अपने शरीर को मैक्सिमम पार्ट को ढके रखें, रात में सोने वक्त मच्छर दाड़ी का यूज करें, मॉस्किटो कॉयल का यूज करें, मॉस्किटो वाइल भी आता है, अपने आसपास जल जमाव को बहिष्कार करें, उसको उसमें टाइम टू टाइम DDT वगैरह छिड़काव करते रहें, बस यही बचाव है डेंगू के लिए।
1: डॉक्टर आर के रंजन जी, आप हमारे आज के इस कल्याणी कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी। इसके अंतर्गत भेंट वार्ता आपने सुना, डेंगू कारण एवं निदान। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर आर के रंजन, फिजिशियन पलामू। भेंटकर्ता थे संजय कुमार मिश्रा।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

आ अब लौट चले फिल्म से भी आपने ये गीत सुना। आवाज़ें थीं उदित नारायण, अलका याग्निक, जसविंदर नरूला और साथियों की। गीत लिखा था समीर ने और इसकी तर्ज बनाई थी नदीम श्रवण ने।

आरजू फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ें थीं कुमार सानू और अलका याग्निक की। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और इसकी धुन बनाई थी अन्नू मलिक ने। अगला गीत आइए सुनते हैं दरार फिल्म से। आवाज़ें हैं अभिजीत साधना सरगम और साथियों की। नगमा निगार हैं राहत इंदौरी और मौसिकार अनु मलिक।

अकेले हम अकेले तुम फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। आवाज़ें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और अनु मलिक का संगीत था। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

बाजीगर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ विनोद राठौर की थी, गीत लिखा था रानी मलिक ने और इसकी तर्ज बनाई थी अन्नू मलिक ने। और ये है चित्रपट से कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म खिलाड़ी से। आवाज़ें हैं अभिजीत और अलका याग्निक की। अनवर सागर ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सवारा है जतिन ललित ने।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। समाचारों के लिए अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया आप बने रहें हमारे साथ।

0: रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची, भारत का पदक पक्का। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
1: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्ध रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। CBRN टोही वाहन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिन्हित करने में सक्षम होंगे। इशू के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने।
0: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला, वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति

0: महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है, उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
2: गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह में श्री शाह ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू LPG उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में LPG आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही।
6: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले, बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
1: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में पांचवी मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
7: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थीं या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
9: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
10: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
11: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और MCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है।
1: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों के परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए DNA नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार DNA संबंधी जानकारी देना चाहते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सिदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskAIR के साथ X पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुताल्लिक काउंसिल ने 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात में वडोदरा के मकाम पर 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जोनल काउंसिल तरक्की और अवामी बहबूद का अहम वसीला बन गई हैं। उन्होंने गोवा पुलिस को सदर जमहूरिया का पुलिस परचम भी पेश किया। LPG का अगला सिलेंडर बुक करने का 25 दिन का वक्फा अब शहरी और देही दोनों इलाकों में यकसा रहेगा। कौमी राजधानी में सत्यनिकेतन इमारत ढह जाने के वाक़े में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन MCD के 5 अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आला सतह की MCD इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इंतखाबी कमीशन ने आसाम में नागांव लोकसभा सीट का जिमनी चुनाव 6 अक्टूबर को कराने का ऐलान किया है। तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में 2-2 असेंबली सीटों, नीज पुडुचेरी में 1 सीट का जिमनी चुनाव भी साथ साथ होगा। और अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज में शीतल देवी खवातीन के कंपाउंड इंफरादी मुकाबले के फाइनल में पहुंच गई हैं और भारत को तमगा मिलना तय है। अब खबरें तफसील से। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुताल्लिक काउंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दे दी है। हमारे नामा निगार ने बताया कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में काउंसिल की मीटिंग के दौरान ये मंजूरी दी गई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इन तजवीजों में भारतीय फौज के लिए केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल नीज न्यूक्लियाई टो लेने वाली गाड़ियों, हाई मोबिलिटी गाड़ियों, जदीद तर्ज के हल्के हेलीकॉप्टरों, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज निजाम की सरकारी खरीद की तजवीजें शामिल हैं। भारतीय बहरिया के लिए अरुद्र रडार की सरकारी खरीद और मैरीन गैस टरबाइन की डिजाइन और तैयारी नीज इसकी सरकारी खरीद के लिए तजवीज को भी मंजूरी दी गई है। अरुद्र रडार बहरिया के मुख्तलिफ एयर स्टेशनों पर नस्ब मौजूदा एयर रूट निगरानी रडार की जगह लेगा। इस तरह गैर मुल्की इदारों पर इन्हिसार कम हो जाएगा। उधर भारतीय फजाइया के लिए मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ाने की खातिर मुख्तलिफ तजवीजों को मंजूरी दी गई है। कसीर मकसदी जैमर की सरकारी खरीद और दिफाई अफवाज का महफूज रसाई का कार्ड निजाम नस्ब करने की भी मंजूरी दी गई है। दिफा की वजारत ने कहा है कि इनमें से 98% दिफाई सामान की सरकारी खरीद भारतीय सनअतों से की जाएगी। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दिफाई पॉलिसी रद्द अमल में कार्रवाई करने वाली से आगे बढ़कर पेशबंदी की कार्रवाई करने वाली पॉलिसी बन गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क दिफा के शोबे में खुद कफील और पुरएतमाद बनकर उभर रहा है। आज नई दिल्ली में एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि साल 2016 में मिजाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में भारत के शामिल होने के बाद से मुल्क ब्रह्मोस मिजाइल की सलाहियत बढ़ाने में कामयाब रहा और ये वजीर आजम की सरगर्म सिफारतकारी और उनकी नजरिया साज क्यादत का नतीजा है। ऑपरेशन सिंदूर का तस्करा करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल के मौसर होने की सलाहियत सामने आ चुकी है।
2: भारत 2016 से पहले MTCR मेंबर नहीं था, जिसके कारण हम ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज एक सीमा से आगे चाहते हुए भी हम नहीं बढ़ा पाते थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के सक्रिय डिप्लोमेसी और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण हमारा MTCR के हम सदस्य बने और उसके बाद ब्रह्मोस की रेंज भी बढ़ाने का काम करने में हमने कामयाबी हासिल की है। और आपको पता ही होगा कि पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की क्या भूमिका रही है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे, इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC के 3 अहम सेक्शनों को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जो 326 रूट किलोमीटर का अहाता करते हैं। आज अहमदाबाद हवाई अड्डे पर नामा निगारों को जानकारी देते हुए रेलवे के वर्कजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने जोर दे

0: इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी को हिदायत दी है कि कौमी राजधानी में सत्य निकेतन के मकाम पर एक इमारत के ढह जाने के वाकये की आला तरीन एग्जीक्यूटिव सतह पर इंक्वायरी कराई जाए और इस बात की भी जांच की जाए कि आया ये इमारत तामीर के लिए मंजूरी ली गई थी या नहीं। इस वाकये का संगीन नोटिस लेते हुए हाईकोर्ट ने एमसीडी को यह हिदायत भी दी कि वो अपने दायरे अख्तियार के तहत आने वाली सभी पेइंग गेस्ट इमारतों और हॉस्टल्स का एक हफ्ते के अंदर अंदर जामे ऑडिट कराए। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि इमारत गिरने के वाकये की इंक्वायरी में इस बात की खास तौर पर जांच की जानी चाहिए कि आया हर तरह की मतलूबा इजाजत हासिल कर ली गई थी या नहीं, किसी तरह की गफलत या नाकामी के लिए जिम्मेदार अहलकारों की निशानदेही की जाए और कसूरवार पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ मुजवजा या अब तक की गई कार्रवाई की तफसील पेश की जाए। इंतखाबी कमीशन ने आसाम की नागांव लोकसभा सीट पर जिमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। वहीं इंतखाबी कमीशन ने तमिलनाडु और मगरबी बंगाल की दो दो असेंबली सीटों और पुडुचेरी की एक सीट के लिए जिमनी असेंबली इंतखाब का भी ऐलान किया है। कमीशन ने कहा कि तमिलनाडु की मदुरन तकम और धर्मपुरम सीटों, मगरबी बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम और पुडुचेरी की थत्ता चंदावड़ी असेंबली सीटों पर जिमनी इंतखाबात होंगे। लोकसभा और असेंबली जिमनी इंतखाबात दोनों के लिए नोटिफिकेशन बुध के रोज जारी किया जाएगा। 16 सितंबर तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। राय दही 6 अक्टूबर को होगी जबकि वोटों की गिनती अगले महीने की 9 तारीख को होगी। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने इन इत्तलात को गलत करार दिया है कि इसरो की निजकारी की जा रही है। आज बेंगलुरु में सीआईआई के जेर एहतमाम एक नुमाइश के मौके पर नामानिगारों से बात करते हुए इसरो के सरबराह ने कहा कि इसरो एक सरकारी इदारा है और इसे प्राइवेट हाथों में देने का सवाल ही नहीं है। अलबत्त उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की जानिब से दी गई मंजूरी और खला से मुतालिक नई पॉलिसी के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर खला के प्रोग्राम में शामिल है, जिसका मकसद इसकी सरगर्मियों में तेजी लाना है। इसरो के महदूद रोल और बजट से मुतालिक इल्जामात पर चेयरमैन मौसूफ ने यह वाजह कर दिया कि इसरो का रोल कई गुना बढ़ गया है और इसकी मांगें पूरी करने के लिए सरकार की जानिब से मुख्तस की गई रकूमात काफी हैं। बिहार में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। कई मकामात पर गंगा और दीगर बड़े दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं, जिससे रियासत के वसी इलाके मुतासिर हुए हैं। अब तक 29 लाख से ज्यादा लोगों पर सैलाब का असर पड़ा है। 13 जिलों के 77 ब्लॉकों में 438 पंचायतों के दायरे में आने वाले लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान भारत के शुमाल मशरक हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मगरबी बंगाल में भी कल इसी तरह के मौसमी हालात रहेंगे। इस दौरान अंडमान निकोबार जजायर, बिहार, ओडिशा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम और तेलंगाना में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरला और माहे में कल मौसम के गर्म और मरतूब रहने की भी पेशगोई की है। पैरा तीरंदाजी की मौजूदा आलमी चैंपियन शीतल देवी ने आज अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज के तीसरे मरहले के तीसरे दिन खवातीन के कंपाउंड इनफरादी फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए तमगा यकीनी बना लिया है। ऑल इंडिया सेमीफाइनल में बाजुओं से महरूम जम्मू की शीतल देवी ने सरिता को 143 के मुकाबले 145 से शिकस्त दी और सोने के तमगे के लिए होने वाले फाइनल मुकाबले में पहुंच गईं। फाइनल में शीतल देवी का मुकाबला कजाकिस्तान की आइजदा सैदान से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक काउंसिल ने 1,10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल गुजरात में वडोदरा के मुकाम पर 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जोनल काउंसिलें तरक्की और अवामी बहबूद का अहम वसीला बन गई हैं। उन्होंने गोवा पुलिस को सदर जमहूरिया का पुलिस परचम भी पेश किया। एलपीजी का अगला सिलेंडर बुक करने का 25 दिन का वक्फा अब शहरी और देही दोनों इलाकों में यकसां रहेगा। कौमी राजधानी में सत्य निकेतन इमारत ढह जाने के वाकये में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी के 5 अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आला सतह की एमसीडी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। और इंतखाबी कमीशन ने आसाम में नागांव लोकसभा सीट का जिमनी चुनाव 6 अक्टूबर को कराने का ऐलान किया है। तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में दो दो असेंबली सीटों, नीज पुडुचेरी में एक सीट का जिमनी चुनाव भी साथ साथ होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही क्षणों में होगा कार्यक्रम आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्यारे लाल संतोषी की, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में 7 अगस्त 1916 को हुआ। एक निर्देशक के रूप में आपने 21 फिल्में निर्देशित की, कई गीत लिखे, स्क्रीन प्ले, आइडिया, संवाद, अतिरिक्त संवाद जैसे रचनात्मक कार्यों के साथ आपने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। निर्देशित फिल्मों में 1963 की फिल्म दिल ही तो है के इस गीत के साथ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: नजर।
1: हम एक हैं, ये वही फिल्म है जिसके माध्यम से पीएल संतोषी ने पहले पहल अपने निर्देशकीय गुण का परिचय फिल्म इंडस्ट्री को दिया, दर्शकों को दिया। इस फिल्म में दुर्गा खोटे, कमला कोटनिस, रहमान और देवानंद ने अभिनय किया था। गुरुदत्त ने इस फिल्म में पीएल संतोषी को असिस्ट किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा तो नहीं कर पाई थी, लेकिन पीएल संतोषी के निर्देशन में 1947 में बनी उन्हीं की लिखी रेहाना, इंदुमती, नासिर खान, दुलारी और मुमताज अली अभिनीत शहनाई ने उस वर्ष बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी।

प्यारे लाल श्रीवास्तव, यही पीएल संतोषी का पूरा नाम था। जबलपुर से मुंबई कह सकते हैं एक संयोग की वजह से पहुंचे थे आप। हुआ यूं कि इनके गृह नगर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और फिल्म यूनिट को संवाद असिस्टेंट की जरूरत थी, और प्यारे लाल जी चूंकि एक बेहतरीन लेखक थे वो फिल्म यूनिट से जुड़ गए, शूट से जुड़ गए। बात आई और यूं ही नहीं गई। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इनकी अपनी लेखनी पर विश्वास और लोगों के प्रोत्साहन की वजह से सन 1930 के दशक के मध्य में आप एक लेखक और गीतकार बनने की प्रबल इच्छा के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गए। आइए राज कपूर अभिनीत, पीएल संतोषी निर्देशित 1950 की सरगम के इस गीत को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। वो हम

जी हाँ, हम बात कर रहे थे सन 1930 के मध्य में बॉम्बे पहुंचे पीएल संतोषी की, जिन्हें फिल्मी दुनिया ने एक निर्माता, निर्देशक, गीतकार और लेखक के रूप में इनकी कला को सराहा और इन्हें प्यार से अपनाया भी। 1937 में इन्हें जद्दनबाई की फिल्म मोती का हार के लिए कुछ एक गाने लिखने का अवसर प्राप्त हुआ था। यही इनकी फिल्मों में एक पहली पहल सफल एंट्री थी। इसी फिल्म में इन्होंने एक छोटी सी भूमिका भी अदा की थी। चर्चा जारी है, आइए सुनते हैं फिल्म नादान का ये गाना।

जद्दन बाई के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे हैं पीएल संतोषी। इसी साल यानी 1937 में जीवन यापन में भी चार गाने आपने लिखे। यही वो समय था जब पीएल संतोषी एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो की छलांग लगाते रहे, रंजीत स्टूडियो से बॉम्बे स्टूडियो और फिर प्रभात फिल्म्स। जब वो प्रभात फिल्म्स में थे तब 1946 में हम एक हैं फिल्म के निर्देशक का सौभाग्य इन्हें मिला। इनके द्वारा निर्देशित ये इनकी डेब्यू फिल्म थी। ये गीत है इसी फिल्म का। आवाज अमीर बाई कर्नाटकी की है, संगीत हुसन लाल भगत राम का है।

सन 1950 की फिल्म सरगम को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। फिर तो 1950 की ही अपनी छाया 1952 की शिनशिना की बुबलाबू, 1952 की छमछमा छम शिनशिना की बुबलाबू संतोषी प्रोडक्शंस के बैनर तली बनी फिल्म थी। लता मंगेशकर के स्वर में आइए सुनते हैं सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में पीएल संतोषी का लिखा हुआ ये गीत।

संतोषी द्वारा निर्देशित अन्य फिल्मों में हैं 1953 की 40 बाबा एक चोर, 1955 की सबसे बड़ा रुपया और हम पंछी एक डाल के सन 1957 की फिल्म।

57 की ही फिल्म गर्मा गर्म और सन 1959 की फिल्म पहली रात पीएल संतोषी की करियर की फिल्में थीं जिनकी बदौलत आपने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी। ये गाना है फिल्म दिल्ली जंक्शन का, स्वर लता मंगेशकर का है।

अब जिक्र है भारत भूषण और मधुबाला अभिनीत 1960 की फिल्म बरसात की रात का। यह फिल्म एक रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन पीएल संतोषी ने किया और इस फिल्म का निर्माण किया था आर चंद्रा ने। रोमांटिक संगीतमय फिल्म के रूप में यह एक बेमिसाल फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।

बरसात की रात एक बेहद सफल फिल्म थी। इस फिल्म की सफलता फिर पीएल संतोषी अपने आगे आने वाले वर्षों में दोहरा नहीं पाए। प्यार की दास्तान, सबसे बड़ा रुपया, हॉलीडे इन बॉम्बे और फिर नूतन राज कपूर अभिनीत फिल्म दिल ही तो है, इनकी असफलता पर मरहम नहीं लगा पाई। सन 1968 में जगदीप और जयमाला काले को लेकर पीएल संतोषी की आखिरी निर्देशित फिल्म आई थी रूप रुपया। ये गीत है फिल्म तीन बत्ती चार रास्ता का, आइए सुनते हैं।

पीएल संतोषी ने कई फिल्मों को संगीतमय बनाया। सन 1937 से कई फिल्मों में इनके गीत जगह पाते रहे। तूफानी रोटी, बाजीगर, बन के चिड़िया, रिक्शावाला, आपकी मर्जी, पति पत्नी, ठोकर, अछूत, परदेसी जैसी फिल्मों में इनके गीत थे। ज्ञानदत्त और खेमचंद प्रकाश ने इनके गीतों को मौसीकी प्रदान की।

बॉम्बे टॉकीज में जब पीएल संतोषी थे तब इन्होंने अनजान और बसंत में गीतकार के रूप में गीत लिखे, जिनका संगीत निर्देशन पन्नालाल घोष ने किया था। यह है फिल्म बसंत का गाना पारुल घोष की आवाज में।

पीएल संतोषी और सी रामचंद्र के मिलाप से फिल्मों को ऐसे गाने मिले जो कर्णप्रिय तो थे ही, अपने समय से आगे के भी साबित हुए, जिनके साथ चल के कई गीतकारों संगीतकारों ने उस मार्ग को अपनाया और सफलताएं पाई। संतोषी के गानों में सिर्फ शब्द की जादूगरी ही नहीं थी, बल्कि मनोरंजन का पुट भी था जो गीत को रोचक बनाता था। जैसे सरगम के गीत इसका सीधा सरल उदाहरण है।

सन 1941 की अकेला, 1942 की स्टेशन मास्टर, 1951 की सौदागर, 1951 की ही घायल, 52 की अनहोनी, 1958 की दुल्हन और 1966 की अगलमन जैसी फिल्मों में आपने कई गीत लिखे। पीएल संतोषी ने लगभग 350 गीत 100 फिल्मों के लिए लिखे। एक निर्देशक और गीतकार के अलावा आप स्क्रीन प्ले राइटर और संवाद लेखक के रूप में भी जाने पहचाने जाते हैं। 1941 की झूला, स्टेशन मास्टर और निराला, 1950 की, 1958 की पोस्ट बॉक्स नंबर 999 और 1970 की मन की आंखें जैसी फिल्मों में रचनात्मक योगदान आपका रहा है। तमिल फिल्मों और तेलुगु फिल्मों के लिए भी आपका फिल्मी योगदान रहा है। सन 1950 और 1960 के दशक में पीएल संतोषी ने फिल्म को सजाया, संवारा और मनमोहक बनाया। पीएल संतोषी के बेटे प्रसिद्ध फिल्मकार राजकुमार संतोषी ने इस बात को माना था कि अपने आखिरी दिनों में इनके पिता पीएल संतोषी ने तेलुगु डब फिल्मों के लिए घोस्ट राइटिंग भी की थी। 7 सितंबर 1978 को बॉम्बे में आपका देहावसान हुआ। शहनाई, बरसात की रात, दिल ही तो है जैसी फिल्मों को बनाने वाले और कई गीतों की रचना करने वाले पीएल संतोषी की बातें, गीतों और फिल्मों की यादों के साथ आज के फनकार का ये संगीतमय सफर हमने

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेश खदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को मोहम्मद फखरुल हसन का नमस्कार।

सच्ची का बोलबाला फिल्म से भी आपने ये नगमा सुना। आवाज़ किशोर कुमार की थी, अमित खन्ना ने इस गीत को लिखा था और संगीत से सवारा था बप्पी लाहिरी ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की अगली पेशकश है गज़ल फिल्म से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है और इसकी तर्ज बनाई है मदन मोहन ने।

पत्थर के सनम फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आप लुत्फ उठा रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा का। कार्यक्रम की अगली पेशकश है हम दोनों फिल्म से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी और मौसीकार जयदेव।

कश्मीर की कली फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, SH बिहारी के बोल थे और OP नैयर का संगीत था। अगला गीत आइए सुनते हैं।

क्षमा करेंगे। अब आइए सुनते हैं आए दिन बहार की फिल्म से अगला गीत। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेला।

भरोसा फिल्म से अभी आपने ये नगमा सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। राजेंद्र किशन ने इस गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था रवि ने।

मेरे जीवन साथी फिल्म्स का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ किशोर कुमार की थी। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आरडी वर्मन। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं शेषनाग फिल्म से, आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इसकी धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

शेषनाग फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और ये है रजनीगंधा कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा से। आवाज़ें हैं आशा भोसले और बप्पी लाहिरी की। गीतकार हैं इंदीवर और संगीतकार बप्पी।

इसी नगमे के साथ ही अब आज का रजनीगंधा कार्यक्रम समाप्त करने की मोहम्मद फखरुल हसन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया बने रहें हमारे साथ।

0: इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिडी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 11 बजने को है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र

0: बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला, वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। दक्षिण लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई है। कफर रोमाने गांव में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए, जिनमें 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी हैज क्लियर कैपिटल एक्विजिशन।